0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: भूषण मृगधरम वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांकवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। श्रावण प्रभात के इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस पुण्य कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। भगवान शिव और माँ पार्वती, आप इन दोनों की पूजाएं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव और माँ पार्वती शिवस्य च शिवायाश्च वर्णा शिवभाविते सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम। शिव और शिवा की कवच रूपी जो मूर्तियां हैं, शिव भाव से भावित हो करके शिव और पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके और मेरी संपूर्ण कामनाओं को सफल करें। वामो ज्येष्ठस्तथा रुद्रः कालो विकर्णस्तथा बलो विकर्णश्चैव बलप्रमथनः परः सर्वभूतस्य दमनस्तादृशाश्चाष्टशक्तयः प्रार्थितं मे प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। वाम ज्येष्ठ रुद्र काल विकर्ण बल विकर्ण बल प्रमथन तथा सर्वभूत दमन, ये आठ भगवान शिव की मूर्तियां तथा इनकी वैसी ही आठ शक्तियां भी हैं, जैसे वामा ज्येष्ठा रुद्राणी काली विकर्णी बल प्रमथनी तथा सर्वभूत दमनी, ये सब शिव और शिवा के ही जो हैं और शासन से मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। प्रार्थना करें। अथानन्तश्च सूक्ष्मश्च शिवश्चाप्येकनेत्रकः एकरुद्रस्त्रिमूर्तिश्च श्रीकण्ठश्च श्रीखण्डिकः तथाष्टौ शक्तयस्तेस्तेषां द्वितीयावर्णर्चिताः ते मे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। अनंत सूक्ष्म शिव अथवा एक नेत्र, एक रुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीकंठ और शिखंडी, ये आठ विद्येश्वर तथा इनकी वैसी ही आठ शक्तियाँ अनंता सूक्ष्मा शिवा एकनेत्रा एकरुद्रा त्रिमूर्ति श्रीकंठी और शिखंडिनी, जिनकी द्वितीय आवरण में पूजा हुई है श्रोताओं, ऐसे शिव और शिवा के ही शासन में और मेरी संपूर्ण कामनाओं को परिपूर्ण करें। भवाद्या मूर्तयाष्टाष्टौ तासामपि च शक्तयः महादेवादयश्चान्ये तथेकादश मूर्तयः शक्तिभिः सहिता सर्वे तृतीयावर्णे स्थिता सत्कृत्य शिवयोराज्ञां दिशन्तु फलमीप्सितम्। भव आदि आठ मूर्तियां और उनकी शक्तियां तथा शक्तियों के सहित महादेव आदि ग्यारह मूर्तियां जिनकी स्थिति और तीसरे आवरण में है श्रोताओं, शिव और पार्वती की आज्ञा श्रोधार्य करके हे भगवान आप मुझे और अभीष्ट फल को प्रदान करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: आलयां। नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आर्ष सुभाषित सुधा श्रेय का साधन, निर्वृत्ति कर्मण पापात संतम पुण्य शीतलाहा, सद्वृत्ति सदुचार श्रेय एवं दतूनम, मानुष्य सुखम प्रायतम यह सर्जित स मुगृहीत, नालम च दुख मोक्षाय श्रृंगमे दुख लक्षण। पाप कर्म से दूर रहना, सदा पुण्य का संचय करते रहना, साधु पुरुष के वर्तलाप को अपनाना और उत्तम सदाचार का पालन करना, यह सर्वोत्तम श्रेय का साधन है। जहाँ मनुष्य का नाम भी नहीं है, ऐसे मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है वह मोह में डूब जाता है। विषयों का संयोग दुख रूप है और कभी दुख से छुटकारा नहीं दिला सकता। इसलिए इन सभी ज्ञानों को लेकर के अपने जीवन में उतारना सबसे परम आवश्यक है, जिससे हम सब लोग सत्कर्मी बन सकते हैं। त्याग के समान सुख नहीं। नास्ते विद्या समम चक्षु, नास्ते सत्यम समम तप, नास्ते रागम समम दुखम, नास्ति त्यागम समम सुखम। ज्ञान के समान दूसरा नेत्र नहीं है, सत्य के समान दूसरा तप नहीं है, राग आसक्त के समान दूसरा दुख नहीं है और त्याग के समान दूसरा सुख नहीं है। जीवन और भोग दोनों लक्ष्य सिंगूर है। भोगा मिद्धवीतास्त्वं यकुलीकं च चञ्चला, आयुत्रिदा अग्नि संतो लोहत्सम जीवं विन्धुनात्। आकाश में घिरे हुए बादलों में जिस प्रकार बिजली प्रकाशित होकर तुरंत नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार संसार के भौतिक भोग भी देखते देखते विनष्ट हो जाता है। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरं श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। मैं बाबा जी गिरीश शर्मा हिंदू महासभा की ओर से आप सभी श्रोताओं का आज संडे 23 अगस्त के पावन श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पवित्र पुत्रदा एकादशी का अत्यंत मंगलमय दिवस है। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा और भक्ति के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह एकादशी केवल उत्तम संतान की कामना करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त परिवार के सुख शांति सदाचार आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति का

भी साधन है। चलिए हम शिव सती चरित्र को आगे बढ़ाते हुए आज दोहा संख्या 39 का हम लोग पाठ करें। तो सब दरसी सुनी अप्रभु करहु सो वेगी उपाई, हो हुमर अनुजेहि विनहि श्रम दुसह विपत्ति विहाई। हाथ जोड़ करके सती माता श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहती है कि यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का जो व्रत है मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। एही

काशी। दक्षसुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली।

0: शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी भगवान शिव जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने से आसन दिया। आज इसको यही विराम दे, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: श्रावण मास के विशेष कार्यक्रम में

आर्य सभा मॉरिशस से पंडिता नर्मदा पतिया की ओर से श्रोताओं को हमारी सादर नमस्ते। सेवा में प्रस्तुत है एक वेद मंत्र। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धियावसु ओम शम। यह मंत्र यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 84वां मंत्र है। इस मंत्र में विद्या की देवी सरस्वती माँ की महानता का वर्णन किया गया है। विद्या का अर्थ बहुत विस्तृत है। विद्या ही धर्म से लेकर मोक्ष तक सभी साधनों की प्रदात्री है। वेद विद्या से लेकर भौतिक ज्ञान तक जो हमें संसार में रहने योग्य बनाती है वह सरस्वती का ही रूप है, जो अभ्युदय और निःश्रेयस्य की सिद्धि कहलाती है वह भी सरस्वती कहलाती है। पावकानः सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती वाजे भी, जो अन्न को कहते हैं, हमें कृषि की अधिक विकसित व्यवस्था के बारे में जानकारी देकर पवित्र करती है। सरस्वती संसार में अन्न आदि उत्पन्न करने का ज्ञान देती है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी हमें यह बतलाती है कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया कृषि का भी विकास होता गया। नई नई फसलों के बारे में जानकारी बढ़ी, सिंचाई की तकनीक विकसित हुई, हल बैल के अलावा अन्य साधनों का प्रयोग भी बढ़ा और कृषि उत्पादों की ज़रूरत भी बढ़ी क्योंकि जनसंख्या भी दिन ब दिन बढ़ रही थी। यजुर्वेद में कहा गया कि अन्न के द्वारा पृथ्वी या देश या समाज की स्थिति का पता चलता है। यदि बड़े पैमाने पर अनाज उत्पन्न होता रहता है तो लगता है कि पृथ्वी की स्थिति अच्छी है, अर्थात प्रकृति अनुकूल है। वेदों में किसान बड़े योग्य विद्वान और अनुभवी बताए गए हैं। प्रकृति में उपलब्ध हजारों फसलों में से उन फसलों को चुना जो अधिक पौष्टिक अन्न देने वाली है और उन्हें उस क्रम में भी लगाया जिस क्रम में प्रकृति से उनका तालमेल बैठता है। कृषि योग्य भूमि, सिंचाई की व्यवस्था, सूर्य की किरणें फसल के उत्पादन में मदद कर रही है। ये सब ज्ञान उन्हीं बुद्धिमान लोगों की मेहनत का प्रयास है। अन्न उत्पन्न करने का ज्ञान वह भी सरस्वती है। इसी से मानव शक्तिशाली व त्यागशील बनकर संसार में अत्यंत मधुमेह बनता है। वह सरस्वती की ही अनुपम कृपा है। यज्ञम, इस प्रकार ज्ञान पूर्वक किए जाने वाले शुभ कर्म हमारे जीवन को यज्ञमय बनाकर पवित्र कर देती हैं। किसान ही हम सब के अन्नदाता है, इसीलिए इस मंत्र में सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि हे शक्तिशालिनी सरस्वती, जितना तू पवित्र और श्रेष्ठ है उतना ही तू हमें यज्ञमय बनाकर उत्तम बना। वष्टु, संसार में बसने वालों को धीय, शक्तिशाली, धारणावती बुद्धि, वैज्ञानिक सोच रखना। वसु, इस संसार में रहने योग बन जाना। जिस भाव से माँ अपने बच्चों को पालती है उसी निस्वार्थ भाव से सरस्वती माँ, विद्या की देवी, हमें विद्या प्राप्ति ही हमारा श्रेष्ठ कर्म बनाकर धर्म के रास्ते पर अग्रसर कराएं। जीवन यापन के लिए अर्थ, रुपया, पैसा, धन धान्य संपन्न कराएं, हमारी कामनाएं पूर्ण हो। हमें पावका, पवित्र करने वाली, ऐसी शक्तिशाली बनाने वाली विद्या प्रदान करके यज्ञम श्रेष्ठम कर्म कराने वाली वस्तु, संसार में सरस्वती विद्या की देवी ज्ञान प्रदान करने वाली वाजे भी, उत्तम विद्या रूपी अन्न से जो पौष्टिक, सरस और मधुरता से पूर्ण हो, जिससे हम अपने जीवन में उसका समुचित प्रयोग कर सकें। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

0: इस संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मास एवं श्रावण मास के पावन अवसर पर वेद संदेश श्रवण करने वाले समस्त श्रोताओं को आचार्य बितुला का सादर सप्रेम नमस्ते। आइए सुनते हैं वेद पाठ अर्थ सहित।

ते तत परिष्वजीयसी देवता सां मम प्रिया। अर्थ: परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होकर प्राणियों के भीतर रमकर उनको बल देता है, इसी से वह सब प्राणियों का प्रिय है। ओम कल्याण्यजराव मर्त्यस्यामृता गृहे यस्मै कृताशयीस यश्चकार जजारस। अर्थ: प्रकृति जगत का कारण प्रत्येक मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर में है। परमेश्वर ने प्रकृति को अनेक उपकारों के लिए कार्य रूप जगत में परिणत किया है। वह परमात्मा सबका उपास्य देव हैं। ओम त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उतवा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुख। अर्थ: जैसे परमात्मा में कोई लिंग विशेष नहीं है, वैसे ही जीवात्मा में भी नहीं है। वह शरीर के संबंध से स्त्री पुरुष लड़का लड़की आदि होता है। वह शत्रुओं का दमन करके सब ओर दृष्टि करता हुआ धर्मात्मा होकर स्तुति और कीर्ति पाता है।

जीवो मनसि प्रविष्ट प्रथमो जात स उगर्भी अंत। अर्थ, नित्य जीवात्मा शरीर के संबंध से पिता पुत्र आदि कहता है। इस जीवात्मा से भी सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप परमात्मा सब में व्यापक है। ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णम् पूर्णेनासिच्यते उतो तदद्य विद्याम् यस्तत् विश्वपरिसिच्यते।

0: तिस्रो ईरयति प्रवहनीतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषां गावुयन्ति गोपति पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः।
1: सृष्टि के आदि में दयालु परमात्मा ने अपने दिव्य ज्ञान को सर्वाधिक पुण्यात्मा तथा अग्रणी ब्रह्म ऋषियों के हृदय में प्रदान किया। ईश्वर की पवित्र वाणी वेद ब्रह्म ऋषियों के हृदय में पहुंची। ईश्वर की वाणी ही वेद वाणी कहलाती है। वेद वाणी ज्यों के त्यों ब्रह्म ऋषियों द्वारा जिज्ञासु मनुष्यों तक पहुंचाई गई। ऋषियों ने अपनी ओर से उनमें कुछ भी परिवर्तन व परिवर्धन नहीं किया। सांसारिक पदार्थों का नामकरण भी वेद के आधार पर किया। ज्ञान के वाहक ऋषियों ने वेद ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि को विकसित कर उत्तम कर्म में प्रवृत्त हुए और अन्यों को उत्तम कर्म करने की प्रेरणा दी।
0: ओम अपामी वामपस्त्रिद्धमा उपसेधत दुर्मतिम आदित्यासो युयोतनानु अंहसः।
1: विद्यारूपी प्रकाश से सूर्य के समान उपदेशक गुरु माता पिता हमारे बाह्य और आंतरिक रोगों को दूर करें, हमारे कष्टों को दूर करें। मन में अहितकारी एवं हिंसा की भावना पनपने न पाए। कुटिलता एवं पाप युक्त बुद्धि दूर हो। हम पाप कर्मों से सदा दूर रहें। सुशिक्षा से सबका शारीरिक आत्मिक और बौद्धिक विकास हो। कुटिलता हिंसा और रोग हमारे सर्वांगीण विकास में बाधा न बने। शिक्षा से युक्त ज्ञानी जन हमारा मार्ग प्रशस्त करें।

मानव के जीवन में यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव शरीर यज्ञ करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। अग्नि को प्रदीप्त करके पवित्र मन और पवित्र बुद्धि से जो यज्ञ करता है उसका सीधा प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। यज्ञ से मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। यज्ञ से धारणावती बुद्धि को सही दिशा मिलती है। जिस प्रकार समिधा द्वारा अग्नि को स्थिर रखा जाता है, उसी प्रकार धर्म रूपी समिधा से मन, बुद्धि और आत्मा में ज्ञान और श्रद्धा रूपी अग्नि को प्रकाशित किया जाता है।

0: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। घड़ी मिलाते चलिए, सुबह की ठीक 6 बज रही है। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम याचना के साथ सुनते हैं। नमस्कार आपको याचना।
2: नमस्कार रिया, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार और आदाब। सुनिए संक्षिप्त समाचार। बुधोदो में 14 साल का एक नौजवान अपने सौतेले पिता के भाई की मौत के मामले में शामिल हुआ। इसके कुछ ही दिन बाद जुर्के ने गवर्नमेंट स्कूल की ग्रेड 6 की एक छात्रा के कूद कर गिरने की घटना सामने आई। इस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। जारी जांच के नतीजों पर कोई निष्कर्ष निकाले बिना इन घटनाओं ने एक अहम सवाल को फिर सामने ला दिया है। क्या हम अब जानते हैं कि हमारे बच्चे और किशोर किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं या नहीं? कुछ बर्तावों के पीछे कभी कभी मानसिक परेशानी, पारिवारिक समस्याएं

0: सामाजिक दबाव या भावनात्मक पीड़ा छिपी हो सकती है। शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने विद्यार्थियों की भलाई और युवाओं की मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत पर जोर दिया। पिछले 18 महीनों में मॉरिशस में 60 से ज्यादा जटिल चिकित्सा मामलों का इलाज विदेशी सर्जन्स के सहयोग से किया गया। इन विशेषज्ञों की मदद से ऐसे मरीजों का इलाज मॉरिशस में ही संभव हो पाया जिन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत थी। साथ ही इस सहयोग से स्थानीय चिकित्सा टीमों को नई तकनीक सीखने का अवसर मिला है। इस पहल का उद्देश्य कुछ मामलों में मरीजों को इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत को कम करना और मॉरिशस की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्षमता को और मजबूत करना है। पुटरी में पुराने मिलिट्री हॉस्पिटल के एक हिस्से की मरम्मत के बाद वहां फ्रोबेवेल कलेक्शन की अर्धप्रतिमाएं रखी जाएंगी। ये मॉरिशस में गुलामी के इतिहास की झांकी देने वाला एक महत्वपूर्ण एथनोग्राफिक कलेक्शन है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्लेवरी म्यूजियम में मात्र 3 मूर्तियां प्रदर्शित हैं जबकि बाकी के 50 पीस को अभी फ्रांस में है रखा गया है। उन्हें 2027 तक यहाँ लाने की योजना बनाई गई है। विदेश में यूक्रेन में बचाव कर्मी शुक्रवार को रशिया के हमले में तबाह हुए एक बड़े शॉपिंग मॉल के मलबे में बचे लोगों की तलाश जारी रख रहे हैं। केवीरी में 2 ड्रोन्स ने इस व्यस्त शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया। 16 लोगों की मौत हो गई है जबकि 130 लोग घायल हुए हैं। 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद पश्चिमी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिराएंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश होती रहेगी। हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16 और अधिकतम 22 से 24 जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 और अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 6:26 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:59 पर होगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: ভোর কি বেলা তাজগি ভরি শুরুয়াত
1: অন দি আওয়ার এভরি আওয়ার রেডিও মরিশাস।
2: नमस्कार, सुप्रभात। सुबह की ये बेला है, भोर की ये बेला है। आपकी ये सुबह मंगलमय हो, आपके मन में नई ऊर्जा, नई हिम्मत आए। आज रविवार 23 अगस्त की इस भोर की बेला में हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं ताकि आपके लक्ष्य में कोई बाधा न आए, आप अपने लक्ष्य की ओर बिना बाधा के बढ़ते जाएं। ईश्वर से इसी प्रार्थना के साथ हम वैदिक वाणी कार्यक्रम सुनते हैं, आर्य सभा मॉरिशस के डॉक्टर वेद पाल जी द्वारा।
3: मधुर शहद से हो आपकी वाणी, आइए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस की ओर से वैदिक वाणी।

वेदवाणी के सुधी श्रोतागण, श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में हम वेदवाणी का श्रवण कर रहे हैं।

वेदवाणी मनुष्य के लिए कल्याणी वाणी है, मनुष्य की अभिलाषा सुख प्राप्त करने की रहती है। किंतु मनुष्य तभी सुखी रह सकता है और उसके प्रतिवेशी, उसके पड़ोसी भी तभी सुख और शांति से रह सकते हैं जब मनुष्य आचारवान हो। आचार ही मनुष्य की वह कसौटी है जो मनुष्य को अधिकतम सुख की प्राप्ति कराती है। बिना आचार के मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। वेद इस संदर्भ में हमें शिक्षा दे रहा है, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम् ते रतन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि। इस मंत्र में आचार की शिक्षा देते हुए यह संदेश दिया गया है कि हम किसे संबोधन करके उस आचार की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मंत्र का प्रारंभिक पद है अग्ने व्रतपते, अर्थात व्रतों का अधिपति जो अग्नि परमेश्वर है, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर है, वह क्योंकि उसके नियम सदैव अटल हैं, उसके नियमों में किसी प्रकार का कोई व्यतिक्रम, कोई बदलाव, कोई भंग देखा नहीं जाता। इसलिए यदि मनुष्य भी व्रत का आचरण करना चाहता है तो उसे उस परमेश्वर के व्रतों से शिक्षा लेनी होगी, और यदि वह उसके व्रतों से शिक्षा लेकर के तदनुरूप अपना आचरण करता है तो वह सुख प्राप्ति की यात्रा में एक कदम आगे बढ़ सकता है। मंत्र में प्रार्थना की गई है कि व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत का पालन करूंगा, व्रत का आचरण करूंगा। हे प्रकाश स्वरूप, आपकी कृपा से मैं अपने व्रतों का सफलतापूर्वक पालन कर सकूं। व्रत क्या हैं? वेद ने कहा है कि मनुष्य के प्रत्येक अवस्था के भिन्न भिन्न व्रत हैं, भिन्न भिन्न अवस्थाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नियम हैं। जैसे विद्यार्थी के लिए जो व्रत है उसका महत्वपूर्ण व्रत है विद्या अर्जन करना। उस विद्या के अर्जन के लिए उसे करना क्या है, उसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर देना है। यदि कोई विद्यार्थी जीवन में विद्या प्राप्ति के लिए अपने आप को सर्वथा संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं करता है तो वह सम्यक प्रकार से विद्या की प्राप्ति नहीं कर सकता। विद्या की प्राप्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, और समर्पित किस प्रकार से करना कि प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल अपने उस व्रत को स्मृत करते रहना, अपने व्रत को दोहराते रहना कि कहीं भी किसी प्रकार की ढील उसके विद्या प्राप्ति के प्रयत्न में न आ सके। आलस्य इसमें सबसे बड़ी बाधा है। आलस्य के रूप में मनुष्य अपने कार्य को छोड़ करके दूसरे कार्यों में व्यापृत हो जाता है, अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है, तो वेद ने कहा वह नहीं करना है। अर्थात सतत जागरूकता, अग्नि का समिंधन करने का अभिप्राय सतत जागरूकता है, अर्थात उस विद्या प्राप्ति के प्रवाह में किसी भी प्रकार का व्यतिक्रम न होने देना। और वह व्रत का आचरण मनुष्य को विद्यार्थी काल में सफलता प्रदान कराता है। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन का महत्वपूर्ण भाग है गृहस्थ, दूसरा आश्रम। इस गृहस्थ आश्रम के व्रत कुछ भिन्न प्रकार के हैं। गृहस्थ क्योंकि परिवार का निर्माण करता है, और परिवार का निर्माण करने के लिए जो दो इकाई हैं पति और पत्नी के रूप में, उन दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान।

समर्पण, और वह समर्पण इस प्रकार का हो कि उसमें किसी प्रकार की शिथिलता के लिए या तीसरे के प्रवेश के लिए कोई अवसर नहीं है। हम देखते हैं कि परिवार में जब किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश होता है, उन दो के मध्य में कोई तीसरा आ जाता है, तो भली प्रकार से हंसता खेलता परिवार विखंडित होने लगता है, विश्रृंखलित होने लगता है, तो वह परिवार बिखरे नहीं, उसके लिए अपेक्षित है पति और पत्नी का एक दूसरे के लिए समर्पित रहना। उनका यह समर्पण किन कार्यों के लिए हो? अपने जीवन की आवश्यकता, ईश और ऊर्जा है, बल की प्राप्ति, भोग्य पदार्थों की उपलब्धि, यदि इसके लिए दोनों मिलकर के एक व्रत रहते हैं, एक प्रयत्न करते हैं, तो निश्चित रूप से वह सफल होते हैं। गृहस्थ का महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रजा का निर्माण करना है, और उस प्रजा के निर्माण के लिए अपने आप को संयमित रखना, अपने आप को मर्यादा में बांध कर रखना। यदि पति और पत्नी अर्थात माता और पिता दोनों का जीवन संयमित न हो, दोनों का व्यवहार संतुलित न हो और दोनों का व्यवहार मर्यादित न हो, तो उनकी संतति पर जो प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव के कारण उस संतति का पूर्ण विकास होना संभव नहीं है। अर्थात पूर्ण रूप से उनका मनुष्य बन जाना, मानव बन जाना इस बात पर निर्भर करता है कि उनके माता पिता का व्यवहार किस प्रकार का रहा। यदि उनके व्यवहार में विश्रृंखलता ही हो, परिवार में शिथिलता आ जाए, परिवार टूटने और बिखरने लगे, तो उनकी संतति कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है, उनका जीवन अधूरा ना हो। इसके पश्चात जो मनुष्य की अगली अवस्था है, उस अगली अवस्था में व्यक्ति जो उसका एक क्षेत्र, उसका दायरा संकुचित हुआ था, वह पति पत्नी और अपनी संतान तक सीमित होकर के रह गया था, यहाँ उसका कार्य क्षेत्र विस्तारित हो जाता है। व्यक्ति अब केवल अपने बच्चों का चिंतक नहीं है, उनका हितैषी नहीं है, अपितु उन्हें समर्थ बनाने के पश्चात समाज के सभी बच्चों का जब वो ध्यान करना प्रारंभ करता है, अपने आप को उनके लिए समर्पित करता है, तो कहीं ना कहीं भले ही उसने दो बच्चों को पीछे छोड़ा हो, किंतु आज उसके पास पूरे का पूरा परिवेश, पूरे का पूरा मोहल्ला, और जहाँ तक उसका कर्म क्षेत्र बढ़ता जाए, उन सबके बच्चे उसके अपने बच्चे की तरह होते हैं, और उन बच्चों के लिए भी वह मार्गदर्शक बनता है। इस प्रकार से वह अपने उस जीवन में दो बच्चों के परिवार से निकल करके जहाँ बृहत्तर परिवार की ओर यात्रा प्रारंभ करता है, अपने अनुभव का लाभ उन बच्चों तक पहुँचाता है, उससे समाज में एक श्रेष्ठता का, सौहार्द का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, और यह सौहार्द का वातावरण ही हमारे सुख का आधार बनता है। इसके पश्चात मनुष्य की जो अगली अवस्था है, जहाँ मनुष्य की इच्छाएं थोड़ी संकुचित होने लगती हैं, भौतिक संसाधनों की अपेक्षा कुछ न्यून होती है, घटती है, तो उस अवस्था में वह व्यक्ति त्याग के मार्ग का आश्रय करता है, और त्याग के उस मार्ग पर चलते चलते वह अपने आप को पूर्णतः उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर के लिए समर्पित कर देता है, संग्रह करना छोड़ देता है, और वह जो संग्रह करना छोड़ता है, अपने आप को समाज के लिए समर्पित करता है, तो वह समाज के अंदर प्रकाश का, ऊष्मा का, ऊर्जा का संचार करता है। उसका यह ऊर्जा का संचार समाज के लिए प्रकाश स्तंभ का पास कार्य करता है। यह प्रकाश स्तंभ आने वाली पीढ़ियों के लिए जहाँ पथ प्रदर्शक बनता है, वहीं मानव मात्र के लिए वह प्रेरक बनता है।

उसका स्वयं का संग्रह नहीं है, अपितु जो कुछ उसके पास है वह समाज के लिए है, और उसके व्यवहार को देख करके समाज उसकी चिंता करता है। तो इस

0: निर्भर करती है कि समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है, समाज की छोटी से छोटी इकाई, वह अपने जीवन में समर्पण का भाव लाए। और यदि वह समर्पण का भाव लाती है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति का जीवन भी सफल होता है और समाज भी सुखी और संपन्नता की ओर बढ़ता है। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा वैदिक वाणी।
2: और आज आप सुन रहे थे डॉक्टर वेदपाल जी को। इस समय 6:17 हुए हैं। चलिए जरा हिम्मत बंधाते हैं और आगे बढ़ने का ये जज्बा जो हमारे अंदर है, इस जज्बे को हम खूब खूब प्यार से सजाते हैं। ना रुकने का ये जज्बा है आपके अपने दिल में बसाए रखिएगा। बस इस गाने के बाद आप सुन पाएंगे एक विशेष कार्यक्रम जो हम आप लोगों के लिए प्रस्तुत करेंगे श्रावण मास के अवसर पर। आज सुनिएगा आर्य सभा मॉरिशस के पंडित फाकू जी को थोड़ी देर में।

सो बस हम श्रावण मास के उपलक्ष्य में ये विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के लिए आर्य सभा मॉरिशस के पंडित फाकू जी की प्रस्तुति में।

ओम शांति शांति शांति। सभी सम्माननीय श्रोताओं, श्रावणी महोत्सव के उपलक्ष्य में संदेश माला की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी को मैं पंडित फाकू आर्य सभा मॉरिशस की ओर से स्वागत और अभिवादन करता हूँ। आदि सृष्टि में परमात्मा ने सभी मानव के लिए वेद ज्ञान देने के लिए चार ऋषियों के मुख से वेद मंत्र बुलवाए। वे मंत्र मानव जाति को अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से जीने की कला सिखाने वाले हुए।

श्रोताओं, उन मंत्रों से ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने छांट छांट कर अपने ग्रंथों में सम्मिलित किया। संस्कार विधि के अंतर्गत विवाह संस्कार में प्रतिज्ञा मंत्र का पहला मंत्र इस प्रकार है, ओम गृभनामीते सौभगतवाय हस्तम मया पत्या जरदश तिर्यथास। यह मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल सूक्त 85 मंत्र 36वां है। प्रतिज्ञाएं तो सभी वरवधु करते हैं, पर उसका पालन करने में कुछ लोग चूक जाते हैं, इसीलिए विवाह के थोड़े दिनों पश्चात विवाह विच्छेद हो जाता है। मंत्र के आशय पर विचार करते हैं तो पता चलता है, वर वधु दोनों एक दूसरे के हाथ थाम कर प्रतिज्ञा लेते हैं, यह नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारा सम्मान करूं और तुम मेरा सम्मान न करो। सम्मान तब बनता है जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। ऐसा मान लिया गया है कि केवल पुरुष सम्माननीय हैं। यह मध्यकाल की परंपरा है, यह रूढ़ी है। जैसे आदेश देना केवल पुरुषों का काम है, महिला का काम आदेश का पालन करना है, लेकिन प्रतिज्ञा के मंत्र में तो कहा गया, गृभनामीते सौभगतवाय हस्तम, मैंने अपने भले के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने मंगल के लिए तुम्हें स्वीकार किया है, तुम्हारा हाथ पकड़ा है, इसलिए मुझसे तुम्हारा भला है और तुमसे मेरा भला है। फिर आगे कहते हैं, तुम यह मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए कोई साधारण व्यक्ति हूँ, नहीं, मैं विशिष्ट हूँ। भगो अर्यमा, यानि तुमको साक्षात सविता ने स्वीकार किया है, अर्थात जो दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य सामर्थ्य हैं, मैं उनके साथ तुमको स्वीकार कर रहा हूँ। उन ऐश्वर्यों के साथ, उन दिव्यताओं के साथ, उन श्रेष्ठताओं के साथ तुम भी मेरे लिए उतनी ही अच्छी हो, उतनी ही श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ का श्रेष्ठ के साथ ही संसर्ग होता है, संवाद होता है, मित्रता होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए काम करें, एक दूसरे की अनुकूलता के लिए काम करें। श्रोताओं, इसी प्रकार प्रतिज्ञा मंत्र का अंतिम मंत्र जो अथर्ववेद के 14वां कांड का पहला सूत्र और 97वां मंत्र है, नस्तेयमद्मि मनसोदमुच्ये स्वयं सथनानो वरुणस्य पाशान। पाश कहते हैं जाल या दंड को। दंड कब होता है? अपराध में, अर्थात हमारी भूल है जो मस्तिष्क से संबंध रखती है। मंत्र कहता है कि वे भूलें न हों और ये पाश हमको बांधे नहीं। यह जो बुराई है, पाप है, यह हमको बंधन में डालता है। हमने किसी का कुछ उधार लिया है, चुराया है, तो उसे देखते ही हमारे मन में उससे बचने की इच्छा होती है। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि जब मनुष्य का मन अच्छा होता है तो उसके अंदर आनंद, उत्साह और निर्भयता होती है। किसी काम को करके आनंद आता है, दोबारा करने की इच्छा होती है, उसे करते हुए किसी तरह का संकोच नहीं होता, निर्भयता होती है। जब मनुष्य बुरा करता है तब भय, शंका, लज्जा होती है। ऐसा लगता है कोई देख तो नहीं लेगा, किसी को पता तो नहीं चल जाएगा, इसका कोई दुष्परिणाम तो नहीं मिलेगा। हम अपने को अपमानित अनुभव करते हैं, आँख मिलाकर, सिर उठाकर बात करने का भाव समाप्त हो जाता है। तो वेद कहता है, नस्तेयमद्मि मनसोदमुच्ये, अर्थात यह बात मन से स्वीकार करनी होगी। यदि आप मन से किसी अच्छाई को स्वीकार कर लेंगे, आपका संकल्प वैसा करने का हो जाएगा, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। कहा है, मन सोद मुच्ये, क्या कहूँगा मैं मन से। न स्तेयम, स्तेय का अर्थ छिपाना, चोरी करना होता है। किसी दूसरे की चीज़ को बिना

हटाए लेना। मंत्र कहता है अपने परिजनों में, अपने घरों में, अपने साथी से कुछ भी स्तेय न करना पड़े, छिपाना न पड़े, चोरी न करनी पड़े, तो फिर मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई संकट नहीं है। सथ नानो वरुणस्य पाषाण, भगवान के जो बंधन है, पाश है, पाप कर्म का जो दंड है, दूसरे के साथ अनुचित व्यवहार करने का जो परिणाम है, आप उससे बच सकते हैं। इस परिस्थिति में वर वधु को शास्त्र एक बात कहता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति गौरव का भाव रखें, एक दूसरे को पाकर गर्व की अनुभूति करें, एक दूसरे के सहयोगी बनकर प्रसन्न हों, और जीवन में कुछ भी ऐसा ना हो जिसके कारण भय, शंका, लज्जा की कोई परिस्थिति पैदा हो। सुताओ, जो व्यक्ति अपने साथियों के सम्मान की रक्षा करता है, ऐसे साथी सेवक अपने स्वामी के लिए अपने को न्यौछावर कर देते हैं। सम्मान वह चीज़ है जो यदि आप किसी को दे सकते हैं तो आप उसका सर्वस्व ले सकते हैं। सम्मान में जो उपलब्धि है वह संपूर्ण की है। यह सम्मान इतनी आवश्यक वस्तु है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर इसकी इच्छा है, चाह है, और यह सदा दूसरों से प्राप्त होती है। दूसरा कोई भी अपनी वस्तु कब देगा? जब वह आपसे प्रसन्न होगा, जब वह आपको अपना हितैषी मानेगा। ऐसी स्थिति में चाहने मात्र से बात नहीं बनती, आपको कुछ बनना पड़ेगा। इसके लिए उसके अनुकूल बनना पड़ेगा और उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। कोई प्रसन्न होगा तो आपको भी प्रसन्न रखेगा। किसी को आदर देंगे तो कोई आपको आदर देगा। इस आदर को पाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि बदले में आदर दें। आप अपने साथी का सम्मान करेंगे तो साथी भी आपका सम्मान करेगा। मैं आप सभी को श्रावणी महोत्सव की शुभकामनाएं प्रदान करना चाहता हूं। धन्यवाद। ओम शांति शांति।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के 6:30 बजे हैं। सभी को नमस्कार। सुबह के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। इन दिनों बच्चों की मानसिक स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुदोदो में 14 साल का एक नौजवान अपने सौतेले पिता के भाई की मृत्यु में शामिल और ग्रेड 6 के छात्रा के कूदकर गिरने की घटना सामने आई। इस पर मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने कहा कि विद्यार्थियों की भलाई और युवाओं की मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझना जरूरी है। पिछले 18 महीनों में मॉरिशस में 60 से ज्यादा जटिल चिकित्सा मामलों का इलाज विदेशी

0: सर्जन्स के सहयोग से किया गया। इस वास्ते मरीजों को इलाज के लिए विदेश जाने की ज़रूरत को कम किया गया और मॉरिशस की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्षमता को और मजबूत करना यही इसका उद्देश्य रहा। पोर्टली में पुरानी मिलिट्री हॉस्पिटल के एक हिस्से की मरम्मत के बाद वहां फ्रोबावेल कलेक्शन की अर्धप्रतिमाएं रखी जाएंगी। ये मॉरिशस में गुलामी के इतिहास की झांकी देने वाला एक महत्वपूर्ण कलेक्शन है। विदेश में यूक्रेन में एक शॉपिंग सेंटर पर किए गए दो ड्रोन हमलों में मारे गए लोगों की संख्या 16 तक पहुंची। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। पुधुदो में 14 साल का एक नौजवान अपने सौतेले पिता के भाई की मौत के मामले में शामिल हुआ। इसके कुछ ही दिन बाद जुल्केनिक गवर्नमेंट स्कूल की ग्रेड 6 की एक छात्रा के कूद कर गिरने की घटना सामने आई। इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जारी जांच के नतीजों पर कोई निष्कर्ष निकाले बिना इन घटनाओं ने एक अहम सवाल खड़ा किया है। क्या हम जानते हैं कि हमारे बच्चे और किशोर किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं? शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने विद्यार्थियों की भलाई और युवाओं की मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्कूलों को ज़्यादा सुरक्षित बनाने और बच्चों की बातों और विचारों को अधिक ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद को सुनते हैं। उनसे बात की हमारी सहयोगी जेनी यालापा ने। विवरण तीना बुदना का है।
1: Quand nous trouvons bons enfants, bien voué, bon signal de détresse, nous ayons bon dimun compétent, qualifié, professionnel qui commence.
2: जब हमें लगता है कि कोई बच्चा परेशानी में है और मदद चाहता है, तो हमारे पास योग्य और अनुभवी लोग हैं जो ऐसे बच्चों की देखभाल और मदद करते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि बच्चों में परेशानी के ये संकेत कई बार घर में होने वाली हिंसा के कारण भी होते हैं। घर में उन्हें भावनात्मक, शारीरिक या यौन शोषण का सामना करना पड़ सकता है। कई बच्चे बहुत खराब और तनाव भरे माहौल में रहते हैं। जब वे स्कूल आते हैं और अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं, तो उन्हें जरूरी मदद और सहारा दिया जाता है। हम हमेशा अपने शिक्षकों से भी कहते हैं कि अगर उन्हें लगे कि किसी बच्चे को मदद की जरूरत है, तो वे हमें बताएं। मंत्रालय हमेशा ऐसे बच्चों के साथ है और हमारी पूरी टीम उन्हें जरूरी सहारा और मार्गदर्शन देती है।
1: Nous donnons tout ça soutien là et tout le temps nous dire nous ban professeur si je trouvais et dans enfants qui besoin ça soutien là nous toujours là ministère toujours là ni dans seule équipe qui toujours encadrer ça ban enfants là.
0: पिछले 18 महीनों में मॉरिशस में 60 से ज़्यादा जटिल चिकित्सा मामलों का इलाज विदेशी सर्जन्स के सहयोग से किया गया। इन विशेषज्ञों की मदद से ऐसे मरीजों का इलाज मॉरिशस में संभव हो पाया जिन्हें स्पेशलाइज्ड इलाज की ज़रूरत थी। साथ ही इस सहयोग से स्थानीय चिकित्सा टीमों को नई टेक्निक सीखने का अवसर भी मिला। इस बात पर और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुकापादु सुबाराज नायहू, जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट एनसीसी हैं। इनसे बात की हमारी सहयोगी निर्मा नारायण रेड्डी ने। विवरण तीना बुदना का है।
3: ये आंकड़े अस्पताल में किए गए कैंसर के इलाज के मामलों को दिखाते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई राष्ट्रीय योजना का हिस्सा है, ताकि हमारे मरीजों को देश में ही बेहतर और आधुनिक इलाज मिल सके और उन्हें इलाज के लिए विदेश पर कम निर्भर रहना पड़े। 2025 में एनसीसी में हमने 25 मरीजों की बहुत बड़ी और कठिन सर्जरी की। पहले ऐसे मरीजों को इलाज के लिए विदेश जाना पड़ता था। 2026 के पहले 6 महीनों में ही 27 ऐसे मामले किए जा चुके हैं। इन सर्जरी के लिए कुल 7 सर्जन बारी बारी से मॉरिशस आए। इनमें से 2 सर्जन मुख्य रूप से भारत से आए और उन्होंने इन 27 मरीजों की सर्जरी की। मॉरिशस में हमारे पास जनरल सर्जन है, लेकिन कैंसर की सर्जरी के लिए विशेष सर्जन कम है, इसलिए हम बाहर से विशेषज्ञ सर्जनों को मॉरिशस बुलाते हैं। इसका एक बड़ा फायदा ये है कि मरीजों और उनके परिवारों का विदेश जाने का खर्च कम होता है, उन्हें हवाई यात्रा, होटल और दूसरे खर्च नहीं करने पड़ते और परिवार से दूर भी नहीं रहना पड़ता। मरीज के ठीक होने में परिवार का साथ भी बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा विदेश जाकर

0: पर इलाज कराने के लिए एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें कई बार काफी समय लग जाता है और सर्जरी में देरी हो सकती है। लेकिन जब विशेषज्ञ सर्जन मॉरिशस आती है और हमारे सर्जनों की मंजूरी और साथ से सर्जरी करते हैं, तो काफी समय बचता है और मरीजों को जल्दी इलाज मिल जाता है।
1: मंत्री पत्रिक सेवादेन ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक नई सहायक कंपनी बनाने की घोषणा की है। सीबी एनर्जी सोलर पैनल्स के आयात और उन्हें लगाने की जिम्मेदारी संभालेगी। इस कदम का उद्देश्य होम सोलर प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाना है। पत्रिक सेवादेन कल औगेता में मौजूद रहे, जहां इस परियोजना के फेज 2B से 400 परिवारों को लाभ होगा। इस योजना को UNDP सहित कई साझेदारों का सहयोग प्राप्त है। क्लोडेट जेफ्रॉ गादेवाडू, गीता सुनारान।
2: यहाँ औगेता में NLSD परिसर के हर घर में पहले से ही अपने सौर पैनल लगे हुए हैं। हर घर में 416 पैनल्स लगाए गए हैं। इससे 400 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। ये परिवार हर महीने अपने बिजली के बिल में 400 रुपए से ज्यादा की बचत कर सकेंगे। होम सोलर परियोजना के जरिए सीबी लोगों को देश के ऊर्जा परिवर्तन में ज्यादा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। सीबी के कार्यवाहक महानिदेशक संजय समन कहते हैं,
3: Je pas juste ban bénéficiaire en programme gouvernement. Je suis aussi ban acteur dans transition énergétique nous pays. Chaque fois, cette installation produire électricité grâce à soleil, je peux aussi aider pour diminuer nos dépendances de ban combustible fossile.
2: इस परियोजना को कई साझेदारों का सहयोग मिल रहा है। इनमें UNDP भी शामिल है, जो इस परियोजना के लिए $30 मिलियन की आर्थिक सहायता दे रहा है। इसकी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव अलका भाटिया कहती हैं,
4: The solar panels that have been installed on your houses prove that the transition to renewable energy is not something out of reach and only for big institutions. It starts on our rooftops, in our communities, and in our everyday life.
2: सरकार हर साल 3,600 घरों में सोलर पैनल्स लगाने का लक्ष्य रखती है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मंत्री पत्रिक सेवादेन ने सीबी की एक अलग कंपनी बनाने की घोषणा की है।
5: Nous pour créer une subsidiaire CB qui pour consacrer juste à l'énergie renouvelable. Ce travail, c'est mettre pas nous. Parce que dans les 5 ans, 6 ans à venir, Maurice Bizin au moins a 80 000 lacas inéquipés avec panneaux photovoltaïques. Là, nous en a 12 000 pour l'instant. Mon demande CB qui a partir quelques mois là, prend une mesure pour qu'il y ait un pot de panneaux lui-même.
2: होम सोलर प्रोजेक्ट का उद्देश्य 2035 तक मॉरिशस के ऊर्जा मिशन में रिन्यूएबल ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाकर 60% करने की देश की योजना का हिस्सा है।
1: गन्ने के खेतों में फसल शुरू हो चुकी है। इस बीच इस क्षेत्र को पिछले कुछ सालों से एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कर्मचारियों की भारी कमी। इस बीच गन्ना क्षेत्र अब नई दिशा पकड़ रहा है, इसमें नयापन लाने का विचार किया जा रहा है। इसके लिए गन्ने की पिराई और शक्कर पैदावार के तरीकों तथा शक्कर के प्रयोग में बदलाव की जरूरत है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: सुल्फेरिनो फाक्वा में लगभग एक बीघा जमीन पर अपने खेत में दीवानन हुकुम गन्ने की खेती करते हैं। इलाके के कारखाने में वे अपने ज्यादातर गन्ने भेजते हैं। उन्होंने गन्ने से अन्य उत्पादन तैयार करने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। वे कहते हैं, मेरे दादाजी और पिताजी गन्ने की खेती करते थे। मैं तीसरी पीढ़ी में आता हूँ। मेरे बाद कोई होगा या नहीं, ये निश्चित नहीं है। इसलिए हम छोटा बदलाव ला रहे हैं। गन्ने से बहुत कुछ किया जा सकता है। आज उनकी गन्ने की फसल का एक हिस्सा जॉय को बेचा जाता है। अपने बच्चों को भी गन्ने से दोबारा परिचित कराने की

0: कोशिश में जॉय को गन्ने के सेवन के एक पारंपरिक तरीके को नए रूप में पेश करने का विचार आया। जॉय पातू कहते हैं, हम पहले बच्चों को जिस तरह गन्ना खाना सिखाते थे उसी आदत को वापस ला रहे हैं। उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और 570 किस्म के गन्ने का प्रयोग करते हैं। इसे पीला गन्ना भी कहते हैं, इसमें ज्यादा रस होता है। वहीं सिलेयन ने गन्ने के रस पर ध्यान देने का फैसला किया है, एक ऐसा साधारण और स्थानीय उत्पाद जो अपने स्वाद के लिए काफी पसंद किया जाता है। सिलेयन वंगयन कहते हैं,
1: Quand pour moi le Mauricien, c'est la tradition quoi, parce que nous l'économie, il commence par rapport.
0: गन्ना मॉरिशियनों के लिए एक परंपरा है, हमारी अर्थव्यवस्था इसी से शुरू हुई। आज लोगों के पास गन्ने के खेत से गन्ना तोड़कर चूसने का समय नहीं है, इसलिए कई लोग यहाँ आते हैं और गन्ने का रस खरीदते हैं। गन्ने से नए उत्पाद बनाने की संभावनाएं भी बहुत है। गन्ने का इस्तेमाल सिर्फ खाद्य उत्पादों में ही नहीं बल्कि सौंदर्य प्रसाधनों, रम के उत्पादन और चीनी की अलग अलग किस्मों के लिए भी किया जाता है। ये उत्पाद मॉरिशियनों के साथ साथ विदेशियों को भी पसंद आ रहे हैं। पर्यटकों के लिए ये मॉरिशस की विरासत और स्थानीय हुनर को जानने का एक तरीका है। मारिया गोमेज कहती हैं, स्पेन में दो किस्म के गन्ने हैं, एक ज्यादा गहरे रंग का होता है। यहाँ ये सब देखकर आश्चर्य हुआ। इस कच्चे माल से नए और अलग उत्पाद तैयार करके ये कंपनियाँ मॉरिशस के इतिहास में गहराई से जुड़ी इस पारंपरिक कला और हुनर को आज भी जीवित रख रही हैं।
2: पोर्टलुई में पुराने मिलिट्री हॉस्पिटल के एक हिस्से की मरम्मत के बाद वहां फोबियाविल कलेक्शन की अर्ध प्रतिमाएं रखी जाएंगी। ये मॉरिशस में गुलामी के इतिहास की झांकी देने वाला एक महत्वपूर्ण इथनोग्राफिक कलेक्शन है। अभी अंतर्राष्ट्रीय सेवरी म्यूजियम में मात्र 3 मूर्तियां प्रदर्शित हैं। जो बाकी के 50 पीस हैं वे अभी फ्रांस में रखे गए हैं। उन्हें 2027 तक यहाँ लाने की योजना बनाई गई है। गुलामों के व्यापार और दास्तान उन्मूलन की याद में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ज़्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: 23 अगस्त को हर साल गुलामी के व्यापार और उसके खत्म होने की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाया जाता है। ये दिन गुलामी के दौरान लोगों की तकलीफ और आज़ादी के लिए उनकी लड़ाई को याद करने के लिए है। इस दिन की शुरुआत 22 और 23 अगस्त 1791 की रात सेंडोमेंग में हुई बगावत की याद से जुड़ी है। सेंडोमेंग आज हैती है। ये बगावत गुलामी के लिए लोगों को अफ्रीका से दूसरे देशों में ले जाने की प्रथा को खत्म करने की लड़ाई में एक अहम मोड़ थी। मॉरिशस के लिए भी इस दिन की खास अहमियत है, क्योंकि हमारे देश का इतिहास गुलामी के दौर से जुड़ा हुआ है। मॉरिशस में गुलामी के दौरान लाए गए लोगों और उनके वंशजों ने देश के समाज और इतिहास को गहरा असर दिया। ये दिन गुलामी के शिकार हुए लोगों को याद करने के साथ साथ उन महिलाओं एवं पुरुषों के साहस और आज़ादी के लिए उनके संघर्ष को सम्मान देने का दिन है। गुलामी के दौर की कई कहानियाँ और लोगों की पहचान इतिहास के पुराने दस्तावेजों में पूरी तरह दर्ज नहीं हुई, इसलिए उनकी कहानियों को याद रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मॉरिशस में म्यूजे दे लेस्क्लावाज इंटरकॉन्टिनेंटल भी गुलामी के इतिहास को समझने और उसकी याद को जिंदा रखने में अहम भूमिका निभाता है। ट्रांस इंटरनेशनल पत्रिका का दूसरा संस्करण इसी इतिहास के एक अहम यानी गुलामी के दौर की औरतों पर रोशनी डालता है। 23 अगस्त का ये दिन हमें याद दिलाता है कि गुलामी सिर्फ बीते हुए इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसका असर आज भी समाज और लोगों की यादों में मौजूद है। इस इतिहास को समझना और याद रखना हमारी जिम्मेदारी है।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन में बचावकर्मी शुक्रवार को रशिया के हमले में तबाह हुए एक बड़े शॉपिंग मॉल के मलबे में बचे लोगों की तलाश जारी रख रहे हैं। केवी रीह में 2 ड्रोन्स ने इस व्यस्त शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया। 16 लोगों की मौत हो गई है जबकि 130 लोग घायल हुए हैं। 4 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव अभियान अगले 2 दिनों तक चल सकता है। यूक्रेन

कि राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस मामले की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया। अब चले जाते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद पश्चिमी इलाके और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिराएंगे, हल्की बारिश हो सकती है, रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरा सकते हैं और बारिश होती रहेगी। हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 14 से 16, अधिकतम 22 से 24, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 6:26 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:59 पर होगा।

देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन यहीं पर समाप्त हो चला। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग तकनीकी पर फैजल का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ रहिए, थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। शोक समाचार सुनिए। केवल नगर बेलरीव में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रानी डेजी सिबन जो आरती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनकी माँ चिंता सिबालक के मकान केवल नगर बेलरीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वाइलो ओलिविया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10:30 AM। नंबर 17 एवेनो गानाचन कॉयल ऑफ पोर्टलुई में सत्ताईस साल के जनाब यहिया हसम इब्राहिम शरीफ गुजर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के 12 बजे उनके पिता इब्राहिम शरीफ मोहम्मद रियाज के मकान नंबर 17 एवेनो गानाचन कॉयल ऑफ पोर्टलुई से उठाकर सबसे पहली नमाज जनाजे के लिए गुत निकोले पोर्टलुई में नूर इस्लाम की मस्जिद और फिर दफनाने के लिए पाए का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट नून। मोसेलमान गिलजानन कॉन्फुक्रो फिनिक्स में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के जनाब हयातुल्ला कसमाली जो हयातुल्ला के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा दिन के 11:30 बजे उनकी बीवी सुल्ताना बीबी पीरबकस के मकान मोसेलमान गिरजानन कॉन्फुक्रो फिनिक्स से उठाकर दफनाने के लिए रिश्तिया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11:30 AM। कोजा लेन मारीजानी रोस्पेल में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री राजन हसराज जो राजमासों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनकी पत्नी सीता हसराज के मकान कोजा लेन मारीजानी रोस्पेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। ब्लू प्लाटो कोटेज में 92 ईयर्स ओल्ड के श्री अरबादू रामास्वामी जो नारायण शोफेक

के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2:30 बजे उनके बेटे रवीन हमासोमी के मकान बोपला तुकुतेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कहवा का सियाह कुतेज की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। काशीपुर हनुमान मंदिर नंबर 120 मीनाजैन रोड काशी में, नंबर 120 मीनाजैन रोड काशी में 71 साल के 71 years old के श्री भास्कर प्रसाद देवीदीन जो देवीन महास के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके बेटे पंडित अरवेश शर्मा देवीदीन के मकान काशीपुर हनुमान मंदिर 120 मीनाजैन स्ट्रीट काशी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले सालीन काशी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:30 PM। हुनुआव स्ट्रीट विलनुआ में 71 साल के 71 years old के श्री मोहन प्रसाद बुबन जो देवानंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके बेटे विक्रम बुबन के मकान खुनवा स्ट्रीट विलनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रणमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:30 PM। अस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 63 साल की 63 years old की श्रीमती अमिता चितामन पैदाशी नाम जहरी और जो अमिता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1 बजे उनके पति मनन चितामन के मकान अस्टोरिया रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआरूज गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। स्वस्तिका स्ट्रीट पुधोदो आमलेट में 70 साल की 70 years old की श्रीमती गार्गी सिबाहू पैदाशी नाम उज गोबी और जो सांता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पति विद्यानंद सिबाहू के मकान स्वस्तिका स्ट्रीट पुधोदो आमलेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेस्पेरांस पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। पेटी शमे बेलेया में 84 साल की 84 years old की श्रीमती देवंती रतिया पैदाशी नाम अलकोरी और जो कृष्णावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9:30 बजे उनके बेटे राजा राम रतिया के मकान पेचिशो में बेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: रविवार 23 अगस्त को मिडलैंड्स के जगदीश्वरनाथ शिवाला द्वारा सुबह 5 बजे से श्री नरसिम्ह देव और नवग्रह की मूर्ति स्थापना, पूजा विधि, प्राण प्रतिष्ठा, पूर्णाहुति का आयोजन किया जा रहा है। श्रावण मास के संदर्भ में रविवार 23 अगस्त को मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वाधान में महर्षि दयानंद वैदिक मंदिर जो थोबिश में है सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक यज का आयोजन कर रहा है। लावोच वैदिक मंदिर शाखा नंबर 6 सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक, विनोबा भवन सैकोस्तों सैपिय शाखा नंबर 4 सपहर के 3:30 बजे, विवेकानंद सभा तोंबोबी शाखा नंबर 2 शाम 4 बजे, दोनों जगहों में लावोच और सैपिया में प्रवचन किया जाएगा। आचार्य

0: मोहन आर्य श्रुत बंधु द्वारा। रविवार 23 अगस्त को सपहर के 3 बजे श्रावण मास महोत्सव के संदर्भ में गहलोत राजपूत महासभा महायज्ञ का आयोजन कर रहा है, जो सपहर के 3 बजे जागोनाल रोड लिस्पेरांस त्रिबोशे में किया जाएगा। रविवार 23 अगस्त को गंगा तालाब में श्री सत्य साई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सुबह 9:30 बजे से दिन के 12:30 बजे तक रक्तदान और शिरडी साई बाबा अभिषेक का आयोजन किया गया है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।
2: सुबह के 6:57 और 18 सेकंड हुए हैं। स्पोर्ट्स न्यूज। सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार व आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। रविवार का दिन है और सबके लिए शुभ हो। इंग्लिश प्रीमियर लीग के पहले मैच में ही बवाल मच गया, जहाज डूब गया और पैसा न बोल पाया। मैनचेस्टर यूनाइटेड और टोटेनहम हॉटस्पर की बोलती बंद हो गई। फुटबॉल की खूबसूरती वापस आ गई, किंतु सबसे पहले हमारी मॉरिशन चैंपियन किमलेकु डेपिना को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। टू ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में कल उसने तीसरा स्थान पाकर अपनी ग्रीन जर्सी बरकरार रखी, यानी लीडर का पद भी उसने बरकरार रखा। आज की जो आखिरी रेस है वो 123.3 किलोमीटर की होगी, जो मॉरिशन समय अनुसार दिन के 2 बजे आरंभ हो रही है। किमलेकु डेपिना जनरल क्लासिफिकेशन में अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी लियान लाइपर्ट से 24 सेकंड आगे है, यानी कि आज की रेस वो 24 सेकंड की दूरी पर शुरू करेगी। काफ़ी अच्छा लम्हा, अच्छा इतने सारे डिस्टेंस में अच्छा होता है, और उनको हार्दिक बधाई। इसलिए कम ऑन किम, कम ऑन मॉरिशस। कल पूर्वांतिम चरण था, उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया और जनरल रैंकिंग में अभी तक वो लीडर बनी हुई है। हार्दिक बधाई किमलेकु डेपिना को। आज सब मिलकर हम बधाई देंगे और खुशियां मनाएंगे हमारी मॉरिशन चैंपियन किमलेकु डेपिना के लिए। बात करें अब इंग्लिश फुटबॉल की। प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 मैनचेस्टर यूनाइटेड और टोटेनहम हॉटस्पर के लिए बहुत खराब तरीके से आरंभ हुआ। बवाल मच गया, सवाल खड़ा होने लगा है कि हुआ तो हुआ पर कैसे हुआ। इट्स रोड टू हेल मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। हल सिटी ने उसे कोई भी हल ढूंढने नहीं दिया। हल ढूंढते ढूंढते हलचल मच गई कल हल सिटी के मैदान पे। हल सिटी 2-0। कल का ये पहला मैच था, अर्ली किक ऑफ में अर्ली झटका मैनचेस्टर यूनाइटेड को। अजय सेमी अजय ने पहला गोल स्कोर किया। खेल के 17वें मिनट पर हल सिटी को उसने आगे किया। ये एक हार्ड रॉक डिफेंडर है और सेमी अजय का पहला गोल। फिर कुछ ही मिनट बाद, 10 मिनट बाद नोबेल मेंदी एक और डिफेंडर ने डिफेंस को तोड़ते हुए दूसरा गोल स्कोर किया। हल सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0 से परास्त किया। और एक यदि हल सिटी ड्रीमलैंड में है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बुरा सपना, नाइटमेयर। और इस प्रकार कल मार्कस राशफोर्ड को भी मैदान पर लाया गया लगभग 2 साल बाद, फिर भी कुछ नहीं हुआ। यूरी चेलमांस और बाकी जो खिलाड़ी है वे भी कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि कार्लोस बालेबा मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ गया है, इंतज़ार करना पड़ेगा। इतने सारे पैसे खर्च किए गए हैं, फिर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना ये मैच हार गया। और दूसरी ओर कल का जो आखिरी मैच था, आखिरी रास्ता नहीं है लेकिन रास्ता अभी लंबा है, फिर भी ब्रैंडफोर्ड ने कल टोटेनहम हॉटस्पर को तोते तोते नहीं बल्कि जल्दी जल्दी उसे 3-0 से परास्त किया। खेल के 12वें मिनट पर कीन लेविस पोटे का एक पहला गोल, 33वें पर विताली जानेल्ट और दूसरे भाग की शुरुआत में माइकल कायोदे का एक तीसरा गोल। इन सबके ऊपर ईगो चियागो ने 55वें मिनट

पर एक पेनाल्टी मिस भी की और ब्रेंटफोर्ड ने अंत तक टोटेनम को परेशान किया और 3-0 से उसे तोड़ा। टोटेनम हॉटस्पर ने काफ़ी खर्च किए हैं, काफ़ी निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है नए नए खिलाड़ियों पर, बहुत सारे लगभग 185 मिलियन पाउंड खर्च किए। अभी एक और नया खिलाड़ी अभी आने वाला है, सो फिर भी पैसा न बोल पाया ब्रेंटफोर्ड ने टोटेनम को 3-0 से तोड़ा। बाकी मैचों में लीड्स यूनाइटेड ने एवे जाकर नॉटिंगहम फॉरेस्ट को 1-0 से हराया। एंटोनी स्टैक का एक पहला गोल लीड्स के लिए। इप्सविच टाउन ने सन्डरलैंड को 2-1 से हराया। एमेसन और जैक क्लार्क ऑन टारगेट और नीलसन अंगुलो का एक गोल सन्डरलैंड को बचा नहीं पाया। तो एवर्टन ने ये अभियान, ये कंपेन 2-0 से शुरू किया। एवर्टन 2 क्रिस्टल पैलेस 0। किरन ड्रूसबरी होल के बाद चियानो बैरी ऑन टारगेट। एवर्टन 2 क्रिस्टल पैलेस 0। अब आज रात प्रीमियर लीग का पहला सप्ताह जारी रखा जाएगा 3 मैचों के साथ। आज शाम 5 बजे ब्राइटन वर्सेस एस्टन विला। एस्टन विला अभी भी खरीदारी कर रही है, वो लियोन गोरेट्स्का को लगभग प्राप्त कर चुका है बायर्न म्यूनिख से। 31 साल का लियोन गोरेट्स्का आज मेडिकल पूरा करेगा विला पार्क में, लेकिन खेल नहीं पाएगा अवश्य ही। सो ब्राइटन वर्सेस एस्टन विला शाम 5 बजे। उसी समय मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला बोर्नमुथ से, नया कोच है, नई टीम कह सकते हैं पेप गार्डियोला के बाद, सिटी पर कहर ढा गया है। सो देखते हैं कि आज शाम 5 बजे क्या होगा। एक नए चेहरे के साथ मैनचेस्टर सिटी क्या मैदान पर उतरेगी बोर्नमुथ के विरुद्ध। और आज रात 7:30 बजे 7:30 PM सेंट जेम्सेस पार्क में न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, देखते रहिए और सुनते रहिए। सो इतना सब कुछ इंग्लिश फुटबॉल को लेकर। बता दें कि स्पेन के लालिगा में भी कल रियल मैड्रिड ने अपने पहले मैच में ऐन मौके पे जीत हासिल की। कल मैड्रिड ने एवे जाकर स्पानियोल को 2-1 से हराया और इस प्रकार खेल के इंजरी टाइम में रियल मैड्रिड की जीत हुई। स्पानियोल 1-2। योजे मोरिनो ने 13 साल बाद फिर से अपनी एंट्री मारी स्पेन में और वो भी अपनी पुरानी टीम रियल मैड्रिड के साथ। जूड बेलिंगहम के बाद नए खिलाड़ी कार्लोस एस्पी ने इंजरी टाइम में रियल मैड्रिड को जीत दिलवाई। वेलेंशिया 0 सेल्टा वीगो 0 एथलेटिक 1 सेविलिया 3। आज एफसी बार्सिलोना अपनी एंट्री मार रही है। इटली का सीरिया भी कल ही आरंभ हुआ। इंटर मिलान ने मोंजा को, चैंपियन टीम इंटर मिलान ने मोंजा को 4-0 से हराया। हैकन कानहानोग्लू का एक पहला गोल, पियोत्र ज़ेलिंस्की, पियो एस्पोजितो और यान बिसेक के बाकी गोल। इंटर मिलान 4-1, उदिनेज़े 1-1, जेनोवा 0 नापोली 2। नापोली के लिए केविन डी ब्रून और एंटोनियो वेगरा ऑन टारगेट। पामा 0 कागलियारी 1। और फ्रांस के लीग 1 में कल रेसिंग क्लब दे लांस ने ओसेयर को 5-2 से हराया। लुमा 2 ब्रेस्ट 2, निस 0 लोरियन 0, टूलूज 0 ओलंपिक दे लियन 2 और 3-0 पारी एफसी 2। आज बाकी सभी मैच खेले जाएंगे इन सब चैंपियनशिप में। सो स्पेन के लालिगा में बार्सिलोना एवे जाएगी एल्चे के मैदान पे। इटली के सीरिया में एसी मिलान खेलेगी टोरिनो के विरुद्ध। यूवेंटुस भी एवे जाएगी फ्रोजिनोन के मैदान पे। और फ्रांस के लीग 1 में पेरिस सेंट जर्मेन आज एवे जाएगी रेन के मैदान पे। सो इतना सब कुछ फुटबॉल को लेकर। बता दें कि फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के डच ग्रैंड प्री में कल लैंडो नोरिस ने पोल पोजीशन हासिल की। आज वो रेस शुरू करेगा पोल पोजीशन से। जॉर्ज रसेल दूसरे स्थान पर आया है। और मॉरिशस में स्थानीय तौर पर आज क्षेत्रीय फुटबॉल में पेची गाफ्रे में एक फुटबॉल फिएस्टा रखा गया है। सो इसमें आज शाम 3 बजे यंग टाइगर्स का मुकाबला होगा शाम 3 बजे TBS फुटबॉल क्लब से। और 4:30 बजे आज ही पेची गाफ्रे वेटेरन का मुकाबला सैटरडे रोवर्स से है। फिर रोशनुआ दुदला बीमा चैलेंज सुवेनियर कप में आज शाम 3:30 बजे स्काईलॉक एफसी का मुकाबला सिलेक्शन कोटेज से हैं। तो ये थी खेलकूद संबंधी चंद जानकारियां। सुबह के 7:06 और 20 सेकंड आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।

0: On the hour, every hour, Radio Marches.
1: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu. Toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
2: MBC Radio, 24 hours a day.
3: इस समय सुबह के 7:08 हुए हैं. ये है रेडियो मॉरिशस आप लोगों की सेवा में. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ विज्ञप्तियां सुनिए. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रिश्तेया के निवासियों को सूचित करता है कि रिश्तेया रोड, सुशील लेन, शिवाला रोड, मुस्लिम सिमेट्री रोड, स्कूल लेन और रेजिडेंस रोमा में और आसपास के इलाकों में आज रविवार 23 अगस्त को सुबह 8:30 से दिन के 12 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी. सैंक्वा के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि निकोले गली, देबुशे गली, मारियामेन टेम्पल, आलेता मारे और रेजिडेंस पोल टोरो गलियों में आज रविवार 23 अगस्त को दिन के 12 से 2:30 तक यानी कि 2:30 तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी. पेचित रिविया के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि लाजोयत गली, मकनामेगा गली, ओल्ड ट्राफो गली और लाफूश गली में तथा रॉयल रोड के एक भाग में आज रविवार 23 अगस्त को सुबह 8:30 से दिन के 3 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी. फिर पोलवी के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि राहुल रिवे गली, डॉक्टर ओनेसिफो बोजो गली, लागेते गली, सेंट जेम्स गली, तेने गली, सेंट जोन गली, ओरी ले सिदाने गली, नहाबू सलीम गली और मेयर बर्तेलेमी गली में आज रविवार 23 अगस्त को सुबह 8:30 से दिन के 3 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी. तो ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से. और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सूचित करता है इन सभी ग्राहकों को कि मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये जो काटी हुई बिजली की सप्लाई का जिक्र किया हमने फिर से जारी कर दी जाएगी. और इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे अपना इंतज़ाम कर लेने की मांग करती है. ये विज्ञप्तियाँ पढ़ी हमने आप लोगों के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से. इस समय सुबह के 7:10 हुए हैं.
4: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर.
3: तो बस चलिए सुबह का नजराना कार्यक्रम में आपका दिल की गहराई से और दिल खोलकर स्वागत करते हैं. हम सुबह की ये बेला है, रविवार का समय है और ऐसे में रविवार की दिनचर्या कुछ अलग होती है.

वीकडेज के मुकाबले में। सो आपका आपकी दिनचर्या बहुत ही प्यारी रहे, बहुत ही सफल रहे। आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ गाने हैं भी पेश करेंगे आप लोगों के लिए, और कुछ छोटे मोटे आइटम्स भी पेश करेंगे। चलिए आप लोगों को एंटरटेन करते हैं हम सुरेश वाडकर अनुपमा देश पांडे की आवाज़ों के साथ। ये हैं चांदनी मूवी का गाना।

0: एबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
1: 7:15 बजे हैं। चलिए कुछ और विज्ञप्तियां हैं आपके लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चिमरीतिया के निवासियों को सूचित करता है कि फिलिंग स्टेशन इंजन रॉयल रोड का चिमरीतिया के एक भाग में रेजिडेंस गवातों बनवेन रोड सैन लेओन रोड और बेचवेल रोड के एक भाग में आज रविवार 23 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे, जिस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। लालमाटी के निवासियों को सूचित करता है सीबी कि नेहरू रोड के इलाकों में और आसपास के इलाकों में ब्रांच रोड जीरोदे रोड महात्मा गांधी रोड बासदेव बिसुंदयाल रोड स्टेशन दे ला पुलिस और आसपास के इलाकों में आज रविवार 23 अगस्त को सुबह सवा आठ बजे से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर फगस साइड के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि मोसिल्मा

Ivoirienne, non seulement Mounier, non seulement Lumina, et आसपास की गलियों में आज रविवार 23 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से दिन के 2:30 बजे तक यानी कि 2:30 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। बर्कली के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि प्रिजों बोबासिन, एवेन्यू जैस्मिन, एवेन्यू

0: Asylum, Residence Berkeley, Rue Eschendrodea, or MOA Berkeley, Piscine Serge Alfred, OYC, Verge Bissambo, or Montroche Ilacome, Aj रविवार 23 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, फिर दोबारा दिन के 2 बजे से 2:30 बजे तक, यानी कि 2:00 से 2:30 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। रोशपोइन के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि रोशपोइन एवेन्यू, नेओन एवेन्यू, वारियों एवेन्यू और प्लूटो एवेन्यू में कल सोमवार 24 अगस्त को सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। इन सभी इलाकों में बिजली के की मरम्मत के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये सभी काटी हुई सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये भी मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। सो ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। इस समय सुबह के 7:18 हुए हैं। आइए सुनते हैं आज का मंगल विचार कार्यक्रम।
1: मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से सुनिए। मंगल विचार।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मनुष्य, कर्म पर तेरा अधिकार है, परंतु कर्म के फल पर तेरा अधिकार नहीं है। प्रश्न उठता है कि कर्म के फल पर यदि मनुष्य का कोई अधिकार नहीं, तो क्या उसे कर्म करना छोड़ देना चाहिए? आइए विचार करें। कर्म को त्यागना नहीं होता है, चाहे कर्म का फल निराशाजनक ही क्यों न हो, तो भी आशावादी बनकर कर्म करते जाना चाहिए। चीन के एक राजा ने जापान से युद्ध किया और वह युद्ध में हार गया। उसने फिर से युद्ध किया और वह फिर से हार गया। 9 बार युद्ध में हार जाने पर राजा निराश हो गया। वह एक गुफा में जाकर बैठ गया। उसने देखा कि गुफा में एक मकड़ी उछलकर एक मच्छर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही वह मच्छर को पकड़ती थी, मच्छर उड़ जाता था और मकड़ी नीचे गिर जाती थी। वह अपने जाले में चढ़कर फिर से शिकार करती थी और फिर से गिर जाती थी। अंतिम बार मकड़ी इतने जोर से उछली कि उसने मच्छर को डबोच दिया। यह देखकर राजा उठ खड़ा हुआ। उसने फिर से युद्ध की तैयारी की और इतनी शक्ति लगाकर उसने युद्ध किया कि अंततः उसकी जीत हुई। श्रोताओं, कर्म का फल यदि न मिले तो हो सकता है कि हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई हो। उस कमी को पूरा करने में ही बुद्धिमानी है। भारत के जलियांवाला बाग में जब अंग्रेजों ने सैकड़ों लोगों पर गोलियां चलाईं, तब देश के सभी लोग रो पड़े, परंतु अंग्रेजों ने लोगों के रोने की आवाज़ नहीं सुनी और उन्होंने अपना अत्याचार जारी रखा। भगत सिंह ने कहा, अंग्रेज़ बहरे हो गए हैं, उन्हें सुनाने के लिए बड़ा धमाका करना होगा। भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार के असेंबली हॉल के सामने बम ब्लास्ट किया। बम फेंकने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला।

0: और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उनके गले में फांसी का फंदा लगाते समय अंग्रेज उनकी हंसी उड़ा रहे थे, परंतु भगत सिंह एकदम शांत थे और उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। अंग्रेजी में एक उक्ति है, मैन मे सी योर फीलिंग्स एंड लाफ एट यू, बट गॉड सीज योर सिंसेरिटी एंड बेस्टोज पीस। अर्थात मनुष्य आपकी असफलता देखकर आप पर हंस सकता है, पर ईश्वर आपकी निष्ठा देखकर आपको शांति प्रदान करते हैं। भगत सिंह ने पूरी निष्ठा से देश की सेवा की। कहावत है, इट डज नॉट मैटर टू विन, व्हाट मैटर्स इज टू प्ले वेल। अर्थात जीतना कोई महत्व नहीं रखता, महत्वपूर्ण केवल यह है कि हम निष्ठापूर्वक खेलें। निष्ठा से किए गए कर्म का फल भले ही देर से मिले, पर मिलता अवश्य है। हम इसलिए कर्म न करें कि हमें परिणाम चाहिए, अपितु इसलिए कर्म करें कि यह हमारा कर्तव्य है। कर्म पर हमारा पूरा अधिकार है, अतः हमारे प्रयासों में कोई कमी न रहे और हम सदा सफल होवें। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: तो सुबह का नजराना है, ये नजराना जो आपको सुबह का मिला है इसके लिए धन्यवाद दें हम ऊपर वाले को। और ऐसे में जितना वक्त है आपके साथ, जो पल आपको मिल रहे हैं, उन पलों को आप ज़रूर सदुपयोग उसका कीजिएगा। और हर पल का सदुपयोग करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आप आराम कीजिएगा, वो भी सदुपयोग होता है। आप काम कीजिएगा, वो भी सदुपयोग होता है, क्योंकि आराम भी हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना काम करना हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। सो अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं आराम करने का तो हो लीजिएगा, अगर आप कुछ काम समाप्त करने का, पूरा करने का सोच रहे हैं तो भी आप ज़रूर आगे बढ़िएगा। हम है सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं, और एंटरटेनमेंट का भी गुलदस्ता है हमारे साथ, एंटरटेनमेंट का ही गुलदस्ता है हमारे साथ, और कुछ जानकारियों का भी ये सफ़र है। तो चलिए आपके एंटरटेनमेंट के लिए बरसात मूवी का ये गाना लेकर आए हैं। इस समय 7:25 हुए हैं, बरसात मूवी का ये गाना 1995 का ये गीत, चलिए ज़रा आज भी गुनगुनाते हैं।

झलकियां हैं ये झलक, हम देखेंगे हमारे रेडियो के कार्यक्रमों के बारे में।

और आज है संडे 23 अगस्त, रविवार 23 अगस्त। देखते हैं हमारे रेडियो रेडियो मॉर्शस के कार्यक्रम किस तरह से आपका एंटरटेनमेंट करने वाले हैं। अभी तो हम सुबह का नजराना कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, 8 बजे भोजपुरी समाचार होंगे और इसे पेश करेंगी याचना, और 8:15-16 के लगभग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आएंगे हम पैगाम आपके नाम। आपके पैगामों का ये प्रोग्राम होगा, आप अपने अपनों के नाम ज़रूर मैसेजेस भेजिएगा। और 9 बजे संक्षिप्त समाचार होंगे, जिसके बाद आप मंगल आचरण कार्यक्रम सुन पाएंगे। आज विशेष कार्यक्रम श्रावण मास के अवसर पर होगा हिंदू महासभा की ओर से, जिसे पेश करेंगी नीतूषा। फिर 10 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद आप उर्दू प्रोग्राम सुनिएगा निसार की प्रस्तुति में। फिर 11 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद तमिल प्रोग्राम सुनिएगा सुंदरम की प्रस्तुति में। राजेंद्र की प्रस्तुति में होगा और आज का तेलुगु प्रोग्राम। 12 बजे 1 बजे मराठी प्रोग्राम शीरिश लेकर आएंगे, जिन चाइनीज़ प्रोग्राम लेकर आएंगे 2 बजे, और 3:30 बजे रंगारंग कार्यक्रम गुजराती भाषा में रत्ना लेकर आएंगी। फिर 4 बजे आप सुनिएगा पूजा की प्रस्तुति में आप और हम कार्यक्रम, उसके फौरन बाद तो हर पसीन कार्यक्रम पूजा की ही प्रस्तुति में। 6 बजे शाम को आप समाचार बुलेटिन सुनिएगा, उसके बाद आज का चाइनीज़ प्रोग्राम होगा होंग होंग की प्रस्तुति में 6:30 बजे। शाम के 7 बजे आज का तमिल प्रोग्राम युवा हसन लेकर आएंगे, और 7:30 बजे आप सुनिएगा आज का तेलुगु प्रोग्राम वंदना से। शिरीष मराठी प्रोग्राम लेकर आने वाले हैं गीत गंगा शाम के 7:50 पर, और 8:10 पर सुनिएगा आज का भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम डॉक्टर अलका धनपत जी से। 8:40 पर उर्दू कार्यक्रम महफिल शब आप समीर से सुनिएगा। फिर उषा पेश करेंगी आज का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम, और आपका एंटरटेनमेंट भोजपुरी गीतों के साथ करेंगी उषा शाम के रात्रि के 9 बजे से 11 बजे तक, और 11 से 12 बजे तक सुनहरे पल पुरानी दुनिया का ये प्रोग्राम, पुराने गानों का ये प्रोग्राम वेदिता लेकर आएंगी आपके लिए यादों का ये सफर रात्रि के 12 बजे तक। सो इस समय 7:34 हुए हैं, और लेकर आए हैं आपके लिए हम ग्रहण मूवी का ये प्यारा सा गाना, बहुत ही लाजवाब सा, बहुत ही फेमस सा गाना, कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत की आवाज़ें हैं।

0: एबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: ये बस टिकट के पीछे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस का एड्रेस है।
2: तुम वहाँ मिलोगे ना?
1: हाँ बाबा,
3: अटक गए होंगे कहीं पे, आ जाएंगे। ऑफिस अभी खुला है, 5 बजे तक चलेगा। ए छोटू, ये रहा,
4: ये लो चाय, अंकुश भैया ने भेजा है।
2: तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है अंकुश, बहुत कुछ। थैंक यू सो मच।
0: रविवार 23 अगस्त को NBC 3 पर दिन के 12 बजे।

0: हिंदी फीचर फिल्म आहिस्ता आहिस्ता 2006 की ये मूवी अभय देओल और सोहा अली खान पर फिल्माई गई आहिस्ता आहिस्ता। एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ
1: पहचान लिया ना तुम्हारा पुराना साथी मन्नू। अब बता कि हराम की कमाई कौन खाता है, तू या मैं? गब्बा, तो तू मुझे जेल भेजकर मेरे पैसों से आराम से यहाँ पर टीवी देख रहा है।
0: रविवार 23 अगस्त को एमबीसी 4 पर शाम के 8:30 बजे 1998 की हिंदी फीचर फिल्म ड्यूप्लीकेट शाहरुख खान पर फिल्माई गई।

0: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।
1: चलिए जरा हम एक कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी क्या, लोकोक्ति कह लीजिएगा इसको, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं एक लोकोक्ति है, एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मनचाही चीज पाने में असफल रहता है तो वह उस वस्तु या स्थिति को बुरा भला कहने लगता है। बस एक लोमड़ी की कहानी है ये। एक लोमड़ी बहुत भूखा था, भूखी थी। भूखी लोमड़ी चलते चलते खाने की चीज ढूंढते ढूंढते एक बाग तक पहुंची। उस बाग में बहुत सारे अंगूर लटके हुए थे और अंगूर बहुत ही स्वादिष्ट नजर आ रहे थे, बस थोड़ी ऊंचाई पर थे, उसे पाना थोड़ा मुश्किल था। तो लोमड़ी ने छलांग लगाई और अंगूर पाना चाहा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उसने छलांगें लगाई पर वह अंगूर नहीं पा पाया। अंत में वह थक हार गया और उसमें छलांग लगाने की हिम्मत नहीं रही। तो क्या हुआ, ये सोचने के बजाय कि मैं असफल हो गया, कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिला, मैं कुछ और ढूंढ लूं, लोमड़ी ने कहा कि ये अंगूर तो खट्टे हैं, इसको कौन खाएगा। तभी इसी कहानी के जरिए ये लोकोक्ति प्रसिद्ध हुई, अंगूर खट्टे हैं। और बस ये बात हमें बात इस बात की गांठ बांध लेनी है कि किसी भी चीज़ के बारे में आप भला बुरा मत कहिए, चाहे वो आपको मिले चाहे ना मिले। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो छोड़ दीजिए, वो आपकी किस्मत में नहीं है। एक और लोकोक्ति कहती है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम।

सो अगर आपको वो नहीं मिला तो किसी और का नाम उस पर लिखा होगा। आप इसको भला बुरा मत कहिएगा, क्योंकि जो इस चीज़ को पाने वाला है उसके लिए शायद ये बहुत भला कर जाए। अब एक चीज़ के बारे में हो तो हो, अगर इंसान के बारे में आप कुछ भला बुरा कर कह दें तो उस इंसान के जीवन में बहुत ही गलत प्रभाव पड़ सकता है। सो जो चीज़ मिली बहुत खुश हो जाइएगा, संतुष्ट हो जाएगा, जो नहीं मिली भगवान की मर्जी समझकर उसे चुपचाप छोड़ दीजिएगा। इस बात पे ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिलती, पर बहुत सी ऐसी कई चीज़ें हैं जो बिन मांगे मिल जाती है। सो उन पर आप ज़रूर फोकस कीजिएगा जो भगवान ने आपको दिया है। थैंक यू कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं हम ऊपर वाले को उन चीज़ों के लिए जो हमें मिल चुका है और जो हमें मिल रहा है और जो हमें मिलने वाला है।

ये है गाना आप लोगों के लिए एतबार मूवी से लिया गया। आशा भोसले और भूपेंद्र की आवाज़ें सुन रहे हैं आप। इस समय 7:56 हुए हैं, बस कुछ ही देर में जो 8 बज जाएंगे तो आप सुनिएगा आज के भोजपुरी समाचार याचना जी से।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: अपन घड़ी मिला ल फजर के 8 बजल बा।

नमस्ते, संक्षिप्त समाचार सुना जा। नौजवान लोग के मानसिक स्थिति के लेके कई गो सवाल खड़ा होवत बाटे। कई दिन आगे 14 बरिस के एगो किशोर पुतोहू में अपन सौतेला पिता के भाई के मुआदिला कार्य कर बाद एगो स्कूल में ग्रेड 6 के एगो लड़का छलांग लगा के गिर गल आर ओकरा ढेर घाव लगल। इस सब से हमनी के एगो सवाल थड़ा होत बाटे कि का हमनी अपन लड़का लोग के आर किशोर लोग के परिस्थिति के बारे में जानी ला जा के नहीं। शिक्षा मंत्री के अनुसार इस सब के पाछे मानसिक तनाव, पारिवारिक कठिनाई, सामाजिक दबाव, भावनात्मक पीड़ा इस सब कारण हो सकेला। मंत्री बोलन कि छात्र लोग के मानसिक स्वास्थ्य के महत्व दे के चाहिए और युवा लोग के मनोवैज्ञानिक स्थिति के समझे के कोशिश करल जाए के चाहिए। उ लोग के सुरक्षा और स्कूल में सुरक्षा के लेके विचार करल जात बाटे। गल 18 महीना में मॉरिशस में कैंसर के 60 से अधिक जटिल यानी कठिन मामला के उपचार विदेश से आवल स्पेशलिस्ट सर्जन लोग करलन स। ई पहल से ऐसन मरीज के देश वे में अपन इलाज मिलत बाटे जिनकरा ढेर ऑपरेशन खातिर विदेश जाए के पड़त। बखिर अब एकर इलाज मॉरिशस वे में होल बाटे। इस सहयोग से स्थानीय चिकित्सा टीम के विशेषज्ञता मिली, अनुभव मिली यारी एकर से जोन मरीज के विदेश जाए के रहल उ लोग के अब हौजा नहीं जाए के पड़ी।

0: पोर्टविक इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी म्यूजियम में अगते से तीन गो प्रतिमा प्रदर्शित करल गल है। ई 1846 में मॉरिशस में बनावल गल 53 प्लास्टर के प्रतिरूप बाटे जे गुलाम लोग के चेहरा से बनावल गल रहल। आवत बरिस लेक हौजा से जुन 50 गो प्रतिमा बाकी बाटे ओकरा हैजा परी आन के ओ म्यूजियम में प्रदर्शित करे के योजना बनावल जात बाटे। विदेश के खबर में यूक्रेन में एगो शॉपिंग मॉल में दूगो ड्रोन हमला में मरे होला जना के संख्या 16 पार कर गल बाटे और 130 जना के घाव लगल बाटे। हौजा परी 4 गो जना के लापता हो के खबर मिलल बाटे जेकरा खोज निकाले खातिर बचाव टीम काम करत बाटे और 2 दिन ले हौजा परी बचाव और तलाशी अभियान जारी रखल जाए। हौजा के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ई घटना के शर्मनाक बतैलन। तय रहल संक्षिप्त समाचार तो हर ध्यान खातिर धन्यवाद। हमने किया दिया दिया नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुना जा। केवल नगर बेलगीव में 55 बरिस के सेकंड सैकों के श्रीमती देजी रानी सिबन जे आरती नाम से जस्सी जानल जात हलन गुजर गल हवन। माटिका लैंडी के फजर के 10:30 पर ही उनकर माँ चिंता सिबालक के घरे केवल नगर बेलगीव से उठा के क्रियाक्रम खातिर थ्वाइलो ओलिविया के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुमोरो 8:30 AM। Chemin Parasol, Montfertil, New Grove, mais 67 Paris, 66 ans, que Mrs. Bibi Fatemoun Sobrati, Mrs. Bibi Fatemoun Sobrati, Pedachinam Raji, Alji Fatemoun Nam, Sejasti Danel Jatalan Guzar Galhavan, Mati Pajirke Despaje, Unkar Shohar Sobrati Gorabai, que Gare, Chemin Parasol, Montfertil, New Grove, Seutake, दफनाए खातिर यूनियन पार्क के कब्रिस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे 8:10 AM। पेटी शेमें बेलेया में 84 बरिस के 84 अंक के श्रीमती देवंती रतिया पैदाशीना मालकोरी आलजे कृष्णावती नाम से जस्ती डानल जातलन गुजर गल हवन। माटी फजर के 9:30 पर उनकर बेटा राजा राम रतिया के घरे पिछी शु में बेलिया से उठा के किराकरम खातिर कौन मास के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे 8:09 AM। स्वस्तिका स्ट्रीट पुधो दो आमलेट में 70 बरिस के 67 के श्रीमती गार्गी सिबारो पेनाशी नाम ओज गोबी आजे सांता नाम से जस्सी डानल जाथलन गुजर गल हवन। माटी दिन के 1 बजे उनकर पति विद्यानंद सिबारो के घरे स्वस्तिका स्ट्रीट पुधो दो आमलेट से उठा के किराकरम खातिर लेस्पेरांस पीटों के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टू डेट 1 PM। अस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 63 बरिस के 63 अंक के श्रीमती अमिता चितामन पैदाशी नाम जरी गुजर गल हवन। माती दिन के 1 बजे उनकर पति मानन चितामन के घरे अस्टोरिया रोड गुडलैंड से उठा के किराकरम खातिर बुआहूश गुडलैंड्स के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टू डेट 1 PM। रेनवा स्ट्रीट विलनवा में 71 बरिस के 71 अंक के श्री मोहन प्रसाद बुबवन जे देवानंद नाम से जस्ती जानल जातलन गुजर गल हवन। माटी दिन के 12:30 पड़ी उनकर बेटा विक्रम बुबन के घरे रेनवा स्ट्रीट विलनवा से उठा के किराकरम खातिर प्लेन मायों के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टू डेट 9:30 AM। नंबर 120 मीनाजैन रोड काशी में 71 बरिस के 71 अंक के श्री भास्कर प्रसाद देवीदिन जे देवीन महाराज नाम से जस्ती जानल जातलन गुजर गल हवन। माटी दिन के 12:30 पर ही उनकर बेटा पंडित अरवे शर्मा देवी दिन के घरे काशीपुर हनुमान मंदिर 120 मीनाजैन रोड काशी से उठा के किराकरम खातिर ले सालीन काशी के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टू डेट 9:30 AM। बोप्लाटो को तेज में 92 बरिस के 92 अंक के श्री एहबाधू हमासोमी जे नारायण शोफेर नाम से जस्सी जाना

जाथलन गुजर गल हवन। माती डूब बज के आधा परी उनकर बेटा रावेन रामास्वामी के घरे बोपलातो को तेज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कहुआ कस्या को तेज के श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टू डेथ हाफ पास्ट 2 PM। कोजा लेन मारी जानी रोस्पेल में 64 बरिस के 86 के श्री राजन हसराज श्री राजन हसराज जे राज मासों नाम से जस्ती जानल जातलन गुजर गल हवन। माटी डूबजे उनकर पत्नी सीता हसराज के घरे कोजा लेन माही जानी रोस्पेल से उठा के किराकरम खातिर इलाका के श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टू डेथ 2 PM। मोसलमान गिर जानन कौ फुखो फिनिक्स में 73 बरिस के 63 के जनाब हयातुल्ला कोसमाली जनाब हयातुल्ला कोसमाली गुजर गल हवन। जनाजा आज फजर के 11 बज के आधा परी उनकर बीवी सुल्ताना बीबी पीरबोकस के घरे मोसलमान गिर जानन कौ फुखो फिनिक्स से उठा के दफनाए खातिर रिश्ते के कब्रस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे एट 11:30 AM। नंबर 17 एवेनो गानाचन कौन यूलोफ पोटली में 27 बरिस के 27 के श्री यहया हसम इब्राहिम शरीफ श्री यहया हसम इब्राहिम शरीफ गुजर गल हवन। जनाजा दिन के 12 बजे उनकर पिता इब्राहिम शरीफ महमद रियाज के घरे। नंबर 17 एवेनो गानाचन कौन यूलोफ पोटली से उठा के सबले आगे नमाजा जनाजा खातिर रोतनी कोले पोटली में नूर इस्लाम मस्जिद आर दफनाए खातिर पाए के कब्रस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे एट नून। शोक में डूबली सब परिवार संगे हमने के सहानुभूति है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो मॉरिशस।
2: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu. Toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
3: सुबह के 8:10 हुए हैं, हम हैं सुरेखा साथ आपका, दे रहे हैं 9 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा और लेकर आए हैं पैगामों का गुलदस्ता। पैगाम आपके नाम शो, पैगाम आपके नाम शो में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। जहाँ भी होंगे खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। हमारा तो ये पैगाम है कि खुशियाँ आपको हमेशा मिलती रहे, तसल्ली आपको हमेशा रहे और इस जीवन में आप हमेशा प्रगति की राह पर बढ़ते रहें। आप जहाँ भी होंगे आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5251700 पर, और अपने अपनों को कोई भी मैसेज हो, कोई भी खुशी का इवेंट हो, उन्हें विशेस भेजना चाहते हैं, बेशक आप उन्हें विशेस भेज सकते हैं। वैसे ये प्रोग्राम विशेस का है, आप ज़रूर अपने अपनों को अपने दिल की गहराई से वो शुभकामनाएं दीजिएगा जो शुभकामना आप उन्हें देना चाहते हैं, जिसके लिए आपका दिल उन्हें दुआएं दे रहा है। और अगर फोन करना चाहते हैं तो बेशक नंबर वही है 4028085। हमारा साथ तो सुबह से, हम 6 बजे से आपके साथ हैं, सुबह से हमारा साथ हमारे कई श्रोता दे रहे हैं, हमारे सभी श्रोता दे रहे हैं, जिनमें शामिल माला

सुमाहू जी हैं और थ्रियोलिक के सूरज शर्मा सजादा जी हैं और साथ में अनीता जी हैं फ्रीकॉम फ्लैग से। अनीता जी का कहना है कि आज मंदिर में पूजा है और वे पूजा में भाग लेने जा रही हैं। श्रावण का ये मास आप लोगों के लिए मंगलमय हो और अनीता जी आप पूजा में भाग लीजिएगा, हर किसी के लिए दुआएं कीजिएगा, हर किसी के लिए प्रार्थनाएं कीजिएगा, हर किसी को सुख शांति मिले ऐसी प्रार्थना ईश्वर से अवश्य कीजिएगा। तो चलिए ज़रा हम यही उम्मीद करते हैं कि हर कोई अपने जीवन में जीत पाए, हर कोई अपने जीवन में सफल हो जाए।

हमारी आपकी ये मुलाकात है, पैगामों का ये सिलसिला है, और सिलसिला ये पैगामों का जब आता है तो नाम आपके अपनों का आपके दिमाग में ज़रूर आता है। 8:18 हुए हैं और चलिए हम ज़रा मैसेजेस पढ़ते हैं। बर्थडे के मैसेजेस हैं विश्व हमारे दोस्तों की तरफ से। सुनीता बिहारी जी ने मैसेज भेजा है हमको। सुनीता बिहारी जी का कहना है कि आज दुशिका का जन्मदिन है, उसको हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं उनके पति श्यामल, श्रेय, दादी विद्वंती, मामा सीता, पापा सुधीर, फिर हैं शुभम, शान, क्यूपिप के रहने वाले सूरत परिवार और दागुचे के बिहारी परिवार की तरफ से, फूफू सुनीता की तरफ से, संदीप, प्रिया और श्रवण की तरफ से। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। और यही उम्मीद की है कि उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू दुशिका जी। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको मंगल कामनाएं, आपके जीवन में ढेर सारी सफलताएं भी आए।

और बस इतना भी कहना है हमको कि हमारा साथ दे रहे हैं हमारे कई सारे श्रोता, लक्ष्मण सिंह गोबिंद जी क्लेफो वाकवा से हमारा साथ दे रहे हैं, यदिक खेओ से साधना जी हमारा साथ दे रही हैं, और ऐसे में हमारा साथ विद्यावती जी भी दे रही है जो रहने वाली है एक्यूपी की। और साधना जी ने का कहना है कि ये संडे आप लोगों के लिए बहुत मंगलमय रहे। उन्होंने वैदिक क्रियोल से अपने पूरे परिवार को बहुत सारी मंगल कामनाएं भेजी हैं।

हम मना रहे हैं रक्षाबंधन शुक्रवार को, और शुक्रवार को हर भाई हर बहन एकजुट होकर एक अच्छा समय बिताएंगे, बहुत ही पवित्र धागे को का सहारा लेंगे, और बहन अपने भाई की कलाई में जो धागा बांधेगी मन गदगद लिए हुए, अपने भाई को बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद देंगी। छोटी बहन हो तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं, और अगर बड़ी बहन हो तो उसके साथ साथ आशीर्वाद का सागर भी देने वाली है बहनें। भाई की तरफ से बहुत सारे वादे, बहुत सारी शुभकामनाएं बहनों को दी जाएंगी। और वैसे शुक्रवार को है हमारा ये पर्व पर तैयारियां, तैयारियां तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी हैं। गिफ्ट खरीदना, राखी के धागे सबसे सुंदर अपने भैया के लिए खरीदना, ये सब बहुत ही गदगद कर देते हैं मन को। इन पर्वों का, इस पर्व का तो यही सौंदर्य है, यही सुंदरता है इस पर्व की, और ऐसे में इस सुंदरता में जीना कितना अच्छा लगता है। मंगल कामनाएं रक्षाबंधन की विश्वानी जी सभी भाई बहनों को दे रही हैं। रानी तुलसी जी मौदालबे से अपने भैया राज, निर्मल और बिमल को मंगल कामनाएं दे रही हैं, अच्छी सेहत की दुआएं दे रही है रक्षाबंधन के अवसर पर। चेष्विका और रितिशा अपने भैया पृथ्वी को हैप्पी रक्षाबंधन कह रही हैं, रक्षाबंधन की मंगल कामनाएं दे रही हैं।

0: भाई कवि और युवराज को सभी बहनों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, रक्षाबंधन, अभिनंदन। अनीता जी मौदाल बेयस से अपने भाई जय, अपने भाई विकास और भाई संजीव को और ढेर सारी मंगल कामनाएं रक्षाबंधन के अवसर पर दे रही है और उनके लिए सलामती की बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रही है। रक्षाबंधन आप सभी भाई बहनों को मंगलमय हो हमारी पूरी टीम की तरफ से।
1: भाई बहन का प्यार

और लक्षिता धनुकधारी जी का की शादी होने वाली है। उनकी शादी के अवसर पर उनका पूरा परिवार उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी दुआएं दे रहा है। और वालिद फैज की लक्षिता धनुकधारी के कजिन्स जो हैं सब मिल के तैयारियों में लगे हुए हैं और लक्षिता जी की शादी में खूब धूम मचाने की का प्लान बनाया जा रहा है। उन्हें बहुत सारी मंगल कामनाएँ उनके पूरे परिवार की तरफ से, और ख़ास तौर पर कैथोबो उनकी मौसी स्वास्थ्य की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। जीवन में बहुत सारी खुशियां मिले, शादीशुदा ज़िंदगी आपकी बहुत खुशगवार रहे, यही दुआ है मौसी स्वास्थ्य की।

हमारा साथ दे रही हैं सुनीता जी घोंगुब से, हमारे साथ आकाश चेतन मनसुख जी हैं बॉम्बू से, पूरे मनसुख परिवार के साथ हमारे इस शो में हमारा साथ दे रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि न्यू ग्रोव की फातिमा जी भी हमारा साथ दे रही है। उनका कहना है कि आज उनकी बहन सलमा और आज़ाद जी की शादी की सालगिरह है। 34 ईयर्स हुए हैं उनकी शादी को और उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां उनके बेटे इरशाद की तरफ से, बहू मुशीरा और ग्रैंडसन इजहान और की तरफ से शहनाज, फरहाना, शरफराज, नौशाद की तरफ से, जो प्रेव जोंसखोजिल के रहने वाले हैं। बहुत सारी दुआएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। और सलमा और आज़ाद जी, आपको पूरे इसु परिवार की तरफ से जो खोजिल के रहने वाले हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। और फातिमा जी का कहना है कि आज वेडिंग एनिवर्सरी फरानास और राजा जी की भी है, जो वालंटीना फिनिक्स के रहने वाले हैं। उन्हें बेस्ट विशेस मिले हैं, बहुत सारी बधाइयाँ मिली हैं उनके बेटे गायान की तरफ से, बेटी फादिया मितवा की तरफ से और उनकी मामा रोजिदा की तरफ से, पापा रिशाद की तरफ से, फरदीन, सुमाया, फलीहा, शयान की तरफ से, जो रिविया देजोंगी के रहने वाले हैं, बनू फैमिली और मितवा फैमिली की तरफ से ढेर सारी मंगल कामनाएँ, बहुत सारी मंगल कामनाएँ फरानाज और राजा जी को। हमारी पूरी टीम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही है। और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम सलमा और आज़ाद को भी बहुत बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रही है।

चलिए जरा जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं हम राधन गुदर जी को। राधन गुदर जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं पूरे परिवार के साथ और पूरी खुशियों के साथ, और सभी खुशियाँ उनको मिले ऐसी प्रार्थना उनके पूरे परिवार ने की है। उन्हें अच्छी सेहत मिले ऐसा आशीर्वाद उनके बड़ों ने दिया है, और ऐसी शुभकामनाएँ उन

के छोट होने की है। राधन गुदर जी को मंगल कामनाएं पूनम की तरफ से, शैलेश, श्वेता, जिहान, सानिया, लक्ष्य और शैवी की तरफ से, और उनकी पत्नी अनीता जी की तरफ से, और हमारी पूरी टीम की तरफ से। और वीना शंभू जी जो बासन रोड का थोबोन रहती हैं, वे बताती हैं कि आज उनके पोते कियांश शंभू का 7वां जन्मदिन है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू कियांश। सो कियांश, आपको बहुत सारी मंगल कामनाएं मामा कोमल की तरफ से, पापा कुशल की तरफ से, आपके छोटे भाई कृषय की तरफ से, दादी माँ वीना की तरफ से, नाना लाल, नानी देवीना, पति फैमिली और पूरी फैमिली की तरफ से। बड़ों की ये दुआ है, छोटों की ये दुआ है कि शिव जी आप पर हमेशा हमेशा कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में हर पथ को बहुत प्यारा बना डालें और बहुत ही साफ सुथरा रास्ता मिले आपको, ताकि आप प्रगति करते जाएं।

तो चलिए जरा हम आशा जानू जी का मैसेज पढ़ते हैं। आशा जानू जी सभी सुनने वालों को मंगल कामनाएं दे रही हैं श्रावण मास की। आशा जानू फ्रॉम कुटेज। श्रावण मास की तो समाप्ति हो रही है इस हफ्ते, और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। सभी परिवार के लिए उन्होंने बहुत सारी दुआएं भेजी हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं भगवान से कि हर किसी के जीवन में सुख और शांति संतोष भी रहे। मामा कुमारी नेफ्यूज़ शुभम और ऋषभ के लिए, दीदी आरती, जीजू राज और पूरे जानू परिवार के लिए शिव जी बहुत सारी खुशियों की बरसात करें, ऐसी प्रार्थना कर रही हैं आशा जानू जी। और इधर मंगल कामनाएं रक्षाबंधन की दे रही है साधना जी रिव्यदी खेओल से अपने भाइयों को। और 21st को भैया दीपक का बर्थडे है, बेस्ट विशेस फ्रॉम भैया राज, बहन फिया, साधना और भाभियों के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं भेज रही हैं साधना जी, साथ में भैया दीपक की पत्नी अमृता, उनकी बेटी सानवी, बेटे हैर की तरफ से और बुदाहो परिवार की तरफ से भी देखे उनके बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू भैया दीपक जी, आपको बहुत सारी दुआएँ हमारी पूरी टीम की तरफ से।

और इधर मंगल कामनाएं रक्षाबंधन की दे रही हैं बहन श्वेता, बहन वीना और संध्या अपने भाई राजीव को जो रहते हैं पिची वैजे, उन्होंने अपने सभी सुनने वालों, हमारे सभी सुनने वालों को मंगल कामनाएं रक्षाबंधन की दी है। मंगल कामनाएं रक्षाबंधन की हम भी देते हैं आप सभी भाई बहनों को इस जहां में, आप लोगों को हर खुशी मिले, अपने बॉन्ड को और भी गहरा बनाने की कई बहाने दे भगवान आपको। और उम्मीद यही करते हैं कि ये रक्षाबंधन हर साल की तरह और दृढ़ ताली कराए आपके रिश्ते में, आपका रिश्ता गहरा गहरा और गहरा होता जाए।

तो बस चलिए हम समाप्त करेंगे हमारे इस कार्यक्रम को, यानी कि हमारे आप पैगाम आपके नाम कार्यक्रम को। आप लोगों के लिए हमने कार्यक्रम प्रस्तुत किया और उम्मीद यही करेंगे कि आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया और आप लोगों के मैसेजेस जो हमने पढ़े आपका दिल बड़ा खुश हुआ होगा। बस हम लास्ट मैसेज पढ़ते हैं उकुले के गजाधर परिवार की तरफ से। उकुले के गजाधर परिवार का गजाधर परिवार मारंभा को आज भी याद करता है। उनके जाने का गम 2 साल बाद आज भी कम नहीं हुआ है। वे अपनी माँ को बहुत प्यार प्रकट करते हैं। इस समय 9 बजने वाले हैं। बस अंतिम गाना हम पेश करते हैं इस बार फातिमा जी के लिए, जो न्यू खोव की रहने वाली हैं, और हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, आप लोगों का साथ मिला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 9 बजे संक्रू समाचार होंगे और उसके बाद आज का मंगल आचरण कार्यक्रम आप सुनिएगा, जिसे प्रस्तुत करेंगी नीतू शाह। हमारी आपकी अगली मुलाकात तक आपसे आज्ञा चाहेंगे। शुभ संडे, शुभ रविवार, शुभ दिन। नमस्कार।

0: सुबह के ठीक 9 बजे है। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। पुदोदो में 14 साल का एक नौजवान अपने सौतेले पिता के भाई की मौत के मामले में शामिल हुआ। इसके कुछ ही दिन बाद जुल के नेक गवर्नमेंट स्कूल की ग्रेड 6 की एक छात्रा ने कूद कर गिर गई। जारी जांच के नतीजों पर कोई निष्कर्ष निकाले बिना इन घटनाओं ने एक अहम सवाल खड़ा किया है। क्या हम जानते हैं कि हमारे बच्चे और नाबालिग किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं? कुछ बर्तावों के पीछे कभी कभी मानसिक परेशानी, पारिवारिक समस्या, सामाजिक दबाव या भावनात्मक पीड़ा छिपी हो सकती है। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों की भलाई और युवाओं की मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत पर जोर दिया। पिछले 18 महीनों में मॉरिशस में लगभग 60 जटिल चिकित्सा मामलों यानी कॉम्प्लेक्स मामलों का इलाज विदेशी सर्जन्स के सहयोग से किया गया। इन विशेषज्ञों की मदद से ऐसे मरीजों का इलाज मॉरिशस में संभव हो पाया जिन्हें इलाज स्पेशलाइज्ड इलाज की जरूरत थी। साथ ही सहयोग से स्थानीय चिकित्सा टीमों को नई तकनीक सीखने का अवसर मिला। इस पहल का उद्देश्य कुछ मामलों में मरीजों को इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत को कम करना और मॉरिशस की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्षमता को मजबूत करना है। पोटवी में पुराने मिलिट्री हॉस्पिटल के एक हिस्से की मरम्मत के बाद वहां फ्रबविल कलेक्शन की अर्ध प्रतिमाएं रखी जाएंगी। ये मॉरिशस में गुलामों के इतिहास की झांकी देने वाला एक महत्वपूर्ण कलेक्शन है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्लेवरी म्यूजियम में मात्र 3 मूर्तियां प्रदर्शित हैं जबकि बाकी के 50 बस्त को फ्रांस में रखा गया है। 2027 तक यहां वे लाए जाएंगे। गुलामों के व्यापार और दास्ता उन्मूलन की याद में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

0: की खबरों में यूक्रेन में बचावकर्मी शुक्रवार को रशिया के हमले में तबाह हुए एक बड़े शॉपिंग मॉल के मलबे में बचे लोगों की तलाश जारी रख रहे हैं। कीव ये रिह इलाके में दो ड्रोन्स ने इस व्यस्त शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। 16 लोगों की मौत हुई है जबकि 130 लोग घायल हुए हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। थोड़ी देर में शोक समाचार। लामुस्ले नोवेल फ्रांस में 77 साल के 77 ओल्ड के श्री करमवीर पुरन जो उद्धू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके मकान लामुस्लेन नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माहिशानी रोसबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। केवल नगर बेलरीव में 55 साल की 55 ओल्ड की श्रीमती देजी रानी सिबन जो आरती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनकी माँ चिंता सिबालक के मकान केवल नगर बेलरीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वाइलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10:30 AM। चुमे पारासल मोफेटिल न्यू ग्रोव में 66 साल की 66 ओल्ड की मिसिज बीबी फातेमुन सुब्राती पैदाशी नाम रजी और जो फातेमुन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा सुबह 10 बजे उनके शौहर सुभाची गोहाबाई के मकान चुमे पारासल मोफेटिल न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। एवेन्यू दे पेट्रेल मेड इन कॉन्डमास्क में 68 साल की 68 ओल्ड की मिसिज फिरोजा बीबी ओमिरुडू पैदाशी नाम नसराली और जो फिरोजा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उनके बेटे मोहम्मद बिलाल ओमिरू जी के मकान एवेन्यू दे पेट्रेल मेडिन कॉन्डमास्क से उठाकर दफनाने के लिए कॉन्डमास्क का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: रेडियो मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।
3: मंगलाचरण समस्त श्रोताओं को नीतुषा का करजोर प्रणाम। श्रोताओं, इन दिनों श्रावण मास चल रहा है, साथ ही कुछ ही दिनों में संस्कृत दिवस एवं रक्षाबंधन पर्व भी मनाए जाएंगे। इसी संदर्भ में आज का यह मंगलाचरण कार्यक्रम हिंदू महासभा के तत्वधान में प्रस्तुत किया जा रहा है और स्टूडियो में उपस्थित है आचार्य गिरीश शर्मा। आचार्य जी, सादर नमन प्रणाम।
4: श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः, श्री राम दूताय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जी, सबसे पहले तो हम हिंदू महासभा की ओर से आपको धन्यवाद समर्पित करते हैं आज के इस मंगलाचरण कार्यक्रम में हिंदू महासभा को सम्मिलित करने के लिए।
3: आचार्य जी, श्रावण मास को शिव जी की भक्ति का सबसे पवित्र महीना क्यों माना जाता है और इसके पीछे धार्मिक एवं सांस्कृतिक सोच क्या है?
4: जी, श्रावण मास को भगवान शिव की भक्ति का सबसे पवित्र महीना मानने के पीछे एक धार्मिक आस्था है, एक पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुए हैं, ये प्रकृति से भी संबंधित रखते हैं और हमारे सनातन संस्कृति जो है इसके साथ पूरा समन्वय करता है। वैसे श्रोताओं को बता के चलें कि यह श्रावण मास अपने अंतिम चरम पे है, कुछ ही दिनों में यह श्रावण मास जो है समाप्ति की ओर बढ़ेगा। यदि हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो इसके साथ समुद्र मंथन की कथा जुड़ी हुई है, जहाँ भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। और श्रावण मास को हम ऋतुओं के साथ भी जोड़ते हैं। भारत के ऋतु के अनुसार पूरे गर्मी के मौसम के पश्चात तब यह श्रावण मास आ जाते हैं, चारों ओर एक हरियाली ऐसा

0: फैल जाते हैं जो जीवन का विस्तार कराते हैं। और देखा जाए तो भगवान शिव स्वयं प्रकृति, पर्वत, वन, जीव जगत, इन सब से जुड़ा हुआ होता है। भगवान शिव के मस्तक पर गंगा जी विराजमान है जो जल का प्रतीक है। जटाओं में चंद्रमा है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। गले में नाग है जो पशुओं का है, शरीर पर भस्म है। यह सब हमको यह संदेश देता है कि भगवान शिव केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण प्रकृति में वह व्याप्त होते हैं। इसलिए श्रावण मास को इसके साथ भी जोड़ा गया है। पौराणिक कथा में एक कथा ये भी आते हैं, माँ पार्वती की तपस्या, जहाँ वह भगवान शिव को पति के रूप में वह प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। शिव जी इनकी आराधना आदि से प्रसन्न हो करके इनसे ब्याह कर लेते हैं। इसी कारण से श्रावण की पूजा जो हम करते हैं, श्रावण मास में जो शिव की आराधना होते हैं, उसमें ज़्यादातर हम लोग गृहस्थ जीवन की सुख शांति एवं दाम्पत्य सुख एवं परिवार की मंगल कामना से भी इसकी पूजा जोड़े गए हैं। श्रावण मास को कांवर के साथ भी जोड़ा गया है। भारतीय परंपरा में बहुत से भक्तगण इस समय कांवर लेकर के शिव जी की यात्रा करते हैं। इसकी जो सांस्कृतिक दृष्टि अगर हम देखें तो यह श्रावण का महीना जो है हमें परिवार से जोड़ते हैं, और जो हम लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, विशेष रुद्राभिषेक आदि होते हैं, रामचरितमानस का पाठ होते हैं, सत्संग कीर्तन आदि होते हैं, तो ये सब जोड़ने का काम करते हैं और एक सुंदर आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न कराते हैं। और यह श्रावण मास, जिसको हम रामचरितमानस मास भी कहते हैं, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का मास पारायण होते हैं, यह हमें मानव मूल्यों के जीवन के बारे में कुछ बताते हैं तथा हमें यह शिक्षा भी देते हैं कि भगवान राम तक पहुँचने का जो मार्ग है वह शिव है। इसी कारण से यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं।
1: तो सरल शब्दों में अगर ये कहें कि बरसात, हरियाली, प्रकृति के पुनर्जन्म के दौरान श्रावण का आना अपने आप में एक सुंदर पारिस्थितिक मानी कि इकोलॉजिकल संबंध भी है।
0: जी हाँ, श्रावण और प्रकृति के बीच बहुत गहरा धार्मिक, सांस्कृतिक और इकोलॉजिकल जैसे कहें संबंध देखा जाता है। हमारी भारतीय परंपरा में वर्षा ऋतु के इस प्राकृतिक परिवर्तन को केवल मौसम के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे प्रकृति के पुनर्जीवन और ईश्वर की कृपा से जोड़ा गया है। गर्मियों के बाद जब वर्षा आती है तो सूखी धरती फिर से जीवांत होने लगता है, खेतों में हरियाली आती है, पेड़ पौधों में नई पत्तियां निकलती है, नदियां और तालाब में जल भरता है और पशु पक्षियों के लिए भी वातावरण अधिक अनुकूल होता है। इसलिए श्रावण को प्रकृति के पुनर्जन्म या पुनर्जीवन का महीना कहना बहुत सुंदर और सार्थक है। भारतीय ऋतु चक्र जो है हमें यह बताते हैं कि प्रकृति जो है वो विनाश के बाद पुनः सृजन होते हैं, और भगवान शिव का तो संबंध जल से है ही, इसलिए जल जीवन है तो ये प्रकृति का भी एक अंश है। हरियाली जहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे आदि जो है, पत्ते आदि जो है, और हम सब जानते ही है कि भगवान शिव की पूजा में पत्ते आदि की कितने महत्व होते हैं। और साथ ही साथ जैसे कहे हमारे ऋषि मुनियों ने, प्रकृति को मनुष्य से अलग नहीं माना है, प्रकृति हमारी माता है और हम उनके पुत्र हैं। यह भावना सनातन चिंतन में बार बार दिखाई देते हैं। इसलिए नदियों को माता, पृथ्वी को माता, गौ को माता, वृक्षों को पूजनीय मानना हमारी परंपरा है। इसलिए श्रावण का जो इकोलॉजिकल संदेश है वह हमें बताते हैं कि इस पूरे महीने में हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमें जल का सम्मान करना है, उनका संरक्षण करना है, वर्षा के पानी को व्यर्थ नहीं करना है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना है, नदी तालाब आदि को प्रदूषित ना करें, प्लास्टिक आदि कचरे जो है इन सबको नदी आदि में ना फेंकें, प्रकृति की रक्षा करें, पशु पक्षियों के प्रति करुणा भाव रखें, क्योंकि यह सब चीज़ जो है वो भगवान शिव से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए मैं यह भी मानता हूँ कि यदि हम प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति जो है अपनी सद्भावना रखते हैं तो यही भगवान शिव की पूजा का एक अर्थ होता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि गंगा तालाब की ओर काफ़ी जो भक्तजन हैं वो कांवड़ लिए, जो जोश जैसे हम कहते हैं, जिस भक्ति भाव से वे लोग लेकर जा रहे हैं कांवड़ गंगा तालाब, जैसे महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व आता है, ऐसे ही उसी जोश के साथ, उसी भक्तिमय वातावरण में वो लोग अपने कांवड़ लिए जा रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी आचार्य जी कि आज की पीढ़ी

0: के लिए श्रावण मास का क्या महत्व है? क्या हम इसे सिर्फ परंपरा के रूप में देखें या इसके मूल्यों को आधुनिक जीवन शैली में भी सम्मिलित कर सकते हैं?
1: जी, आजकल काफ़ी कुछ सालों से, शायद 2-3 सालों से, श्रावण मास के संदर्भ में भी लोग अब कांवर की यात्रा करते हैं गंगा तालाब का, और बहुत अच्छी बात है। और आज की जो पीढ़ी है, इनको श्रावण मास का महत्व और भी समझने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह आधुनिक जीवन की कई समस्याएं, जैसे तनाव, भागदौड़, उपभोक्तावाद, प्रकृति से दूर रहना, पारिवारिक उलझन, इन सब के बीच में यह श्रावण की जो पूजा होते हैं, वह संयम, शांति, आत्मचिंतन और प्रकृति से जुड़ने का अवसर हमको देते हैं। परंपरा का वास्तविक अर्थ तभी है जब हम जीवित रूप में जो है उसको हम पालन करें, जब हम अपनी आत्मा, अपनी पूरे जीवन में उन परंपराओं को उठाएं। केवल ये कहें कि यह हमारी परंपरा है, यह हमारी परंपरा है, ऐसा पर्याप्त नहीं है, इसको निभाना भी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति श्रावण में केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, व्रत रखता है, मंदिर जाता है, लेकिन अपने व्यवहार, अपने अंदर क्रोध, अहंकार, हिंसा, असंयम, इन सब को नहीं छोड़ता है, तो मैं समझता हूँ पूजा अधूरी रह जाती है। श्रावण हमें बाहरी पूजा के साथ साथ आंतरिक परिवर्तन की प्रेरणा भी देती है। श्रावण मास की जो आधुनिक जीवन में, श्रावण मास की जो संदेश है कि आधुनिक जीवन में संयम का होना बहुत जरूरी है, और आज की पीढ़ी को संयम जो है बहुत जरूरी है इनको याद करवाना, क्योंकि देखा जाए तो आज की पीढ़ी जो है वो अधिक सूचना, सोशल मीडिया, ये मनोरंजन, उपभोक्ता बोध आदि, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, और ऐसे में इनके दिमाग में संयम जो है थोड़ा कम पड़ जाते हैं। इसलिए श्रावण का जो महीना है हमको संयम सिखाते हैं, हमको पुनर्याद दिलाते हैं कि हमें संयमित रूप से जीवन व्यतीत करना है। आजकल बहुत से लोगों के पास देखा जाए सुविधा तो बहुत है, लेकिन जो मनुष्य के पास नहीं है वो है समय, और श्रावण मास जो है एक रुकने का महीना है। अपनी भागदौड़ से थोड़ा सा समय निकाल करके बैठ करके थोड़ा शिव जी का पूजन करें, थोड़ा ध्यान करें, मानस का पाठ करें, कुछ मिनट के लिए अंदर से जो है वो शांति का अनुभव कर सके। जो मनुष्य अंदर से शांत है तो वो शांति जो है वो पूरे समाज में फैलते हैं। यही श्रावण मास हमको सिखाते हैं कि केवल पूजा पाठ नहीं, अपने अंदर की शांति को भी हमें उजागर करना है, और खासकर आज की नई पीढ़ी, जैसे आपने कहा, इनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो अंदर की शांति का अनुभव कर सके। नहीं तो बहुत बार हम लोग सिर्फ बाहर की ओर ध्यान देते हैं, अपनी आंतरिक शांति को हम भूल जाते हैं।

0: तो श्रोताओं, इस समय आप मंगलाचरण कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और श्रावण मास की आप सभी को मंगल कामनाएं। आचार्य जी, अगले 28 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाएगा, इसको देववाणी भी कहा जाता है। इसके पीछे की सोच क्या है और संस्कृत की विशेषता क्या है, कृपया बताएं।
1: बिल्कुल, संस्कृत दिवस के संदर्भ में यह बात विशेष रूप से समझना आवश्यक है कि संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान, दर्शन, साहित्य, विज्ञान, आध्यात्मिक परंपरा की एक प्रमुख वाहक भाषा रही है। संस्कृत को परंपरा में देववाणी या देवभाषा कहा जाता है, जैसे आपने कहा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि देवता केवल इसी भाषा में बोलते हैं, बल्कि इसका भाव यह है कि यह भाषा वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन, मंत्र और आध्यात्मिक ज्ञान की प्रमुख भाषा रही है। वेदों में मंत्र, उपनिषदों में चिंतन, भगवद गीता, रामायण की संस्कृत परंपरा, महाभारत और अनेक पुराण जो है वह हमारी आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत जो है सब संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। इसलिए संस्कृत को देववाणी कहा गया और वास्तव में इसकी प्रति हमारी श्रद्धा और उसके आध्यात्मिक महत्व भी अभिव्यक्त है। संस्कृत शब्द का जो अर्थ है वह धातु क्रि से बने, संस्कार और संस्कृत भाव से जुड़ा है, अर्थात परिकृष्ट, संसारिक और व्यवस्थित। संस्कृत की विशेषता यही है कि ये केवल एक भाषा तक सीमित नहीं होते हैं। संस्कृत को केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड की भाषा मानना उसके विशाल स्वरूप को सीमित करना होगा। संस्कृत भाषा में आयुर्वेद, गणित, खगोल, ज्योतिष, व्याकरण, भाषा विज्ञान, दर्शन, नाट्य, राजनीति, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, योग, आध्यात्मिक साधना, ये सब चीज़ें जो है हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए इसका अर्थ होता है कि यह भाषा केवल मंदिर की भाषा नहीं है, बल्कि ज्ञान परंपरा की भाषा है। और इसका अर्थ हमें यह बताते हैं कि ये भाषा हमें आधुनिकता के साथ जोड़ते हैं। अंग्रेजी और दूसरी आधुनिक भाषाएं हमें विश्व से जोड़ती है, पर संस्कृत हमें अपनी जड़ों से

0: जोड़ती है।
1: तो जैसे कि अभी आप कह रही हैं आचार्य जी कि संस्कृत जो है केवल एक प्राचीन भाषा नहीं है, तो एक बार फिर हम अपनी जो नई पीढ़ी है उसके बारे में बात करते हैं कि आज की इंग्लिश डोमिनेटेड संसार में संस्कृत सीखना नई पीढ़ी के लिए कितना उपयुक्त है, क्या उसके सुभाषित और नए विचार आज के आधुनिक जीवन शैली, रिश्तों और जो प्रोफेशनल जीवन कहते हैं उसमें भी लागू किए जा सकते हैं?
0: बिल्कुल, आज के इंग्लिश डोमिनेटेड ग्लोबल वर्ल्ड में संस्कृत सीखना नई पीढ़ी के लिए न केवल उपयुक्त है बल्कि एक अलग प्रकार की भौतिक क्षमता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास विकसित कर सकता है। लेकिन इसका उद्देश्य अंग्रेजी का विरोध करना नहीं बल्कि अंग्रेजी के साथ अपनी ज्ञान परंपरा को भी समझना आना चाहिए। आज अंग्रेजी विज्ञान, तकनीकी, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संचार की महत्वपूर्ण भाषा है, इसलिए नई पीढ़ी को अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या अंग्रेजी सीखने के लिए हमें संस्कृत भाषा भूलना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी हमें विश्व से जोड़ते हैं, जैसे मैंने कहा, जबकि संस्कृत भाषा हमें अपनी सभ्यता से जुड़े रखते हैं। एक युवा यदि दोनों भाषा सीखता है तो उसके पास दो अलग अलग प्रकार की शक्ति होती है, ग्लोबल कम्युनिकेशन और कल्चरल इंटेलिजेंस। यह भाषा हमें पीछे की ओर नहीं ले जाते हैं अपितु हमें आगे ले जाते हैं, और बहुत से ऐसे सुभाषित आ जाते हैं जो आज के लिए बहुत प्रासंगिक होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक आपके सामने रखूं, उधमेन ही सिद्ध्यान्ति कार्याणीन मनोरथै, अर्थात केवल इच्छा या कल्पना से कार्य सिद्ध नहीं होते, प्रयास करना आवश्यक है। इसको अगर हम आज के आधुनिक जीवन में जोड़ दें तो हम कहें कि ड्रीम्स नीड्स डिसिप्लिन एंड एक्शन। तो इसलिए भाषा हमको पीछे नहीं आगे ले जाती है। आज की युवा के लिए यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि ज्ञान के साथ ह्यूमिलिटी भी आवश्यक है, और संस्कृत की नीति परंपरा हमें सत्य, क्षमा, दया, संयम, सम्मान और सबसे बड़ी बात मधुर वाणी का महत्व समझाती है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय और हितकारी ढंग से बोले। प्रोफेशनल दुनिया में संस्कृत के नीति विचार बहुत उपयोगी हो सकते हैं, ईमानदारी, कर्तव्य पालन, नेतृत्व, समय का सदुपयोग करना, परिश्रम, ये सब हमें यह भाषा के अंदर हमें प्राप्त होता है। इसलिए मैं ऐसा मानूं कि यह भाषा जो है हमें एक सफल प्रोफेशनल लाइफ की आधारशिला बना सकती है। आज प्रोफेशनल एक्सेलेंस और मेंटल बैलेंस दोनों बहुत आवश्यक है, और इसके प्राप्ति में या फिर जैसे कहे वहां तक पहुंचने के लिए यह देववाणी, यह देवभाषा बहुत जरूरी है।
1: तो यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है दिमाग में आचार्य जी कि अगर हम नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो इतने सारे पर्व हैं, त्यौहार हैं, तो उन लोगों के दिमाग में ये शायद बात आती है कि क्या ये जो भाषा है संस्कृत वो अनिवार्य है अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए?
0: कहीं ना कहीं मैं कहूँ अनिवार्य भी है, और कहीं ना कहीं यह भी मानूं कि अनिवार्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब बच्चे बोलना आरंभ करते हैं तो वो तोतली भाषा में बोलते हैं
1: जी,
0: और उस पड़ाव पे या फिर उस स्थल पर जब बच्चे जो है तोतली भाषा बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हम उसको सुधारते नहीं हैं, उसको तोकते नहीं हैं। लेकिन वो बच्चे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे जीवन में उसकी उम्र आगे आता है, तब वो तोतली भाषा को सुधारना आवश्यक हो जाते हैं। उसी प्रकार जब कोई अध्यात्म में अभी अभी उतरा है तो शायद वहाँ पर भाषा की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं रोमनाइज्ड या फिर अंग्रेजी आदि, चलो वहाँ वह उपयोगी होता है
1: जी।
0: लेकिन जब हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, स्पिरिचुअली हम प्रोग्रेस करते हैं, तो धीरे धीरे उसको सुधारना आवश्यक हो जाते हैं, तब हमें अपने ये संस्कृत भाषा आदि जो है फिर से इसको अपनाना होगा।
1: माने कि अपनी जड़ों से हमें बिल्कुल हटना नहीं है।
0: बिल्कुल हटना नहीं, प्रारंभ में ठीक है, जैसे हम लोग कहें इनिशियल स्टेज वहाँ ठीक है, लेकिन जैसे लगे कि, और उल्टा मैं तो यही कहूँ कि जब मन में आ जाते कि नहीं अभी मुझे हिंदी भी समझ

0: जी हाँ श्रोताओं, इस समय आप हिंदू महासभा के तत्वाधान में मंगलाचरण कार्यक्रम सुन रहे हैं और स्टूडियो में है आचार्य गिरीश शर्मा जी। तो श्रावण मास और संस्कृत दिवस के बारे में काफ़ी जो है हमने सीखे हैं। अब हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के बारे में। जी हाँ आचार्य जी, अगले हफ्ते हम रक्षाबंधन मनाने वाले हैं। रक्षाबंधन का असली अर्थ क्या है? क्या ये सिर्फ भाई की बहन की रक्षा करने की परंपरा है या एक दूसरे की जिम्मेदारी और सुरक्षा का संकल्प है?
1: रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ केवल भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा, इतना सीमित नहीं है। इसका व्यापक और सुंदर अर्थ है प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी और परस्पर संरक्षण का संकल्प है। चलिए हम लोग थोड़ा देखें कि रक्षा का अर्थ क्या है। रक्षा केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है। सनातनी चिंतन में रक्षा का अर्थ है किसी व्यक्ति के सम्मान, विश्वास, सुख, अधिकार और कल्याण की रक्षा करना। इसलिए रक्षा का अर्थ केवल संकट के समय सहायता करना नहीं है, बल्कि पूरे जीवन एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहना। आज रक्षाबंधन को केवल भाई और बहन के त्योहार के रूप में देखना भी इसकी भावना को थोड़ा सीमित कर देता है। सनातन परंपरा में रक्षा सूत्र का व्यापक भाव सबसे पहले गुरु शिष्य के बीच में आते हैं, परिवार में भी आते हैं, केवल भाई बहन नहीं अपितु पति पत्नी के बीच में भी है, समाज के प्रति भी है, राष्ट्र के प्रति भी है। यदि हम अपनी थोड़ी प्राचीन इतिहास में चलें तो सबसे पहले तो जब गुरु और शिष्य के बीच में जैसे कहे ऑफिशियली एक संबंध बैठ जाते हैं, जिसको हम लोग गुरु दीक्षा कहते हैं, तो गुरु दीक्षा के समय अध्ययन आरंभ करने से पहले गुरु जो है अपने शिष्य के हाथ पे रक्षा सूत्र बांधते हैं। इस बात को दर्शाते हैं कि गुरु हमारी आध्यात्मिक जीवन की रक्षा करते हैं। कथाओं में आते हैं जब देवराज इंद्र देवासुर संग्राम के लिए निकल रहे थे तो उस समय इनकी पत्नी इंद्राणी ने इनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। तो ये पति पत्नी के बीच में है
0: जी।
1: और कितने ऐसे इतिहास में आते हैं जहां राजा भी जब युद्ध के लिए निकलता है तो इनके कुलगुरु, इनके मंत्रीगण आदि जो है हाथ में रक्षा सूत्र बांधते। तो ये केवल भाई बहन तक सीमित नहीं होते हैं, ये एक जिम्मेदारी होती है, एक भावना होती है कि जहां पर हम जिस किसी की भी रक्षा कर सकते हैं तो वहां पर यह इसका प्रतीक आ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जिसको मैं अपने ओर से कहता हूं, ये दो तरफा है कि मुझे भी किसी की रक्षा की आवश्यकता होती है और मैं भी किसी की रक्षा कर सकता हूं। तो ये दो तरफ हो जाते हैं, इसलिए ये केवल एक रिश्ते तक सीमित नहीं है, इसकी जो है वो फैला हुआ है। सब जहां पर भी रक्षा की बात होती है यहां आ जाते हैं, शब्द ही है रक्षाबंधन, जहां हम बंधे हुए हैं किसी की रक्षा करने के लिए।
0: तो इस धागे का जो आध्यात्मिक महानता है, उसका जो सिंबोलिज्म, वो क्या है?
1: रक्षाबंधन की राखी को केवल एक रंगीन धागा मानना उसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकवाद को बहुत छोटा कर देना होता है। वास्तव में यह छोटा सा सूत्र स्नेह, संकल्प, विश्वास, मर्यादा और रक्षा का प्रतीक है। राखी का धागा अपने आप में कोई जादुई वस्तु नहीं।

0: उसका महत्व उस संकल्प में है जहां बांधते समय हम लेते हैं। सनातन धर्मानुसार सूत्र शब्द का अर्थ केवल धागा नहीं है, सूत्र वह भी है जो विभिन्न तत्वों को एक साथ जोड़ के रखते हैं। इसलिए राखी का सूत्र हमें याद दिलाता है कि परिवार और समाज भी ऐसे ही आपस से जुड़े हुए हैं। एक अकेला धागा आसानी से टूट सकता है, लेकिन अनेक धागे मिलकर मजबूत सूत्र बनते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति अकेला कमजोर हो सकता है, लेकिन प्रेम और सहयोग से जुड़ा हुआ परिवार समाज जो है वह अधिक मजबूत हो जाते हैं। देखा जाए तो रक्षा जो है तीन स्तरों पर माने जाते हैं। एक शारीरिक रक्षा, जहां पर हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं। एक मानसिक और भावनात्मक रक्षा, जहां हम जिसको हम लोग जैसे कहे किसी की अकेलेपन में इनकी रक्षा करना, कोई कठिन समय में इसके साथ खड़ा हो जाना, तनाव के समय में इनको जब मोरल डाउन होता है जैसे कहे, तो वहां पर भी एक रक्षा की बात होती है। और एक नैतिक रक्षा, नैतिक रक्षा का मतलब होता है कि कोई गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो उनको सही रास्ता दिखाना, किसी के अधिकार को इनको दिलाना, ये सब जो है नैतिक रक्षा में आ जाती है। अब थोड़ा इसमें ये भी जोड़ दूं कि रक्षा सूत्र जो है हम लोग कलाई पर ही क्यों बांधते हैं।
1: जी,
0: कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा जो है वह हमारी धार्मिक संस्कारों में संकल्प और मंगल कामना से जुड़ा हुआ होता है। हमारे अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में कलावा बांधा जाता है। इसका भाव होता है कि मैं इस शुभ कार्य और संकल्प से स्वयं को जुड़ा रखता हूँ, और बार बार जब हमारी दृष्टि इस धागे के ऊपर पड़ता है तो वो हमें अपने संकल्प को याद कराता है। इसलिए जब भी कलाई पे यह रक्षा सूत्र देखते हैं तो हमें स्मरण आ जाते हैं कि हमने रक्षा करने की जो संकल्प उठाए हैं उसको निभाना चाहिए। अब रक्षाबंधन के समय, या केवल रक्षाबंधन के समय नहीं, कभी भी हम लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं तो हम ये मंत्र बोलते हैं, ये न बद्धो बरी राजा दानवेंद्रो महाबल तेना त्वाम प्रतिबंधामी रक्षे माचल माचल। इसमें भगवान विष्णु और राजा बलि की चर्चा आती है, ये न बद्धो बलि राजा, यहाँ महाराज बलि से जुड़ा हुआ है, जहां पर ये भक्त और भगवान के बीच की संबंध है। तो यह सूत्र जो है हमें स्थिरता और हमारे अंदर जो एक कामना होती है, हमारे अंदर जो इच्छाएं होती है उसकी रक्षा करने की बात करते हैं। अब यदि हम इसको केवल भाई बहन तक सीमित रखते हैं तो इनका जो दैवीय शक्ति है वो शायद हम लोग सीमित कर पाएंगे। इसलिए इसको केवल भाई बहन तक नहीं समझना है, इसको फैलाना भी होता है।
1: जी आचार्य जी, रक्षाबंधन की परंपरा में तिलक, आरती, मिठाई और राखी, क्या इन सभी जो रिचुअल्स हैं इनके पीछे कोई सिंबॉलिक मीनिंग छुपा हुआ है?
0: जी हाँ, रक्षाबंधन के अवसर पर हम लोग जो तिलक कराते हैं, आरती, मिठाई और राखी बांधते हैं, ये चारों जो है केवल परंपरागत रस्में नहीं है, इसके पीछे एक पूरा संस्कृति, एक पूरी मनोवैज्ञानिक, एक शुद्ध भावना, एक प्रेम सम्मान आदि का प्रतीक होता है। चलिए एक एक को हम देखते हैं। एक सबसे पहले होते तिलक
1: जी,
0: जहाँ पर तिलक किया जाता है। तिलक का मतलब होता है शुभता एवं मंगल का प्रतीक। इसको हम लोग भाई बहन तक ही थोड़ी चर्चा कर लें। सो बहन जब भाई के मस्तक पर कुमकुम या चंदन का तिलक करेगी तो वह केवल एक श्रृंगार नहीं है, वह उसके मस्तक में, हमारे यहाँ परंपरा में मस्तक को विवेक, विचार और चेतना का स्थान माना गया है। इसलिए जब तिलक कराते हैं तो हम ये कामना करते हैं कि आपका विचार शुभ हो, आपकी बुद्धि सदैव धर्मपरायण हो, आप सदैव सदाचार के मार्ग पर चलें। ऐसा तिलक का प्रतीक है। फिर उसके बाद जो हम लोग आरती करते हैं, आरती का अर्थ होता है यहाँ प्रकाशमय, जहाँ पर नकारात्मकता से हम अपने आप की रक्षा करते हैं। इसलिए भाव ये है कि जब आरती उतारे जा रहे हैं तो हम ऐसा भाव कर रहे हैं, मन में ऐसा है कि ईश्वर का प्रकाश आपके जीवन में अंधकार और संकट को दूर करे। और फिर उसके बाद मिठाई खिलाते हैं। इसमें तो जैसे ही शब्द है, मिठाई माने मिठास, रिश्ते में मधुरता आ जाए। ये केवल एक खाने की वस्तु नहीं है अपितु बल्कि एक प्रकार की शुभकामनाएं हैं। और हमारे यहाँ तो कहावत भी होते हैं, कोई भी शुभ अवसर हो एक दूसरे के मुंह मीठा किया जाता है। तो इसलिए मुंह में मिठास हो

0: हमारे बीच का जो शब्द है वो मधुर बने रहे, हमारे व्यवहार मधुर बने, हमारे संबंधों में प्रेम बने रहे, यह मिठाई का प्रतीक है। और आखिरी में जो हम लोग राखी बांधते हैं वह प्रेम और रक्षा का संकल्प है, जैसे मैंने पहले भी बताया। और इसमें एक दूसरे केवल भाई बहन के लिए नहीं कहते, दोनों एक दूसरे के लिए कहते हैं कि मैं आपके सुख दुख में साथ दूंगा और आपकी सम्मान, आपकी सुरक्षा, आपकी कल्याण के प्रति सदैव प्रतिबद्ध बना रहूंगा। इसके प्रतीक हम लोग ये चार क्रियाएं करते हैं, आरती करें, मिठाई लगाएं, मिठाई खिलाएं, चंदन कराएं, फिर उसके बाद राखी बांधते हैं।
1: मैं आपसे यही प्रश्न पूछने वाली थी, काफी लोग जो है असमंजस में पड़ जाते हैं, पहले कलाई में राखी बांधे,
0: पहले तिलक लगाते हैं
1: जी,
0: पहले तिलक लगाते हैं, हमारे पूजा क्रम में भी आते हैं, भगवान की भी हम लोग जब षोरश उपचार पूजा करते तो पहले चंदन चढ़ाया जाता है, भगवान का तिलक गिराया जाता है, तिलक के बाद तब हम लोग आरती करते हैं और उसके बाद तब हम नैवेद्य चढ़ाते, भोग अर्पण करते, तो उसके बाद खिलाते हैं, तब उसके बाद अंत में ये राखी बांधते हैं
1: जी। तो आचार्य जी,
0: सॉरी, उसमें थोड़ा शायद ये भी जोर देते हैं कि फिर परंपरागत एक दूसरे को कुछ भेंट वेंट देते हैं, ये थोड़ा लोक परंपरा है, आधुनिक परंपरा है कि बहन थोड़ा भाई को एक गिफ्ट दे देता है, ये अपनी प्रेम व्यक्त करने का है, लेकिन हमारी परंपरा केवल ये चार नियमों पर निर्धारित है
1: जी। तो इसके साथ साथ आचार्य जी, श्रावण पूर्णिमा को उपाकर्म भी मनाते हैं, इसका क्या महत्व है?
0: जी, श्रावण पूर्णिमा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है उपाकर्म, जिसके बारे में सामान्यतः रक्षाबंधन और राखी की चर्चा में कम हम लोग बात करते हैं। वैसे विशेषकर यह ब्राह्मण और वैदिक अध्ययन की परंपरा से इसका एक महत्व जोड़ा गया है। उपाकर्म शब्द का सामान्य अर्थ है नए सिरे से आरंभ करना या फिर पुनः आरंभ करना। वैदिक परंपरा में उपाकर्म वह संस्कार है जहाँ पर वेद अध्ययन करने वाले व्यक्ति अपने वैदिक अध्ययन का नवीनीकरण एवं पुनः आरंभ करते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन इसका संबंध यहाँ आ जाते हैं कि पुराने समय में जब वर्षा ऋतु में जब गुरुकुल में अध्ययन की व्यवस्था पुनः सक्रिय किए जाते थे, तब विद्यार्थी अपने गुरु के सानिध्य में वैदिक अध्ययन के प्रति नया संकल्प लेते थे और इसी को हम लोग उपाकर्म मानते हैं। वैसे यह उपाकर्म केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि ज्ञान के प्रति पुनः प्रतिबद्ध होने का संस्कार है। उपाकर्म के अवसर पर अनेक वैदिक परंपराओं में यज्ञोपवीत यानी जनेऊ का परिवर्तन किया जाता है, यानी पुराना जनेऊ निकाल करके नया जनेऊ हम लोग धारण करते हैं। और नया जनेऊ धारण करने का जो अर्थ है वह यह है कि हम अपने कर्तव्यों को फिर से स्मरण कराएं ताकि हम धर्म, कर्म और सदाचार के मार्ग पर सदैव चलते रहे। कहने का मतलब यह भी है कि उपाकर्म जो है वह हमारे जीवन में गुरु के महत्व को पुनः हमको याद कराते हैं, इसलिए यह उपाकर्म मनाए जाते हैं। और शायद इसी का लाभ उठा करके मैं श्रोताओं को यह बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में गुरु का होना कितना आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि आजकल देखा जाए तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कब करें, क्यों करें, कैसे करें, किसको सुने। आजकल तो सोशल मीडिया पे सुनते हैं, उसको सुनते हैं, इसको सुनते हैं, फिर आदमी कहे कि हम कन्फ्यूज हो रहे हैं। ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होता यदि हमारे जीवन में गुरु है
1: जी।
0: बस हमें बस इतना करना है कि अपने गुरु से पूछें कि ये कब करें, गुरु कहें कि आज कर लें तो आज कर लें। फिर हमारे यहाँ तो परंपरा में कहते भी हैं आग बन करके गुरु पे विश्वास करो, सो यदि गुरु कहें कि आज करें सो करें, हमें यहाँ वहाँ सुनने की आवश्यकता नहीं है। कन्फ्यूज वो हो जाते हैं जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं है, जो गुरु वाला होता है वो कभी कन्फ्यूज नहीं होता, यही उपाकर्म का संदेश है
1: जी। तो आज का यह मंगलाचरण कार्यक्रम समाप्त होने चला आचार्य जी, जाते जाते आपका संदेश?
0: संदेश बस इतना है कि पूरे महीने भर भगवान शिव की आराधना हुई, रामचरितमानस का पाठ हम लोगों ने किया, लोगों ने व्रत आदि धारण किए हैं। यद्यपि कोई भी चीज़ आरंभ होते हैं तो उसकी समाप्ति भी होते हैं, तो श्रावण मास समाप्त हो रहे हैं लेकिन क्रियाएँ समाप्त होती हैं। जो हम लोगों ने पूरे श्रावण मास के अंदर अच्छी आदतें अपनाई हैं उसको बनाए रखना चाहिए, और थोड़ा बहुत जिसको मैं कहता हूँ कि हमें थोड़ा देख लेना चाहिए कि इस साल के श्रावण में हमने क्या कुछ नया सीखा है, कुछ नया हमने पाया है कि नहीं। यदि जीवन में कुछ नया पाया नहीं तो फिर हम तभी हमें प्रश्न करना चाहिए कि मैंने क्या किया।

0: इसलिए इस श्रावण मास के बाद जो हमने कुछ नया सीखा है, कुछ नया पाया, उसको अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हिंदू महासभा की ओर से सभी भक्तों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि पूरे श्रावण मास अभी भी चल रहे हैं वैसे, सो लगातार गंगा तालाब आदि आए, सबकी पूजा संपन्न हुई और हिंदू महासभा की ओर से हम लोग बहुत कोशिश किए कि भक्तों की सुविधा हो और सभी भक्तिमय वातावरण से चला। और अभी तक तो सब कुछ नियमित रूप से चल रहे हैं, बाकी जो 2-3 दिन बचा है वो भी नियमित रूप से ही चलेगा, ऐसा भगवान महादेव से प्रार्थना है। सो सभी के लिए बस इतना ही संदेश दूँ कि श्रावण मास के बाद क्रियाएं समाप्त होती है, लेकिन जो हम लोगों ने नियम अपनाए हैं उसको बनाए रखना चाहिए।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो श्रोताओं, आज का यह मंगलाचरण कार्यक्रम समाप्त हो चला। कोटि कोटि धन्यवाद हिंदू महासभा, विशेषकर आपको आचार्य गिरीश शर्मा जी, और आभार व्यक्त करते हैं टेक्निक पर श्रीमती अंजू को भी। श्रावण मास की मंगल कामनाएं, संस्कृत दिवस एवं रक्षाबंधन की भी ढेरों शुभकामनाएं। प्रणाम, शुभ दिन।

0: North,
1: South,
2: 103.5,
1: East, West,
2: 96.4,
1: Center,
2: 99.4.
3: RM2, Radio Musti.
4: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, din ke 10 baje hain. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। पिछले 18 महीनों में मॉरिशस में 60 से ज्यादा जटिल चिकित्सा मामलों का इलाज विदेशी सर्जन्स के सहयोग से किया गया। इन विशेषज्ञों की मदद से ऐसे मरीजों का इलाज मॉरिशस में ही संभव हो पाया जिन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत थी। साथ ही सहयोग से स्थानीय चिकित्सा टीमों को नई तकनीक सीखने का अवसर भी मिला है। इस पहल का उद्देश्य कुछ मामलों में मरीजों को इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत को कम करना और मॉरिशस की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्षमता को और मजबूत करना है। बिजली के क्षेत्र में मंत्री पैट्रिक आसियावादेन ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक नई सहायता कंपनी की घोषणा की है। सीबी एनर्जी सोलर पैनल्स के आयात और उन्हें लगाने की जिम्मेदारी संभालेगी। इस कदम का उद्देश्य होम सोलर प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाना है। पैट्रिक आसियावादेन कल ओहियोता में मौजूद रहे जहाँ इस परियोजना के फेज 2B से 400 परिवारों को लाभ होगा। इस योजना को UNDP सहित कई साझेदारों का सहयोग मिल रहा है। श्रावण मास अपने चरम पर है। मात्र एक हफ्ते में ये पावन मास समाप्त हो जाएगा और इसी दिशा में कई लोग गंगा तलाव तक की यात्रा कर रहे हैं। कुछ लोग कांवड़ लेके तो कुछ लोग गाड़ियों में शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। कल वहां पर श्रावण महोत्सव का आयोजन किया गया जहां भारी संख्या में भक्तों ने गंगा तलाव का दौरा कर वहां पर पूजा किया और आज वहां पर मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की पहल पर एक गणेश मंदिर की स्थापना के लिए भूमि पूजा का आयोजन किया जा रहा है। विदेश में यूक्रेन में बचाव कर्मी शुक्रवार को रशिया के हमले में तबाह हुए एक बड़े शॉपिंग सेंटर के मलबे में बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। कीविव री इलाके में दो ड्रोन्स ने इस व्यस्त शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया। 16 लोगों की मौत हो गई जबकि 130 लोग घायल हुए हैं। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। Avenue de Petrel, Medine Camp de Mascmé, Avenue de Petrel, Medine Camp de Mascmé, 60 साल की 68 years old की मिसिस फिरोजा बीबी ओमिहुदी, मिसिस फिरोजा बीबी ओमिहुदी, पैदाशी नाम नसराली और जो फिरोजा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनका जनाजा दिन के

0: 11 बजे उनके बेटे मोहम्मद बिलाल ओमिहोजी के मकान एवेन्यू डे पेथरेल मेजिन कौंडमास्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए मेजिन कौंडमास्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। ला मुसलेन नुवेल फ्रांस में 77 साल के 77 ओल्ड के श्री करमवीर पुरन जो उधो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सपहर 3 बजे उनके मकान ला मुसलेन नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माँ की शानी रोस्पेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

सदकल्लाहुल अलीउल अज़ीम। सामईन इकराम, किसी के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो घर का माहौल बदल जाता है, चेहरे मुस्कुराने लगते हैं, मुबारकबादें दी जाती हैं, दुआएं होती हैं, खुशी मनाई जाती हैं। तो फिर हम उस ज़ाते अक़दस का जश्न विलादत क्यों ना मनाएं जिनकी आमद ने जुल्मतों को शिकस्त दी, जिनके ज़रिए

हमें ईमान की दौलत मिली, जिनकी मोहब्बत हमारी ईमान का हिस्सा है, उनकी विलादत बासादत का जिक्र हमारे लिए खुशी का बायस क्यों ना हो। इसलिए खालिद महमूद नक्शबंदी साहब अपनी नात में कहते हैं, ईमान मिला उनके सदक़े कुरान मिला उनके सदक़े, ईमान मिला उनके सदक़े कुरान मिला उनके सदक़े, रहमान मिला उनके सदक़े, वो क्या है जो हमने पाया नहीं।

इस तरह बोलने लगे कि आपकी बात सुनी और समझी जा सकती थी। 9 महीने की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल साफ गुफ्तगु फरमाते थे। बिलयकीन ये बातें इशारा करती हैं कि हमारे आका व मौला जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़हीन थे कि कायनात का कोई बच्चा आपसे बढ़कर ना ज़हीन हुआ और ना होगा।

मौजूद सामईन, ज़रा इस एक लफ्ज़ पर तवज्जो दीजिए, रहमत। रहमत, कुरान पाक ने हमारे प्यारे आका सैयद आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को किसी एक कौम, किसी एक खित्ते या किसी एक ज़माने तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इरशाद फरमाया, वमा अरसलना का इला रहमतलिल आलमीन, यानी ए महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने दिलों को सुकून दिया, भटकी हुई इंसानियत को रास्ता दिखाया, यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रखा। सामईन, ये तो कमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कोई भी गोशा उठा लीजिए, वहाँ रहमत की खुशबू महसूस होगी।

सामईन कराम, मोहब्बत के भी अजीब दुनिया है। हम किसी को देखते हैं, उसके चेहरे की कशिश हमें उसकी तरफ मुतवज्जो करती है, उसकी तस्वीर दिल में बस जाती है और फिर हम कहते हैं कि हमें उससे बेइंतहा मोहब्बत है। आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो कॉल का ज़माना है, किसी को भी हम बआसानी देख सकते हैं। मगर मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मोहब्बत की दास्तान ही कुछ और है। हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आँखों से कभी नहीं देखा, हमने वो चेहरा अनवर अपने निगाहों से कभी नहीं देखा जिस पर सहाबाए कराम जान निसार किया करते थे। ये मोहब्बत आज पैदा नहीं हुई, ये अहले बैत सहाबाए कराम से शुरू हुई, फिर उसके बाद ताबईन, तबे ताबईन, उलमाए कराम, औलिया कराम और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्लें आती गईं। ये मोहब्बत आँखों से देखी हुई मोहब्बत नहीं, ये दिल से पहचानी हुई मोहब्बत है, ये सदियों से चली आ रही है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ता क़यामत हमारे सीनों में ज़िंदा रहने वाली मोहब्बत है। इसलिए शायर ने इस अंदाज को, इस ख्याल को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है कि हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है।

सामईन ज़ीवकार, विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ एक तारीखी वाक़िया नहीं, यह हर मोमिन के दिल की धड़कन है। जब हम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो हमारी रूह झूम उठती है, दिल इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लज्जत से लबरेज हो जाता है और आँखें अकीदत से नम हो जाती हैं। इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो क़ुव्वत हैं जो टूटे दिलों को जोड़ती हैं, बिखरे हुए मुसलमान को एक परचम तले लाती हैं और गुनहगार को तौबा की तरफ रागिब करती हैं। आज की दुनिया में मुसलमान कई आजमाइशों, फितनों और परेशानियों में घिरे हुए हैं। ऐसे वक्त में हमें हुजूर नबी रहमत शफीक उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रहनुमाई चाहिए। अगर हम वाकई जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना चाहते हैं तो हमें ये देखना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पर किस हद तक अमल पैरा हैं।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, तमाम नबियों के सरवर दो आलम के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का दिन साहिब शऊर अहले इस्लाम और इश्क वालों के लिए यकीनन सबसे बड़ी खुशियों मुसर्रत का दिन होता है। इसी वजह से सहाबा इकराम अल्लाह तबारक व ताला के इस ख़ास फजलो एहसान और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसट के ज़रिए मिलने वाली हिदायत का शुक्र अदा करने के लिए मिल बैठ कर महाफिल सजाया करते थे। बूढ़ा हो या जवान, गोया हर मुसलमान दिल की ज़बान से बोल उठता है, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं।

जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, उनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम। मोहतशिम सामईन, देखते ही देखते वक्त ने इस बज़्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अख्ततम की दहलीज पर पहुंचा दिया है, मगर ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलें कहाँ ख़त्म होती हैं। नबी का ज़िक्र हो तो अल्फाज अदब से झुक जाते हैं, उनकी सीरत बयान हो तो कलम ख़ुद को खुश नसीब समझता है, उनकी मोहब्बत दिल में उतर जाए तो ज़िंदगी का रुख ही बदल जाता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें मोहब्बत मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुस्तफ़ा, इताअत मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, निस्बत मुस्तफ़ा, याद मुस्तफ़ा, अखलाक मुस्तफ़ा, ग़ुलामी मुस्तफ़ा और शफात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, इसी खूबसूरत दुआ के साथ अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। दिले नादा को रुख्सत होना गवारा नहीं, मगर यही रस्म दुनिया है। जल्द मुलाकात होगी। और सामईन, मैं जानता हूँ कि हर हफ्ते मैं आपके पैगामात, आपकी दुआएं लेता हूँ, मगर आज के ख़ास जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम के बायस मैं नहीं ले पाया, मगर आपके पैगामात मेरे पास सलामत है, महफूज है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगले हफ्ते आपके पैगामात सुनाएंगे। तो सामईन, जाने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से पूरी MBC टीम की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। सरकार की आमद मरहबा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह निगहबान।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस एमबीसी रेडियो
1: 24 आवर्स अ डे। आइए सुनते हैं एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सीबी बनान और क्लूनी के रहने वालों को सूचित करता है, विशेषकर ओब्लू, ओब्लू पोल्ट्री, सीडब्ल्यूए, ओब्लू टोस्टे, एमटीएस बनान, सीडब्ल्यूए पंपिंग क्लूनी, डोमेन डे ला ग्राव, हाइड्रोपोनिक बीमानिक और रूट रॉयल क्लूनी के आसपास के रहने वालों को सूचित करता है कि मंगलवार 25 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सभी मरम्मत कार्यों के बाद बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।
2: मुत्याल स्वरालू।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्वर तरंग।
2: स्वर तरंग। स्वर तरंग।
1: स्वर तरंग।
3: हेलो श्रोतृ, नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। श्री सोबत आपण आहात रेडिओ मडुष स्वर तरंग कार्यक्रमात। मी तुमच्या अगदी मनापासून स्वागत करतो।

听众朋友大家好，今天是2026年8月23日星期天，我是今天的节目主持人金。

人博尔特的9:58人类百米赛跑世界纪录。此外，这款机器人的跳高成绩2.88米也打破了2.45米的人类男子跳高世界冠军纪录。

听众朋友，防疫局剧情上节目差唔多即将面上，要我同各位听众朋友告别咧，我哋年初下次同一节目时间再见。

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: खो देना। चलिए इस विषय पर, इस लाइन पर हम आज चर्चा करेंगे कि रिश्ते बचाते बचाते खुद को मत खो देना। रिश्ते बचाना अच्छी बात है, लेकिन किसी रिश्ते को बचाते बचाते अगर आप खुद को ही खो दें तो फिर सवाल ये है, रिश्ता बचा किसके लिए? हम अक्सर कहते हैं रिश्ते निभाने पड़ते हैं। बिल्कुल, रिश्ते समझाने भी पड़ते हैं, वक्त देना भी पड़ता है, कभी कभी अपनी जिद भी छोड़नी पड़ती है, लेकिन हर बार सिर्फ आप ही को झुकना पड़े तो ये क्या बात हुई? हर बार सिर्फ आप ही क्यों समझाएंगे? हर बार सिर्फ आप ही क्यों माफ़ी मांगेंगे? रिश्ते में समझौता होना चाहिए, सिर्फ एक इंसान की कुर्बानी नहीं। तो चलिए, ये सिर्फ रिश्तों के हम बात नहीं कर रहे हैं, ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, काम पर या फिर परिवार में, दोस्तों के बीच या फिर प्यार के बीच, पति पत्नी के बीच। तो कभी कभी हम किसी रिश्ते को बचाते बचाते हम अपने आप को खो देते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और ज़िंदगी में बढ़ना हम अपने आप को ही रोक देते हैं। तो चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हम और आप कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 4028085 पर 92.85 पर आप अपना विचार दें कि रिश्ते को कैसे बचाया जाए और किस प्रकार से हम अपने आप को ही ना खो दें। तो चलिए लाइन पर पहले श्रोता कुछ हमेशा की तरह वही फ़ोन करते हैं। तो चलिए हरीश जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्ते हरीश जी।
1: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: जैसे आपने कहा स्वस्थ, मैं 100% स्वस्थ नहीं हूँ।
0: हाँ?
1: क्योंकि थोड़ा सा सर्दी है, थोड़ा सा खांसी है
0: जी।
1: तो मेरा वॉइस में आप अंदाजा लगा सकते हैं
0: जी।
1: सॉरी। तो ये रिश्ते के बात कर रहे हैं आज। पहली बात ये कहूंगा, जैसे आपने कहा इंट्रोडक्शन में, रिश्ते में बराबरी होना चाहिए, 50% 50%। अगर 2% है तो ईश्वर हर एक व्यक्ति इस रिश्ते में अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, अपनी जो देवता है वो उसको करना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ईश्वर शुड बी रेस्पॉन्सिबल। अगर हम रिश्ता रखना चाहते हैं तो एक पौधे की तरह हमको उसके आवाज़ें करना चाहिए। एक से फॉर एग्जाम्पल ए रोज प्लांट, वो उसको फूल आएगा, रहेगा, मुरझाएगा नहीं, कैसे होता है वो, हमको उसको पानी देना चाहिए। अगर एक रिश्ते में ये आवाज़ें नहीं हुआ, एक आवाज़ें करता उतना नहीं आवाज़ें करता है, यानी कि कम्युनिकेशन नहीं रखता है, बात नहीं करता है, वो टेलीफोन नहीं करता है और मिलना नहीं चाहता है, तो ये रिश्ता नहीं, कायम नहीं रहेगा। जैसे हम एक फिल्म के नाम है बदलते रिश्ते, क्यों रिश्ते बदलते हैं? इसीलिए रिश्ते बदलते हैं क्योंकि जो पर्सन में बराबरी नहीं है, एक हमेशा, जैसे आपने कहा, एक हमेशा सेक्रीफाइस करते रहे, सब कुछ हम भी तो हम भी बस सवालू करते रहे, लेकिन लोग जवान जो भी चाहे वो कहे, जो भी जिसे आते हैं वो अपने किसे बोलते हैं बिहेवियर रिस्पेक्ट नहीं करते। तो रिश्ते कायम होने के लिए मेरे विचार से रिस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट। हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए उस व्यक्ति से जिसके साथ हम रिश्ता रखना चाहिए, रखना चाहते हैं। There is also a word in English, पूजा में कहूंगा toxic relations, या रिश्ते जो जैसे थोड़ा सा पुआजो है उसमें, मलाजी है, तो ये इस तरह के रिश्ते हमको दूर रहना चाहिए क्योंकि हमको कोई लाभ नहीं होता है, हमको कोई खुशी नहीं लाती है, हमेशा दुखी करते हैं, ये रिश्ते एक बोझ बन जाते हैं, तो हमको उस ताल्लुक को, उस टॉक्सिक रिलेशन को

0: छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमें अच्छा रिश्ता कायम रखना चाहिए, जहाँ रिस्पेक्ट हो, जहाँ ईश्वर द्वेषी बात सेकंड फेस पाल आना सेकंड फेस जेफो ये फेस जेफो पाइक मामू जा आरोजे जा आरोजे यू पा आरोजे ने बुताई जा लिपो मो जा मैसी बोकु थैंक यू वेरी मच मुझा दी
1: बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, और आपके विचार बहुत ही नेक हैं, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ संध्या आपको। लाइन पर एक और श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो
2: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
2: सब चल रहा है जैसे हाँ। एक एक फुल रोज की तरह चल रहा है।
1: चलिए बताइए आपका क्या कहना है। आज हम बात कर रहे हैं रिश्ते को बचाते बचाते अपने आप को नहीं खो देना चाहिए।
2: एगो इंसान बा तो भगवान क्रिए कर ले बा सब इंसान के सिर्फ एलिमेंट से समझ लो।
1: हाँ
2: तो आदमी अभी 100% परफेक्ट नहीं बा, अभी आदमी रिश्ते नहीं रखेला दूसरे संगे ढेर इलवाइये रहेला और नहीं सक बा एगो आदमी जब एरे कर लगता ओकरा एस्किजे एस्किजे कर रही चल रही ना नहीं अच्छा बा ना और जब बचेबे तो चाहेला जाने के बचाई के ना ओंकादरे करे के समझ लो।
1: हाँ।
2: और कमाहत काइते चाहेला जिए के ना।
1: हाँ।
2: और चाहेला लामू नहीं के जब एगो आदमी से बचेबे तो ओकरा चाहेला निमन से बचाई के ओकरा मालट्रीटे नहीं चाहेला के ओकरा निमन से बचे जाओ तो कैसे ठोकर लगी, ठोकर नहीं लगी ना।
1: हाँ।
2: ओ मुएं धला एगो कोइंसिडेंस से ठोकर लगा था तो दूसर को चाहना बहुत अति करे के सावधान रहे के चाहे ना और तुरतों चाहना जालोक डाले के ना गद्दी से बचे बत निमन से बचे बत वो तोरा गाड़ी नहीं दे ना।
1: हाँ।
2: अब तू गाड़ी दे बहने उन्हें के बचे तो वो अति हो जाए ना तो हर में सा जालोक चाहना अमिकाल और जीभ में हड्डी नहीं है ना हये मुंह लात लगेला और पान खाला ना नहीं जन्म बचाई जाओ।
1: हाँ।
2: हाँ और हम भी के जितना आदमी बात है सब मैम कराते हैं नहीं बाना।
1: हाँ
2: प्लीज किस तो संग कहें पूछो आदमी तो नहीं उल्टा फुल्टा बा वैंसक से तेरी कमती धले अभी उहो पर निमन हुए नहीं बादर ला थोड़ा दिन में सौ पूछो आदमी बहुत अच्छी हो जाएगी मजा सौ से हो जाए नेट समझ ला।
1: हाँ
2: तो हमने के चाहे ला चूजी फ्रेंड्स के फ्रिक्वेंटे करे के लॉन्विरोनमेंट के चाहे ला सब देखे के निमन से पल परिवार से चाहेला रिश्ता रखे के काहे खातिर काल एक दिन गिर गेला वाजे से गिर गेला तब तोरा के उठाई समझ लो तो कैसे नहीं अच्छी कैसे अच्छी हो जाए तो पाती बा हाँ ये हमारे को छोटा संदेश बा सब छोटा लोग के को नमस्ते करत है और चोरों को बजाय गो जाती शुभ संध्या सब कोई के
1: शुभ संध्या
2: और हम लोग पे आदमी आपके हम बहुत खुशी रहेला समझ लो।
1: हाँ।
2: पसीर एगो मायों एगो एगो मायों कालिते एगो शन कालिते अच्छी कैसा ना एगो आदमी से नहीं सकी कुछ हो ना।
1: हाँ।
2: सब एगो मायों एगो लासन रहला तब हवे धरला एगो बरका शोभा।
1: हाँ।
2: समझ लो तो ये हमारे गो छुट नाजे के में ऐसे करा चाहिए
1: बहुत
2: और जो सकबत है एगो सौते डाल दिया एगो।
1: अच्छा
2: हाँ बहुत
1: बहुत
2: धन्यवाद
1: बहुत बहुत धन्यवाद
2: हंसते रहो।
1: अच्छा आप भी धन्यवाद। रिश्ते को बचाते बचाते अपने आप को खो न दे इस पर कोई बात नहीं कर रहा है पर मैं ये अवश्य जो है सुनना चाहूंगी कि अपने आप को नहीं खोना चाहिए क्योंकि जब इंसान ही रिश्ते के जो रिश्ता का जो मतलब है सच्ची मतलब है नहीं जानता तो अगर आप उसे बात ही ना करते या फिर उसको उसके साथ कोई संबंध ही ना रखें तो ना ही उसको चोट लगेगी ना आपको। कभी कभी जवाब देना पड़ता है पलट कर जवाब देना पड़ता है ये नहीं कि आपके पास मैनर्स नहीं है संस्कार नहीं है पर कभी कभी अपने आप को बचाने के लिए सच को सामने लाने के लिए पलट कर जवाब देना ही पड़ता है भले ही अपने आप को उस रिश्ते से आप अलग कर दो या फिर वो इंसान आपसे बात ही ना करे बाद में पर अपने आप को खोना जरूरी नहीं। आइए लाइन पर

0: और भी श्रोता हैं और उनको हम ध्यान से सुनते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि कभी कभी परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे बातें कर लेते हैं, या फिर काम में जहाँ भी जाते हैं। ये ज़िंदगी एक सफ़र है, एक यात्रा है, बहुत सारे लोगों से हम मिलते जुलते रहते हैं, कुछ सुख दे जाते हैं तो कुछ दुख दे जाते हैं, इसलिए सावधान रहना आवश्यक है। रिश्ते को बचाते बचाते अपने आप को नहीं खोना चाहिए। लाइन पर एक और श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं। शोभा जी नमस्ते।
1: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं बहना?
0: मैं भी ठीक हूँ। और राज का जो विषय है, रिश्ते को बचाते बचाते अपने आप को नहीं खोना चाहिए।
1: तू क्या बोलत हवा, रिश्ता के तो एक बड़ा नाम दे दिल हवा। मैं सिनेमा जो समझी तो समझी, जो नहीं समझी तो का बोली तो हर संगे हम।
0: आज कौन कोई नहीं समझेला।
1: हाँ, हम भोजपुरी में बच्चा बोल।
0: अच्छा बोला।
1: तो जब बारा तो हर संगे नहीं रिश्ते करी तो छोटा कैसे तो हर संगे।
0: हाँ, ये बात सच बोला कि जब एगो बड़ा आदमी मानिए दुलार से चाहे बतियाई
1: की। हाँ, जब बारा कैसे तो हर एगो भौजी बा, तोहर चाची बा, बहन बा, ढला सब नाते वे हो, अब सब भी कोई की बोलत है। जब ओ तोहर से तेरा बोली बोली तो हमी तो छोटा है सना, तो हमी तो खुशी ला सब बार आदमी के लिए मन से बोली विचार देवेलन सना। तो जब वो ही तेरा सीमा में चला था कैसे तू सीधा सीमा में चल बहला, तोहरा सीधा सीमा में चले के ना, तो वो तो टेढ़ा टेढ़ा होले जाला तो कैसे सीधा कर बह, तो हवी खातिर रिश्ता टूटले जाला। हाँ कि नहीं? तो अब तोहरा कहूँ अथी में देखी शादी बिया में तनी कैसे बोली जहाँ मृत्यु हो जाला, तब अब ओकर सामना सामनी होला ना, तो जब रिश्ता तू जला तब मुँह देख के घुमा देवेलन सा अपन अपन मुँह। हाँ कि नहीं?
0: हाँ। और जैसे बोला अभी, जैसे बोला अभी कि मृत्यु हो जाला परिवार में, कभी एकता होला हो जा
1: होला,
0: तो कभी कभी मृत्यु के समय में भी देखबा उस माहौल में कभी कभी कोई इंसान जो है कुछ कुछ नहीं नहीं कुछ ऐसा बोल दे बेलन सा कि जो दिल के दुखा दे। हाँ, चोट पर जाला, अब वो मैं पलट कर जवाब देला तो तू बुरा हो जाएगा।
1: हाँ,
0: इसी में वाउसाउस रखे लंसा और दिल में रखे लंसा और मानना पलट कर जवाब दे देला,
1: एगो प्वाजो हो गईला,
0: एगो पिका हो गया, एगो कांटा हो गया।
1: हवी से रिश्ता टूटले जाला। जब बारा जब निमन से नहीं समझी तो छोटा कैसे थी करी। निमन से छोटा आले, छोटा के तो छोटा अकेले रहेला ना, बारा के तो बारा अकेले रहेला ना। जब छोटावा जब तू बोल देला तो छोटा वो खिसा जाला। उहू तो एगो आदमी है ना, इंसान है। तो जब ओकर दिल दुखा जाला तो ऊ तो आंसू बहा देवेला, तो ऊ तो खुशी होला ना। तही तो दुनिया में चलता अब
0: चलता।
1: हाँ, तो हमी का बोलब सब पूजा जी, हमी रिश्ता तो हमी खुशी का बनाए के, तो हब्बी के लिए पुक में ढेर कोई रिश्ता नहीं सकल नहीं खोजेलन सा रखे के। कैसे भाई हरीश बोलक चल आहोजे करे के फूल के। जब मैं फुलवा नहीं मरी तो यहाँ तो सब आदमी फुलवा मोइले जाता हो। क्या बोलब? हाँ कि नहीं?
0: और आजकल कहा देखबा कि परिवार में कोई के खुशी सकता देखे नहीं सकता देखे।
1: नहीं, हवी तो तोरा बोली
0: आगे बर्बाद तो तोरा खींच देनी छे।
1: तो हे देखा तोरा बोला था परिवार जब खुशी नहीं सकला देखे तो ऊ चाहले एगो झगड़ा डाले के। ढले गो पिको थोड़ा पिके कर ले जाय हो परिवार से बोली वैसी बात हवी रिश्ता हटल हटल जाला जाने ला ना। तो हमी के आँख बा देखे के बा कान बा सुने के मिशन मा है लाहो हला से हमी भरोसा रखी ला सा उही हमी के सीधा सीमा बतलावेला और उही हमी के अकील देवेला। जाने ला हमी के साथ कुछ नहीं जाए, कुछ नहीं जाए, ना धन ना दौलत ना माता पिता कोई नहीं जाए।
0: और शोभा जी यही एगो बात बाते कि जुन जुन करेला मनुष्य सोचेला आदमी लोग
1: सोचेला
0: नहीं कि वो ओकर ओकरा कोई नहीं देखा था।
1: हाँ,
0: कर्म कोई नहीं देखा था। हाँ, परंतु एगो ऊपर बैठल बा और वो देखा था सब कोई के।
1: ऊपर होला ते गज्जा जा, वो तो दूसरे करे
0: बैठ के देखे था। देखा था कि के सच बोला था, कौन सी कर ले हवत, कौन ची कर ले हवा कि ऊ पलट के जवाब दिलक और जब सच सच सामने आल तो तू कैसे जन व्यवहार कर ल तो हाँ ये बोली ला रिश्ते को बचाते बचाते अपने आप को नहीं खोना
1: बचाते बचाते जो नदमिया है करेला ना वो बोलेला वो बहुत बलवान मैं हूँ बिग हम बहुत अथी है माजिया फो है निसेमा लाहो या जाइब तो वो तो हर सब जीजवा सब लता पर के तोहर सब जीजे करी तू कौन ची करला कौन ची प्लांट ला कौन ची करला कैसे हम ये रोज प्लांट अब सना तो मु गेंदा के फूल नहीं ना हो सब परिवार सब मिल मिला के रहेगे जब जले ओके जरत पन कहे रिश्ता टूटेला जरत जरत बा इपोखित जालूसी है ये बोलने जा जालूसी
0: कि ओकर लेका बड़ी तू नहीं बर्बाद
1: नहीं बर्बाद हवे जब ओकर लेका कजल एग्जाम में पासे हो गल तू नीचे वे रबा तो उसका तू अब तू हो पासे हो गई ला तो नेक्स्ट कैसे पासे होल ऐसे हो

0: आइए उनको हम सुनते हैं। हेलो हेलो,
1: हेलो हाँ नमस्ते दादी।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ
1: हम इंदिरा
0: नाम?
1: हाँ इंदिरा हाँ जियो
0: इंदिरा।
1: और
0: अच्छा,
1: जीने दो।
0: आपका स्वागत
1: मेरा
0: है।
1: नाम है जियो और जीने दो। जो मैं अब मैं एक बात बोलूंगी, ये तो अच्छा अच्छा भेजा आप लेकर आई है बहना। मैं
0: धन्यवाद।
1: सब माता जी भैया लोग सबको अच्छा बोली विचार बोला।
0: हाँ
1: हम जोन बोला जब काली धरती पर काली पुरुष और नारी बना
0: हाँ
1: तो पुरुष नारी पफा पुरुष वो अपन अकर के बोली
0: हाँ
1: नारी के छाना हो हमने के लिपुक में है हम लिपुक है कौन शाश्वत में है सब जो हमने के छाना सभ्यता से बचा के रखो हमार माता हमारा सभ्यता से बचाइए बा माँ मामा बोले बा शादी ब्याह करके जाइबा तो ऐसे नहीं छाना बोले के सबके एक समान छाना देखे के जैसे तोहर माता जी पिताजी हो सनी माता जी पिताजी। अब एगो बात हम बोलम जब हम शादी ब्याह के हो के आई हमने हमने पर देवत है जब हम माता जी के निमन से मान आदर से देवत है उ तो नहीं खुश होता हमारा उ तो हमारा बच्चा बुरी बोला था। अब कैसे जीब है सन आदमी से संघर्ष कते कते अला तो आज मजा फल रखल। और एगो बात है जो घर में रहेला हो जो नारी बा माता जी बा बहन बा भाई बा ननद बा तोहर लड़का बेटी बा ओकरा चाहना मान आदर से हो बड़ा आदमी पिताजी के या एगो भाई बा चाहना हो लड़कन लोग के जो सब नारी लोग के एगो मान आदर से बातचीत करे के घर में ताको है सब अडमियन सबको एगो लक्ष्मी के मान सम्मान बा। आजकल के ये सब दिखाता के नहीं दिखाता आजकल तो सब उलट पुलट कर पा जैसे हो माता जी बोला कि अच्छा बोली वे बोलबा तो बोली हाँ तो तू का जाने तू हम से जस्ती जाने ना
0: हाँ
1: तो मुँह बंद हो गल हम तो बोली ला हम तो अब दूसरे को बोली बोले तो पूजा जी हम तो एगो आदमी ऐसा हो गल हाँ अब तो प्रिवेंशन बेटर जान क्यू अब
0: हाँ
1: आज एगो दूसर बोली बनी प्रिवेंशन बेटर जान क्यू
0: और ई जोन बोलला अभी ना हमो ऐसने हो गल हई। अब तो खाली दूर दूर रहिला, कोई तो जे बोली कि चांद का टुकड़ा कानी कहाँ से निकलल, ए नहीं दिखेला, नहीं अभी नहीं नहीं दिखला
1: मैं
0: मजा,
1: जब छाना
0: कहाँ
1: गंती ना
0: नहीं
1: लेके
0: जाले के
1: यहाँ
0: गंदी नहीं लेके और चुपचाप रह के
1: से
0: हाई।
1: वहां से निकाल दिला और जाने ला
0: हाँ
1: हमारे कैसन सभ्या था हम बोली रहा हमारे हमारे दादा पंडित हर
0: हाँ
1: हर रोज दिमाग के हवन करते नहीं सर जन बोला को हम सनी ली जा हम बोली ला हम बेटी हमारे लड़का लोग शादी कर दे हमारे दूगो लड़का शादी कर हम जब हमारे लड़का के ऐसे सुने करी ला टेलीफोन पर तब हमारे
0: हाँ
1: लड़का के हम बोली ला नमस्ते बेटी
0: हाँ
1: हम अपन लड़का के नमस्ते बेटी
0: हाँ
1: जब ऐसे बोले तब वो भी जाने हाँ जब का माता
0: चेहरा
1: जी
0: नमस्ते बोले के
1: हमरा बोली था नमस्ते ऐसे छाने गो मान आदर से हमने के छाने सिमुआ खोले की
0: आज
1: जे
0: नमस्ते हो बोलबा त मुंह फेर लेवलन सा। ए
1: हाँ सर तो हम तो निमन काम करते ना बेटी हम तो निमन बतावत है तो हम मिसाल के बोलेला छाने गो मान आदर से जैसे गर्मी ले तो हाँ नमस्ते के अव
0: हाँ
1: है छाना पूछे के
0: पूछे के हाँ
1: अरे गर्मी से पूछे के कैसे हो नहीं बोला हाँ कहाँ जाता वह का काम करता वह कहाँ से आयला आजकल आदमी
0: हाँ
1: ऐसे बातोरा
0: हाँ
1: थारा सीमा में करा के कहाँ गए रहलक फलाना छलाना क्या कर रहा उस सब नहीं छाना बाता बोली आदमी से पूछ
0: ना
1: के
0: हाँ ये
1: पूछ के
0: सच्ची
1: कैसे
0: है।
1: अच्छा हुआ चाची तो स्वस्थ अच्छा बा लड़का लोग अच्छा बा ना तो
0: बढ़ा चढ़ा
1: आजकल
0: के नहीं चाहना बोले के।
1: ऐसे को मजा आता है यहाँ ये बोलिए अब दूसरा बोली निकाले हाँ प्रिवेंशन बेटर जान क्यू
0: ये सच्ची
1: आगे भी
0: है।
1: अपन प्रिवेंशन ले ला
0: हाँ
1: जान ला का बोल बा का नहीं बोल ला हाँ एक अच्छा
0: हाँ
1: विषय सुनना। और जो नारी बाजा नानी मन से और हाई बात जो शादी ब्याह में
0: हाँ
1: अदम्यक मुझे अकर के बोली जब
0: हाँ
1: अकर के बोल लगता नूने काम करे तो मन सा नहीं अकर के नहीं सब एगो सभ्यता से
0: घमंड
1: प्रेम
0: घमंड
1: प्यार
0: नहीं चाहना करके।
1: एगो प्यार प्रेम मोहब्बत से बोली के
0: हाँ हाँ
1: जैसे और आदमी आजकल के हो गर्मा को मजा आरोग्य वो
0: हाँ
1: बोली है तो हमार है जब वो शुरू कर लगे अभी है वो बोली है तो हमार है सब तो हमार है तो अब तो ई भी सिकक थोड़े संगे अब ई भी तब बोली है तो हमार है तकिका से सिकलक तो तोरे से तो सिकलक तुम्हें तो बतैल है ओकरा
0: हाँ
1: चला निमन से जब एगो बोली विचार से मजे डूहला 10,000
0: सोच के
1: पांच सोच के डूहलावे सोच के निमन से है विषय बा का बोली को मजे सक एक्शन एना सो गई एक्शन
0: हाँ
1: जैसे बोला जला एक्शन
0: हाँ
1: एंड रिएक्शन है ना हजे
0: बोले
1: दम्या
0: के
1: के बोल रहा तो का सोची सब बोलबो वा तो बोली क्षमा कर दे देख ना ऐसे बोलते हमरा क्षमा कर दिया जे तू को मजे नहीं कह पाओ तो जे खिसा जब तो हमरा क्षमा मांग लिया
0: भूलल
1: ऐसे
0: चुकल
1: छाना
0: माफ कर दिया।
1: हाँ ऐसे छाना बोली के जब बोले चुकल बोल तो मजे सब माफ हो गया वो तोरा अकर होने ऐसे कि नहीं छाना बोले कि हाई हमार हाई हम कि नहीं हाई हमार है
0: हाँ
1: कुछ नहीं बा हमने के सब भाई
0: हाँ
1: सब भगवान के हमने
0: हाँ
1: के कुछ नहीं बा हाँ अच्छा
0: बहुत
1: शुभ
0: बहुत धन्यवाद।
1: हाँ
0: और ये
1: अच्छा
0: विचार
1: धन्यवाद
0: निमन
1: सुन
0: से बोला और एकर
1: हाँ
0: खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अच्छा, शुभ संध्या,
0: शुभ संध्या आपको भी,
1: बाय
0: बाय। लाइन पर और भी श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं। हेलो,

0: नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते जी, कैसे हो? अच्छा हो?
0: अच्छा अच्छा है। अच्छा
1: अच्छा बोलो।
0: तू अच्छा हो ना?
1: हम अच्छा है
0: पूजा जी।
1: हाँ जी बोलो।
0: हम ढेर बात नहीं बतियाब, बोले के बात ढेर बात।
1: हाँ तोहर रेडियो सेटवा बंद कर दे, रिपोन करा था।
0: हाँ बुता देली। हाँ बुता ही देली।
1: अच्छा बोलो।
0: बोलत है हम दुए को बात बोलब। बेटी सब बेटी माँ बाप के घर में माँ बाप बहुत दुलार से रखेला। बेटी लोग के माँ बाप बहुत दुलार से बहुत खुशी माँ बाप को मतलब के घर में लोग परी चलाल बा। जब शादी होके जाला पूजा जी हो ससुराल में जाला तो कैसे बोल दे लाभी आमे ऐसे हो जला पूजा जी।
1: हाँ
0: बहुत दुख बेटी लोग के जब ससुराल में बहुत दुख अपे जे बात बा एक गो बा निमन से रहेला।
1: हाँ
0: जब ओकर पति ओकर साथ रहेला तो सास ससुर देवर गोतनी लोग सब कोई कुछ कोई कुछ नहीं सकेला बोले।
1: हाँ
0: आप जे ओकर पति ही ओकर ओकर साथ नहीं बा ओकर साथ नहीं बा।
1: हाँ
0: अरे बोला था अब कैसे हो दुनिया कैसे अब ओकर घर कैसे चली। जब ओकर पति ही ओकर साथ नहीं बा छोटरिया शादी होके आल बा ससुराल में ना माँ बाप उतना देपोस होल साथ बड़का शादी बिया होल खुशी से चाहे जब शादी होके आवेला बेटी ससुराल में तो ओकर पति ही ओकर पास नहीं लेवेला। ओकर पति ही अपन फैमिली लोग के पास लेवेला। अरे बोला था पूजा जी का छोटरिया सखी ससुराल में रहे
1: नहीं सकी
0: है? नहीं सकी पूजा जी नहीं सकी है बताए जेकर भान बा जेकर बात करम में बात निमन से आ जे पति ही साथ नहीं रही तो कैसे छोटरिया कैसे संगे रही।
1: तो एकर मैंने चाहेला अपने आप के खो दे के है। ये तो आज के विषय है। रिश्ते बचाते
0: हाँ,
1: बचाते अपने
0: हाँ,
1: आप को नहीं खोना चाहिए।
0: हाँ सेलमा कृष्ण हम दूसरे हम अपन पर बोलत है अपन ही पर।
1: हाँ
0: हम दाजी हम एक ही गो बेटी हमार माँ के रही शादी हो करी तो बहुत दुख बहुत दुख जितना हम सके अपन पूजा पाठ पूजा पाठ पूजा पाठ उमे गोतनी लोग ऐसे सौसे 12 हवन से तो चाहे छोटा कुमार जा चाहे वो लोग के गोर तरह रहे के जौन बोलियन से चाहे। हाँ जो जहाँ मुँह खोल लो मोबे हो रही तू।
1: हाँ मुँह फट हो गया।
0: हाँ हाँ जैसे तू मुँह तुम्हें वो लोग जौन वो लोग बोली बैठ तो बैठ बोली उठ तो उठ।
1: हाँ पुपे थाई ऐसे चाहला बोल के पुपे थाई रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करा था
0: ऐसे नहीं था। गोतनी लोग गोतनी लोग गोतनी सास बन गला। हम बोला था पूजा जी हमारे पास गीतल बहन उही से हम ना अपन नाम नहीं बोली ला पचे का है जब नाम बोल बता हलौंधवा के सब आदमी जान जाए उही से हम नाम लौंधवा नहीं बोली ला।
1: ये सब घर घर के कहानी है।
0: घर घर के कहानी घर घर के कहानी
1: है।
0: हाँ ये बस है पूजा जी घर घर के कहानी। बेटी के शादी करब इतना रुपया उतना पैसा का जाने कौन शादी थे घर ऐसे बोलब आई हम सब आ बहुत आ बोझी मुन बहुत बोझी मुन। जब जब छोटरिया शादी होकर जाए घरवा में तब न जानी सास कैसन बा गोतनी कैसन बा ओकर पति ही कैसन बा तब तुम जब ओकर भेकुले तब जनब तब जनब दामाद अथी पति लोग के भेकुले।
1: हाँ ये सच्चे बात बोल रहा।
0: हाँ ये बताए पूजा जी माँ बाप के घर में बेटी रानी बनेला सास ससुर के घर में नौकरानी बनेला।
1: हाँ ये तो हम शादी नहीं कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेवी जी।
0: ना पूजा जी सच्चे हम दोस्तों से बोला था ना सच्चे के ना हम ना अथी करते हैं आप है जो छोटी लोग का शादी हाँ तो मैं बोल बात हूँ हम बोलन सब ये लिपे जालू मोपे माये।
1: ये तो सच्चे बात बोला। हाँ
0: ना यू ना तो बात है।
1: हाँ हाँ
0: पच्ची हम ही पास से हो तो हम ही जानी ला सब।

0: जा नहीं रहा सर।
1: जब
0: तब
1: बोलबा कोई से,
0: हाँ,
1: हाँ जब
0: तो ये
1: कोई
0: सब
1: से बोलो ता
0: जन जन जन अभी समस्या बोल रहा, ये हर घर घर की कहानी है। तो और भी लोग बातें लाइन पर, अभी लोग भी मौका हमने देव आप सब। बहुत बहुत
1: आले,
0: धन्यवाद
1: आले
0: सविता जी।
1: पुजा दी, पुजा दी,
0: अच्छा
1: बाय।
0: धन्यवाद,
1: बाय,
0: बहुत
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद, शुभ
1: बाय बाय।
0: रात्रि। रिश्ते को बचाते बचाते अपने आप को नहीं खोना चाहिए। आज हम एक जनरल बात कर रहे हैं, ना केवल पति पत्नी के रिश्ते में, या फिर कहें परिवार में भी, या फिर आपके आसपास भी। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, ये जीवन एक यात्रा है, एक सफ़र है। इस सफ़र में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, पर इस बिछड़ना और मिलने में अपने आप को नहीं खोना चाहिए। जिंदगी चलने का नाम है, आप चलते रहें। लोग चाहे बिछड़े रहें ना रहें, पर आपको अपने कर्म करते ही जाना है। अपने आप को नहीं खोना चाहिए, जानना चाहिए हम इस धरती पर क्यों आए हैं, किस कारण के लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है। लाइन पर और भी श्रोता हैं, आइए उनको हम सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो,
2: हेलो पूजा जी, नमस्कार।
0: नमस्कार वीना जी, कैसी हैं आप?
2: ठीक हूँ, ठीक हूँ। आज मैं गंगा तालाब गई हुई थी, थोड़ी थकी हूँ बल्कि।
0: अच्छा, बहुत अच्छी तरह से पूजा भी हुई, प्रार्थना भी हुई
2: हो गया, क्योंकि सावन मास समाप्ति पे है।
0: हाँ।
2: कल अंतिम सोमवार है, वैसे तो शुक्रवार को समाप्त हो रहा है, तो इसलिए आज हम गए थे थोड़ा।
0: जी अच्छी, अच्छा किया आपने। और ये जो पूजा पाठ और श्रावण माह का इस पावन महीने पर आपने गंगा तालाब जो है दर्शन भी किया। जी
2: दर्शन किया, और सभी अपने हितैषियों के लिए, शत्रुओं के लिए, जो मुझे चाहते हैं, नहीं चाहते, सभी के लिए
0: सभी के लिए पूजा करना पड़ता है। जी
2: सारे जो जीव जंतु है सभी के लिए करती,
0: जी
2: अपने लिए नहीं करती, पूरे ब्रह्मांड विश्व के लिए। तो आज के विषय में मैं ज्यादा कुछ लंबा नहीं बोलूंगी, यही बोलूंगी कि ये जो रिश्ता है, हम देखिए पूजा जी, हम सामाजिक प्राणी, बिना रिश्ता के तो हम नहीं रह सकते।
0: जी
2: मानेंगी, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं।
0: हाँ।
2: परिवार में रहते हैं।
0: हाँ।
2: देश में रहते हैं, और सभी के हमारे साथ कुछ ना कुछ रिश्ता तो होता ही।
0: हाँ।
2: यहाँ तक कि हमारे तो जानवरों के साथ भी रिश्ता।
0: जी जी जी जी,
2: आप ये मानेंगी।
0: जी लगाव भी हो जाता है,
2: हो या चिड़िया हो, पक्षी हो,
0: जी
2: आदमी उससे भी रिश्ता बना लेता है, तो उसके साथ भी उसका एक लगाव हो जाता है।
0: जी
2: लेकिन आजकल के समय में हम लोग क्यों ज्यादा ये जो पशु है ना, उसके साथ ज्यादा रिश्ता बनाना, मतलब अपने को पसंद करते हैं, क्योंकि अभी का स्वार्थी हो गया है।
0: जी
2: कभी कोई नहीं चाहता कि आप उसके साथ रिश्ते में रहो।
0: जी
2: परिवार में हो या अगल बगल हो, सब मतलब रिश्ता उस तरह का नहीं होता है, जैसे कि मैं आपके यहाँ आती हूँ, आप मेरे यहाँ आते हैं, रोज हम गपशप करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहीं इस तरह का नहीं। मतलब गांव में जो लोग दिखते हैं छोटे बड़े, तो हम प्रणाम करते हैं, छोटों को आशीर्वाद प्यार देते हैं, परिवार में भी हम ऐसा ही रहते हैं। लेकिन परिवार में क्या है, जब कभी रिश्तों में अनबन हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि हमें झुकना पड़ता है।
0: जी
2: आप कितने लंबे समय तक उस दौड़ को खींचते रहेंगे, मतलब मानो कोई बात हो गई, कुछ बात हो गई तो बातचीत बंद हो गई, कोई किसी को दिखना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी सामने से पहल करना पड़ता है पूजा जी, क्योंकि नहीं तो ऐसा लगता है कि मन पे एक बोझ है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि और लोग हैं जो आपको इग्नोर भी करेंगे, समझ रहे हैं ना रिश्तों
0: जी,
2: में
0: जी।
2: तो इस तरह से हम अपना रिश्ते को नहीं बचाने के लिए कभी कभी हमें पहल करनी पड़ती है
0: जी,
2: और जो है उनके आगे सामने हमें झुकना पड़ता है, जैसे कि अपनी गलती अगर नहीं भी हो ना तो मान लेना पड़ता है कभी कभार।
0: हाँ।
2: समझ रही है ना
0: जी।
2: लेकिन अगर इससे भी, मैं नहीं बोलती हूँ कि हर बार हमें झुकना चाहिए, हर बार हमें माफ करना चाहिए, जब आप देखें कोई हद से ज्यादा ही ऐसा नहीं चाहता कि आप उसके साथ रिश्ते में रहो, तो ऐसे अवस्था में तो हमें

0: हाँ
1: हैं आप अपना रहो
0: जी
1: आप, क्योंकि अगर वो सामने वाला नहीं चाहता कि आप उससे कोई रिश्ता कोई संबंध बनाओ, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना
0: जी जी
1: क्योंकि जब जबरदस्ती करेंगे तभी वो जाकर बाद में वो बहुत गंभीर हो जाता है विषय ना जबरदस्ती का, क्योंकि रोज एक बल्कि दूर रहेंगे और मतलब समान भाव में रहेंगे तो ये रिश्ता बना रहेगा
0: जी।
1: और कभी कभी उन लोगों की बातों को इग्नोर भी करना पड़ता है। मान लो कोई किसी ने कुछ कह भी दिया, चाहे देखो ऑफिस में हो या स्कूल में नौकरी पे हो, कहीं भी जॉब में हो, घर में हो, कहीं पे हो, तो कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिसको हमें नजरअंदाज करना ही पड़ता, नहीं तो वो बाद में जाकर बहुत समस्या सीरियस हो जाता है
0: जी।
1: और फिर उसे संभालना, फिर रिश्ते को भी, क्योंकि आदमी कोई अपना रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहता किसी के साथ। संसार में हम आए हैं तो हमें देखो, हम भगवान को हमने नहीं देखा है लेकिन भगवान के साथ भी तो हम संबंध रखते हैं ना, रिश्ता रखते हैं ना
0: जी।
1: तो उसी तरह मनुष्य के साथ भी कोई भी हो तो हमें रिश्ते को रखना चाहिए और रिश्ते को निभाना हमें आना चाहिए, किस तरह से बैलेंस करके रखना है
0: जी,
1: ताकि उसको कुछ बुरा ना लगे और आप भी खुश वो भी खुश। क्योंकि संसार में हमें, मेरा तो यही फंडा, मैं तो बोलती हूँ जियो और जीने दो, आप भी खुशी खुशी जियो, हम भी खुशी
0: जी।
1: ठीक है, कब आदमी ऐसा करता है, जैसा मैं आप में कोई गलती ढूंढती हूँ, रिश्तेदार तो ऐसा करता है, करते ही है। अभी तो संसार ईर्ष्या जलन के मारे और अहंकार से भरे हुए हैं, तो आपको उनकी तरह नहीं बनना है। आप अपना सिंपल रहो, आप अपना स्वभाव न छोड़ो, आप जैसे हो आपको कायम रखो, तो सामने वाला आप बाद में वो खुद ही जैसे कि वो बोलेगा ये तो कैसा है, ये भले ही वो आपको सोचेगा कि ये तो एकदम ढीठ है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने अच्छे स्वभाव को मत छोड़ो, तभी हम अपने को बचा सकते हैं और अपने को भी नहीं खोएंगे। नहीं तो इस तरह से हम समय आता है कि हम अकेले पड़ जाते हैं। तो बस यही मैं दो चार बातें मुझे शेयर करनी थी रिश्ते को लेकर, क्योंकि हम भी तो यूं ही इतने साल तक तो हैं, लेकिन ऐसे तो देखेंगे तो हमारे भी रिश्ते में बहुत काफी काफी उतार चढ़ाव आया है जिंदगी में, लेकिन अगर हम सबको बैठ पकड़ कर बैठेंगे ना पूजा जी, सफर हो जाएगा
0: जी।
1: हमें अपने जीवन को आसान करना है, मुश्किल नहीं, मैं तो ये बोलती हूँ। आप क्या कहती?
0: ये आपने सच ही कहा है, बेटर है कि आप दूर ही रहो जो आपसे दूर रहना चाहते हैं।
1: हाँ, अगर नहीं चाहता तो आप जबरदस्ती का उसके सर पर नहीं बैठना है
0: जी,
1: और जो रिश्ता रखता है तो उसके पूरे ईमानदारी से निभाओ।
0: हाँ ये तो है,
1: कैसा भी रिश्ता हो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी
1: जी,
0: और
1: आपको धन्यवाद, आपको भी आपने मुझे मौका दिया, और शुभ संध्या आपको, और अच्छा अच्छा कार्यक्रम इसी प्रकार जो विषय लाती है कुंड के, मुझे पता है।
0: हाँ।
1: तो बहुत ही बढ़िया होता है हम सोचने पर मन, क्योंकि ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में सभी के साथ ऐसी ऐसी परिस्थिति होती है, हम ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं ना, रोज उठते बैठते हैं तो ये हम देखते हैं समाज में आसपास घर में सभी, तो ये बहुत हमारे लिए सोचने, हमें अंदर से सोचना है
0: जी जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद आपको,
0: शुभ
1: रहिए
0: आपको भी, और आप भी खुश रहें और इस कार्यक्रम में भाग लेती रहे। आइए लाइन पर आशा जानू को हम सुनते हैं। आशा जी नमस्ते।
2: हेलो नमस्ते पूजा जी,
0: नमस्ते।
2: और समस्त बुजुर्गों को भी सादर प्रणाम करती हूँ
0: जी।
2: और देखिए पूजा जी, रिश्तों के बारे में बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, पर आपने विषय रखा है कि रिश्तों को बचाते बचाते अपने आप को नहीं खोना चाहिए
0: जी।
2: तो मैं ये
0: मैं जानती थी आप मेरी इस विषय इस लाइन को अवश्य सुनेंगी ध्यान से, और आप भी बता सकती हैं। चलिए बताइए, आपको सुनती हूँ मैं।
2: तो पूजा जी, एक मशहूर कहावत है, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है।
0: अवश्य
2: उसी प्रकार रिश्ते भी एक तरफा कभी नहीं निभाना चाहिए, दोनों तरफ से बराबर भाव से निभाने चाहिए। जैसे कि एक अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है, अपमान का भूत भी पी लेता है, और एक

0: तोड़ने के लिए धोखेबाजी भी कर जाता है, यहाँ तक अपनी वफा भी खो देता है। और कहते हैं ना, आंख से गिरे आंसू कभी वापस आंखों में नहीं जाते, उसी प्रकार रिश्तों में अगर नजरों से गिर जाते हैं तो फिर से उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, इससे लगता है। तो अपने रिश्तों को बचाते बचाते इतना भी अपने नजरों से मत गिरिए, तो खुद से नजर मिलाने के लिए शर्म आती है। और कहते हैं ना, रिश्तों में वो चाहे कोई भी रिश्ते हो, माता पिता बच्चों के बीच में हो, या पति पत्नी के बीच में हो, या दोस्तों के बीच में हो, छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, पर समझौता सिर्फ एक ही करे ये कहाँ की बात हुई। समझौता भी दोनों ओर से बराबर हिस्सेदारी में होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक बात हो गई तो सिर्फ एक ही मनाए, दूसरों को भी तो पहल करनी चाहिए ना, दूसरों को भी तो अपनी कोशिश दिखानी चाहिए ना
1: जी।
0: और रिश्ता, जैसे मैंने कहा, हर एक रिश्ते की अपनी अपनी मर्यादा होती है, अपनी अपनी पहचान होती है, पर कोई भी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में सबसे अहमियत ये बात होती है कि आप रिश्तों की कदर कीजिए। रिश्तों में सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान का होना अति आवश्यक होता है। जैसे कि रिश्ते को आप बचा रहे हैं ताकि आपका रिश्ता पक्का हो, मजबूत हो, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज और रिस्पेक्ट अच्छी तरह से होने चाहिए। जैसे ये नहीं कि बड़े ही छोटों को समझाएं और सिर्फ छोटे ही बड़ों की बात सुने, तो यहाँ पर अहंकार भी आ जाता है, ईगो भी आ जाते हैं। तो ईगो को त्याग कर दोनों तरफ के रिश्तों को एक समान दिशा में ले जा करके सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए, अपने सम्मान को, आत्मसभिमान को बचाते हुए, अगर रिश्ते में सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी हो, तो कभी रिश्तों में ना झुकने की जरूरत होगी, ना किसी छल कपट की जरूरत होगी, बल्कि रिश्तों में मधुरता और संबंध में घनिष्ठता आ जाएगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी कहा सब कुछ सच सच कहा है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी।
0: थैंक यू पूजा जी, शुभ संध्या।
1: शुभ संध्या आपको भी। आइए लाइन पर एक और श्रोता है, विजय जी को हम अवसर देते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्ते विजय जी।
2: नमस्ते, समाचार कैसे पूजा जी?
1: सब समाचार ठीक, और आप कैसे हैं?
2: हाँ सब ठीक बटे, जितना की जनता सुना था, भाई बहन सब कोई के बोले प्रणाम। हाँ जी सही, तो बहुत अच्छा बा। हाँ हम दो तीन को जोड़ देवते हैं मैं
1: बोला,
2: बस की रिश्ते सही, तब हम वैसे ऊपर वाला बना के आवेला, ऊपर से बन के आवेला रिश्ते हम, मैं ही आमी के चाहनी भाई के।
1: हाँ।
2: और हम तो याद ना, हमारा छोटा हम रही था, माँ बाप लोग सिखाई, यू चचा हा, दादा हा, उन्ना ना उन्ना सिखाई हम सारों के छा प्रणाम भूल गए। परिवार जो बटे नातिन नातिन जे कौन परिवार को सिखाई के चलना, रिश्ता लोग सिखाई के, ई के हटे ऊ के है, लोग चला निमन से रिस्पेक्ट करेगी। जब भाई हमने नहीं सिखा लड़का लोग, हमने परिवार में रिश्ता हुए नहीं, रिश्ते हुए नहीं बनी। आर जो नवा रिश्ते बनेला, नवा जो रिश्ता महिला हमने बड़ा, जब से परिवार में जब रिश्ता महिला कोई तो घर आवा, जब शादी हो गई था, अब एक हमर बेटा शादी करा था, भुआ भी ढेर परिवार बाब चोकरी बल से, तो वो रिश्ता चलाने के निभाए के लोग सिखाइए सर, ई कौन परिवार, ई कौन परिवार रहते, परिवार ढले रिश्ता ढले बड़ा होता, तो हमने के चल अपन रिश्ता निभाए के सिखाए के चल हटे, आ निमन से कबो कबो दरार हो जाए रिश्ता में, प्रॉब्लम हो जाए, तब हाउ प्रॉब्लम हो जाते हमने के चाह कैसे बोल सकते डोली में दृश्य करके चल हटे, भर सक चल हर वो रिश्ता निभाए के, और चाहना जाने कौन कितने रिश्ता बननी गए, रिश्ता में छोटा बड़ा सब बननी में, वो बड़ा अच्छा हो रहा है बोलेगे उसे, मैं ये है रिश्ते हमी में नहीं रिश्ता जाने वो रिश्ता नहीं मिली, और हम भी बड़ा ही समझे चाह छोटा के जस्ती रिश्ते करे हो रहा मान आदर जस्ती चाह देंगे, तब एगो रिश्ता सब बनी भाई, और एगो रिश्ता चली चले और मिल के चलानी भाई के, बस जब एगो परिवार में रहता तुलता नहीं सकेला कोई बोले को घर में नहीं हो लाटे खड़ खून नहीं हो लाटे होला, और ढेर रिश्ता फाली बीते देखे

0: उनको रिश्ता टूट जाला थे, छोटा सा बात में रिश्ता टूट जाला थे, और ऐसा टूटे ला तो फिर से जुड़ी नहीं। मैं हमने के चला सोचे के बहुत समझे के हमारे विचार है ये कि पूजा जी हमने के चला रिश्ता चाह निभाई जाने के और चला हमने के परिवार में चला सब संगे रिश्ता बना के रखे के अपन रिश्ता बना के रखे आज चला हमने के सबको के वो सीख सिखाई कैसे चला जीवन आगे ले जाएगी। दुख सुख तो सब सबके जीवन में बटे, दुख सुख सब बटे, चला हमने के अपन खुशियों से अपन रिश्ता निभाई के और सब चला मिल के रहेगा, पहला हाथ सब संगे प्यार से रहेंगे मिल के रहेंगे तब रिश्ता अच्छा से मिली। धन्यवाद जितना सुना था सबको बताए प्रणाम नमस्ते, सबके शुभ संज्ञा, आपके भी शुभ संज्ञा,
1: आपको भी विजय जी। आइए एक और श्रोता है, नमस्ते, एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको हम सुनते हैं। राधा जी नमस्ते।
2: हेलो नमस्कार, नमस्कार। भूल गए मुझे क्या बोलना था, कब से फोन लगा रहे
1: हैं। अच्छा बताइए।
2: है ठीक है, मैं ये बोल रही थी पूजा जी, संसार में तो हम आए हैं लेकिन कितने कैसे कैसे कैसे लोगों से हमारी मुलाकात होती है। क्योंकि देखिए ईश्वर ने ऐसी रचना ही कर दी है कि अगर दोस्त है तो दुश्मन तो होगा, सुख है तो दुख तो आएगा, धूप है तो छांव होगी। तो इसीलिए रामचरितमानस ने तुलसीदास जी ने इसको मानस रोग बताया है। मानस रोग मतलब हम में अहंकार है, हम में ईर्ष्या है दूसरों को देखकर, हम किसी को देखकर मतलब किसी की खुशी में हम खुशी नहीं होंगे। तो जीवन है, ये जिंदगी है, ये सब है ही, लेकिन फिर भी मैं ये मेरा विचार है कि हम हमें मिलनसार होना चाहिए, जहाँ तक हो सके हम अपना कर्तव्य निभाएं, मतलब कि जो हमसे बात करे तो हमसे बात करें, हमसे बात ना करें तो ना करें। क्योंकि देखिए चार वस्तुएं ऐसी है संसार में जो नित्य रहने वाली नहीं है हमेशा, जैसे है बल हमेशा नहीं रहता, विद्वता भी हमेशा नहीं रहती, सुंदरता भी हमेशा नहीं रहती और धन भी हमेशा नहीं रहता, सबका क्षय होना ही है एक दिन। फिर हम क्यों नहीं ऐसा जिए, मतलब कि साधारण भले ही कितने अमीर हो, कितने विद्वान हो, कितने कुछ भी हो, सबसे हम मिलजुल कर रहे हैं। और जो हमसे रिश्ता बनाना चाहते हैं ठीक है, जो रिश्ता नहीं बनाना चाहें तो हम उनसे थोड़ा अलग रहें, लेकिन क्या करें, जिंदगी है, जीना तो पड़ता है। इसमें जीते जीते ही मनुष्य बहुत कुछ सीखता भी है पूजा जी, लोगों से मिलकर, ऐसे लोगों से मिलकर ही आपको अनुभव होता है कि दुनिया में कैसे कैसे किस तरह के लोग हैं। हाँ तो मेरा विचार इतना ही है, बहुत शुभ संध्या, बहुत अच्छा विषय रखा है आप,
1: बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी,
2: धन्यवाद आपको
1: और शुभ संध्या आपको। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। कमला जी
3: पूजा जी
1: नमस्ते। कमला जी कैसी हैं आप?
3: हम ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ। और कमला जी के पास क्या कहना है?
3: आपकी आवाज सुन के और भी ठीक हो गया।
1: धन्यवाद।
3: रिश्ता तो हर जरूरी है पूजा जी,
1: जी
3: हमें हर हाल में निभाना चाहिए, माता पिता का हो, भाई बहन का हो, यारों का हो, पति पत्नी का हो, संगत में हो, परिवार में हो, सभी के लिए। हमें तो आपसे भी रिश्ता जुड़ गया।
1: धन्यवाद।
3: हर सप्ताह हमें इंतजार रहता है कि कब हमारे पूजा जी आएंगे, अच्छा अच्छा बात लेकर के रिश्ता जुड़ गया
1: जी।
3: लेकिन हाँ, लेकिन निभाना चाहिए
1: जी, निभाना
3: हर हर वक्त, हर हर मोड़ में रिश्ता निभाना चाहिए
1: जी,
3: कि हम इसे टूटने न दे, इसे बहुत हम शादी करके आए हैं तो निभाना, आगे के समय तो बहुत दुख था
1: जी,
3: लेकिन निभाया
1: जी,
3: निभा दिया। अब हम तो उम्र के हो गए हैं लेकिन बाल बच्चा सभी के लिए हमें निभाना चाहिए, हमें सिखाना चाहिए। लेकिन बच्चे लोग, आजकल के बच्चे लोग तो नहीं सीखते हैं ना
1: जी,
3: नहीं सीखते हैं। फिर भी हम कहते हैं जहाँ नहीं अच्छा लगता है वहाँ कहते हैं कि ये नहीं अच्छा है, ये वो नहीं अच्छा है। शादी ब्याह आजकल तो बहुत धूमधाम से करते हैं लेकिन थोड़े दिन के रिश्ते टूट जाते हैं तो बहुत दुख होता है कि क्या हमने रिश्ता निभाया। हमारे दादी नानी, माता पिता, दादा लोग निभाया रिश्ता, वो रिश्ता अमर था। हाँ रिश्ता निभाना चाहिए, हर हाल में मंजूर करना चाहिए और जरूरी है रिश्ता
1: जी,
3: जरूरी है। हाँ धन्यवाद आपके
1: बहुत
3: लिए।
1: बहुत धन्यवाद आप,
3: धन्यवाद पूजा जी।

0: संध्या।
1: शुभ संध्या आपको भी।
0: आपको भी।
1: एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। बसंती जी नमस्ते। हेलो हेलो हेलो, लाइन में शायद कुछ।
2: हेलो
1: हेलो बसंती जी नमस्ते, कहाँ चली गई
2: जी,
1: थी आप?
2: मैं ठीक हूँ पूजा जी।
1: जी बताइए।
2: तो मैं शुरू करती हूँ।
1: हाँ शुरू कीजिए।
2: रिश्ता सुख में या दुख में जिंदगी के हर मोड़ पर जो मिलजुल कर रहे उसी का नाम है रिश्ता। कभी हमें हंसाएं तो कभी हमें डांटें, पर हमारा साथ कभी न छोड़ें, यही तो है रिश्ता। बुरे मार्ग पर जो चलने के इससे रोकें, जो मार्गदर्शन बनकर हमें प्रोत्साहित करें, वह जो हमारी रक्षा करें, इसी का कहते हैं रिश्ता। परिवार तो बंद मुट्ठी की तरह है, हर सदस्य को एकजुट रखता है। परिवार बिना जिंदगी होता है बिरंग। परिवार रिश्ता का आशीष होता है अमूल्य, और रिश्ता है तो जीवन है। तो पूजा जी मैं दो शब्द कहने जा रही हूँ
1: जी,
2: जब एक छोटा सा शब्द और। रिश्ता बनना रखना ठीक है, लेकिन जो कोई आप पर जुल्म करें, आपको दुख देवे, तो जुल्म सहना पाप है। जुल्म करना पाप है, तो जुल्म सहना भी पाप है
1: जी।
2: क्या क्या कहते हैं आप इस पर?
1: ये आपने सच कहा है, जुल्म जो है नहीं सहना चाहिए
2: जी।
1: रिश्ते को बचाते बचाते अपने आप को नहीं खोना चाहिए
2: जी जी जी,
1: जी।
2: और एक लाइन में कहती हूँ
1: जी।
2: ए कागज हो तू सब कोई बाँचे, भाग न बाँचा जाए रे, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई।
1: क्या बात है जी,
2: जी,
1: जी।
2: हम पौधों से सीखते हैं।
1: हाँ।
2: हम वृक्ष से सीखते हैं।
1: हाँ।
2: हम चींटी से सीखते हैं। हम तो इंसान है। हम
1: हाँ।
2: हमें तो इंसानियत है ना।
1: हाँ।
2: तो हम क्यों अच्छा काम करें
1: जी,
2: बुरे के संगत न करें। अच्छा हाँ। कैसे हम कहते हैं संगत करे जान के और पानी पिए छान के।
1: जी आपने सच ही कहा है। और इंसान में इंसानियत ना हो तो वो इंसान ही इंसान क्या है,
2: किस तरह के इंसान वो है
1: जी।
2: हम तो समझदार हैं, आप तो समझदार हैं ना
1: जी,
2: तो हमें तो बुद्धि है ना पूजा जी।
1: जी अवश्य।
2: इस शब्द से मैं आपको यहाँ समाप्त विराम लेती हूँ।
1: अच्छा।
2: और औरों के मौका दिए जाए।
1: धन्यवाद बसंती
2: जी,
1: और शुभ संध्या आपको।
2: जी आपको भी।
1: अच्छा और एक और श्रोता है, शुभ नमस्कार नवीन जी।
3: शुभ नमस्कार पूजा जी।
1: जी
3: पूजा जी।
1: हाँ जी बोलिए।
3: देखिए रिश्ता रिश्ते सभी लोगों ने संबंधियों के के बारे में कहा, तो मैं कुछ अलग से कहूंगा क्योंकि सभी से रिश्ते हैं हमारा इस दुनिया में
1: जी।
3: और आगे बढ़ने से पहले कहूंगा, जहाँ खजाना होता है ना वहाँ रिश्ता नहीं होता है
1: जी,
3: वहाँ दिल दिल नहीं होता है वहाँ पर हमारा
1: जी।
3: हाँ आपने सही बात कही, रिश्ते बचाते बचाते अपने आप को न खोते बात जो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है
1: जी।
3: मैं अपना विचार दे रहा हूँ
1: जी,
3: मैं किसी को नहीं बोलता कि मानना ही चाहिए, लेकिन मैं आऊंगा दोनों तरफ से
1: जी।
3: यह निर्बल किस रिश्ते की बात है, यह इस पर निर्भर होता है क्योंकि रिश्ते सभी इंसान से है हमारा
1: जी।
3: वक्त आने पर रिश्ते पहचाने जाते हैं। उदाहरण तौर पर मैं कहूंगा, गरीबी में पत्नी और वृद्धावस्था में औलाद। देखिए रिश्ते सिर्फ संबंधियों में नहीं
1: जी,
3: काम की जगह पर भी रिश्ते होते हैं। जैसे अभी आप काम में हैं
1: जी,
3: बड़े छोटे सब हैं काम में। बड़े छोटे का मतलब हमारा जो ऊपर है, जो हमको आज्ञा देते हैं ये काम करो वो करो, ठीक है। तो ये सब अगर वो

0: खड़े हैं, आपको अच्छी तरह से बताइए कि यह काम किस तरह से करना चाहिए, तो कोई तनाव नहीं होगा, क्योंकि काम में हमको संचार यानी कि संवाद होना चाहिए, संचार होना चाहिए, सही तालमेल, और जहाँ यह नहीं तो दफ्तर में तनाव बढ़े या किसी की मदद में चुक हो या तो चुगली हो किसी को नीचा दिखाने के लिए, तो मैं कहूँगा यह मुश्किल बात है। स्वाभाविक है कि अगर हर कीमत पर रिश्ते बचाएंगे तो हम अपनी पहचान, अपने आप को खो देंगे, अपने आत्मसम्मान खो देंगे। अब आइए के विषय पर, अच्छी बात है ना। हेलो
1: जी, जी मैं आपको सुन रही हूँ।
0: मैं जी ये तब ये आप ही की बात पर आ रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कैसे बचाएं। देखिए आदमी हम हैं, हम समाज जीते हैं, चाहे हम आपस में समझे एक दूसरे को, दोनों तरफ से खुलकर बात करें, ध्यान से सुने, क्योंकि आजकल तो लोग ध्यान से सुनना नहीं चाहते, सिर्फ बोलना चाहते हैं, तुम मुझे सुनो, मैं तुम्हें तुमको क्यों सुनूं। गुस्सा तो जल्दी कर लेते हैं, तो इसे काम नहीं बनता, काम बिगड़ जाता है। दोनों तरफ सीमा पार न हो, स्वस्थ रिश्ते के लिए जानते क्या करना चाहिए। अगर एक चुप रह जाए, मौन रह जाए, तो ये जो मौन है वही बोलता है, और मौन रहने वाले की विजय होती है अंत में।
1: जी
0: देखिए पूजा जी, मैंने दोनों या तो बचावे या न बचावे दोनों पर बात की, मैं आशा करता हूँ कि लोग इस श्रोतागण समझ गएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ।
1: जी
0: आपने मुझे मौका दिया, और पूजा जी मैं आपको धन्यवाद कहते हुए कहूँगा कि आप ये पूजा निरर्थक ना जाए।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद,
0: बहुत धन्यवाद कहूँगा आपको,
1: धन्यवाद,
0: नमस्कार। छोटी सी दुनिया में फिर मिलेंगे, कभी न कभी तो बात करेंगे।
1: जी अवश्य, और गरम गरमा नाश्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतने रोचक नाश्ते के जो प्रश्न आप भेजते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: देखिए जब तक हूँ आप इस चीज के चाहे मत, और किसी लोग प्रश्न देना चाहेंगे तो ये तो, लेकिन आप तो हमेशा मुझे बोल गया, तो मैं चुप नहीं रह सकता।
1: जी
0: और अभी कठिनाई में हूँ, फिर भी समय
1: निकाल कर आप भेजते हैं,
0: ढूंढता हूँ पूजा जी, मैं बहुत व्यस्त है इन दिनों।
1: जी जी जी
0: ओके,
1: मैं समझ,
0: पूजा जी
1: धन्यवाद,
0: फिर मिलेंगे, नमस्कार, शुभ संध्या।
1: शुभ संध्या आपको भी। एक और श्रोता है, आइए उनको भी हम अवसर देते हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्ते।
2: नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
2: हम ठीक हैं, आप ठीक हैं?
1: जी मैं भी ठीक हूँ। चलिए बताइए आपको क्या कहना है।
2: हाँ रिश्ते की बात होते हैं ना
1: जी,
2: तो रिश्ते को संभाल को नहीं रखेगा तो वो बिखर जाएगा ना
1: जी।
2: सबको संभाल को रखना चाहिए रिश्ते को, उसको ठीक से बात करना चाहिए। पहले तो अभी तो रिश्ते तो उतना देखते हैं ना कैसे होते हैं, पहले के जब हम लोग दादा दादी रहते हैं तो सब जुट कर एक घर में रहते हैं, कितना अच्छा लगते हैं, कितना खुश की बात है, छोटा बड़ा चाचा चाची सब बहुत खुश से रहते हैं हम लोग। अभी तो वो दिखते हैं, वो थोड़ा उसके थोड़ा एगो घर हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं तो बात नहीं करते हैं, तो वो बोलते हैं हम बड़ा हैं तू छोटा है, तो ऐसे करना कैसे नहीं करना चाहिए ना
1: जी।
2: ये तो रिश्ते हैं ना,
1: रिश्ते तो रिश्ते हैं,
2: रिश्ते तो रिश्ते हैं, ठीक से बात करना चाहिए, रहना चाहिए, किसी को दिक्कत जलना नहीं चाहिए
1: जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस विचार के लिए तारा जी,
2: धन्यवाद,
1: धन्यवाद और शुभ संध्या आपको भी। अच्छा जी धन्यवाद।
3: हम और आप,
1: हम और आप कार्यक्रम यही पर समाप्त हुआ, और जैसे हम कहते हैं कि रिश्ते को बचाते बचाते अपने आप को नहीं खोना चाहिए।

और मैं एक उदाहरण किसी ने भी नहीं लिया पर मैं लेना चाहती हूँ। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध करने जा रहा था तो वो निराश हो गया था क्योंकि वो मोह से बंधा हुआ था। तो पितामह ने कहा कि ये तुम्हारे अपने ही हैं पर तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। तुम इस धरती पर आए हुए हो एक कर्म करने के लिए और ये परिवार नहीं आत्मा है। और अगर आप जीवन को भी इसी प्रकार से देखेंगे कि ये सभी आत्मा है और मैं अपने कर्म करने आया हूँ और रिश्ते तब तक सच्चे रहते हैं जब तक आप अपने कर्म अच्छी तरह से कर रहे हैं, निभाइए पर अपने आप को मत खोइए। चलिए अब हम बढ़ते हैं त्योहार पसंद कार्यक्रम की ओर। इससे पहले एक छोटा सा और सुंदर सा गीत आप सभी के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया उन सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे।

सबको के नमस्ते और ही प्रणाम आ त्योहार पसंद कार्यक्रम में सबको के हमनी स्वागत करत हई जा और जितना कोई हमनी के साथ देवत हवन जा सब कोई के बुलाब जा स्वागत बाते त्योहार पसंद कार्यक्रम में और नंबर तो वही है 4028085 पर जन्मदिन के गीत चाहत हवा सुने के कोई के गीत सक बजा फरमाइश करे तो सक बजा हमने के टेलीफोने करे 4028085 पर 402-80-85 पर नहीं तो 2251-7005 पर सक बजा हमने के मिसाजो भेजे तो चला अभी है गीत खास तौर पर बिस्वानी दीपुआ जी खातिर और सब परिवार और सब टीम खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा बुलल जाला कोई सहायता करे खोजी तो वो सहायता करी मन चाहे ना साफ होइ के तो बिस्वानी जी और ई राघव देने से तोरा बहुत बहुत धन्यवाद बुरत हवन जा कि ओकर शादी में चांद चांद लगा दिला और अपन गमठ से वन गीत से ओकरा बड़ी खुशी से ओकरा बड़ी खुश कर दिला और तोहर टीम खातिर है गीतवा खास तौर पर

0: तो बोलल जाला कि जब एगो परिवार में शादी होवेला या फिर जन्मदिन होवेला तो एगो नया जो है शुरुआत होवेला, तो ये शुरुआत करता राघव और अश्विनी, और वो लोग के बहुत बहुत बधाई देवब जा पूरे MBC टीम देने से, और उकर सब दुबोगी परिवार के देने से, और खास तौर पर हमनी के टीम देने से वो लोग के ढेर सारे शुभकामनाएं। वो लोग नीमन से रही, खुशी से रही, ढेर लैका फेंका हो, और हमेशा वो लोग अपन रिश्ते के अपने रिश्ता के निम्ने से ले जयन जा हये भगवान से यही प्रार्थना करीला सा। तो चलो ओकर सब परिवार देने से, खास तौर पर ओकर माता पिता देने से और ओकर सब परिवार देने से वो लोग के ढेर सारी बधाई। तो हमनी के दुल्हा राजा खातिर तो चलो
1: चला।

और अभी जुन्हा सुनान सुनन चरंगी जी बोला थवन हमर नाम है सुना और हम सुना नोयान के बड़ा एगो फान है ओकरे गीत डाल दिया हमार खातिर त गीतवा खास तौर पर रसोना मा नीलम मा और साथ में ओकर पत्नी और ओकर सब परिवार चरंगी परिवार के नाम मा तो चला तोहर नाम कौन फुलवा सुना नोयान जी के गावल गीत था।

धुआं निकलने लगी तो तेल डालने से क्या होगा। जब असर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुद ही चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी लगा।

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने

तभी जन्हा शिवमय वातावरण बाते हर जगह। और ये गीत खास तौर पर शांता सुकागी जो का सब परिवार सुकागी परिवार के नाम और खास तौर पर शैला जी गौन सुदेसो का सब लोचन परिवार के नाम।

तो ये गीत खास तौर पर काजल जी के नाम जो हाईलैंड से हमने के सुना था वन जाओ कर घरे गो छोटा बाबू आल बाते तो कर लड़का खातिर और सब परिवार खातिर है गीतवा।

मुरजानी को को और है गीतवा खास तौर पर नानी सुखलाल जी खातिर जो हमनी के साथ देवत हवन और ओकर सब लैका लोग खातिर गीतवा और ओकर सब सुखलाल परिवार के नाम।

तो चला एक रेवे संगे हमनी तोहार पसंद कार्यक्रम के अंत तक चला है जा अंतिम गीत हमनी चलावत है जा मन जी ख्वाहियो के हवन जा और अपन बेटे अविनाश और नीलम के शादी के सालगिरह पर ढेर सारा प्यार और बधाई देवत हवन जा और ओकर सब परिवार और ओकर लड़का लोग के देने से ओकरा ढेर सारा बधाई और पूजा को अनुमति दा हमार देने से सब कोई के नमस्ते स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए और जे अपन जन्मदिन मनावत हवन जा आज पूरे एमबीसी टीम देने से लोग के भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त शाम के ठीक 6 बजे हैं।

0: रविवार 23 अगस्त 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 100% मॉरिशस में बनी उन तकनीकों और खोजों की जो आज मॉरिशस को उच्च तकनीक यानी कि हाईटेक समुद्री उपकरणों के क्षेत्र में एक प्रमुख पहचान दिला रही है। मैगोज स्थित इमर्जेंट मैरिटाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ऐसे अंडरवाटर ड्रोन्स तैयार कर रही है जिनका उपयोग समुद्र के भीतर जांच के लिए किया जाता है। श्रावण मास के संदर्भ में देश के कई जगहों पर शिव जी का विशेष पूजन किया जा रहा है। इसी दौरान आज आवनी मूलम कावड़ी का त्योहार भगवान शिव की पूजा के लिए मनाया गया। श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की पहल पर गंगा तालाब में आज एक भूमि पूजा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है गंगा तालाब में गणेश पंचमुख मंदिर का निर्माण करना। विदेशी स्तर पर कनाडियन प्रधानमंत्री ने कल नए अतिरिक्त टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका द्वारा उनके देश के खिलाफ शुरू किए गए व्यापार युद्ध के कड़े शब्दों में निंदा की। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जी हाँ बिल्कुल, आज हम शाम को ये बात करने जा रहे हैं कि 100% मॉरिशस में बनी उन तकनीकों और खोजों की, जी हाँ, जो आज मॉरिशस को उच्च तकनीक यानी कि हाईटेक समुद्री उपकरणों के क्षेत्र में एक प्रमुख पहचान दिला रही है। मैगोज स्थित इमर्जेंट मैरिटाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ऐसे अंडरवाटर ड्रोन्स तैयार कर रही है जिनका उपयोग समुद्र के भीतर जांच के लिए किया जाता है। इन ड्रोन्स का डिजाइन, निर्माण और असेंबलिंग पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर ही की गई है। इसके साथ ही कंपनी ने जहाजों की सतह की सफाई के लिए भी एक विशेष मशीन बनाई है। पिछले 6 महीनों से इन तकनीकों का निर्यात कई अफ्रीकी बंदरगाहों पर किया जा रहा है। शहजाद अली जुमन की रिपोर्ट पर आस्था गोबिंद का विवरण।
1: मॉरिशस में बनी समुद्री तकनीक अब एक नई पहचान बना रही है। मैगोज की इस कार्यशाला में समुद्र के भीतर

0: जांच करने वाली खास ड्रोन बनाए जा रही हैं। इनका इस्तेमाल बंदरगाहों के ढांचे की जांच के लिए होता है। ये करीब 80 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। समुद्री तट के भीतर नेशनल कोस्ट गार्ड की मदद के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन ड्रोन की बनावट से लेकर बिजली और मशीन से जुड़े काम तक सब कुछ यही मॉरिशस में किया जाता है। इन्हें बनाने वाले शानी गरबरन के मुताबिक इग्लून नाम का ये ड्रोन विदेश से आने वाले ऐसे ही ड्रोन जैसा काम करता है, लेकिन इसे बनाने की लागत करीब 10 गुना कम है। इस ड्रोन को खासतौर पर जहाजों की जांच के लिए बनाया गया है। इसकी बनावट इसे ज्यादा कारगर बनाती है। इसे परखने के बाद अब पोर्ट लुई और दूसरी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आमतौर पर ऐसी जांच के लिए गोताखोरों को समुद्र में उतरना पड़ता है, जो काफी खतरनाक हो सकता है। इस टेक्निक से ये खतरा कम होता है और गोताखोरों की सुरक्षा बढ़ती है। इस ड्रोन को शुरू में जहाजों के निचले हिस्से की जांच के लिए बनाया गया था। समय के साथ जहाज के नीचे कोई और छोटे समुद्री जीव जमा हो जाते हैं। इससे जहाज की रफ्तार कम हो सकती है, लेकिन इमर्जेंट मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज की टीम ने केवल जांच तक खुद को सीमित नहीं किया है। अगला कदम था इसकी सफाई। इसके लिए दो मशीनें तैयार की गई हैं। इससे कचरा वापस समुद्र में नहीं जाता और प्रदूषण का खतरा भी कम होता है। जहाज पर जमा समुद्री जीव दुनिया के किसी भी हिस्से से आए हो सकते हैं, इसलिए सफाई के दौरान उन्हें मॉरिशस के समुद्र में छोड़ना ठीक नहीं है। हमारी मशीन गंदगी को खींचकर अपने अंदर जमा करती है। इसे मॉरिशस में ही बनाया गया है और परखा गया है, और अब इसका इस्तेमाल दूसरे देशों में भी हो रहा है। पिछले 6 महीनों से मॉरिशस में विकसित इन उपकरणों का इस्तेमाल अफ्रीका के कुछ बंदरगाहों में भी किया जा रहा है। यानी समुद्री टेक्निक के क्षेत्र में मॉरिशस का हुनर अब दूसरे देशों तक पहुंच रहा है। मॉरिशस के पास इस सेक्टर में ज्ञान और हुनर है। हमने इसी हुनर को टेक्निक और कारोबार से जोड़ा है। हम अपने ड्रोन या मशीनें बेचते नहीं हैं, बल्कि दूसरे देशों में जाकर खुद अपनी सेवाएं देते हैं। इस तरह टेक्निक और उसे चलाने की जानकारी दोनों हमारे पास रहती है।
1: Nous pas vendre nous bande machine, nous pas vendre nous drone, nous pas les personnes, tous drone là, mais nous implantons dans les autres pays que nous offrons le service.
0: ये बाजार भले ही सीमित हो, लेकिन संभावनाएं बड़ी हैं। ये दिखाता है कि समुद्री अर्थव्यवस्था के सेक्टर में मॉरिशस के पास अपनी टेक्निक विकसित करने और एक प्रमुख तकनीकी केंद्र के रूप में आगे बढ़ने की क्षमता है।
2: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि श्रावण मास भगवान शिव की उपासना का अत्यंत पवित्र समय माना जाता है, इस दौरान गंगा आरती और भगवान शिव का के जलाभिषेक का विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। श्रावण मास में गंगा आरती केवल नदियों की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह शिव भक्ति के रंग में रंग जाती हैं। आरती के समय डमरू, शंख और घंटों की ध्वनि के साथ वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन, मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन, मॉरिशस तेलुगु महासभा और मॉरिशस तमिल कल्चरल सेंटर ट्रस्ट के मिले जुले सहयोग से पहली बार के लिए भव्य रूप से श्रावण उत्सव मनाया गया। ज्यादा विस्तार सुमेहरा अकबर अली के साथ।
3: सदा वसंतम हृदय रविंदे, अर्थात शिव सदा हमारे हृदय में निवास करें। ये पंक्ति शिव भक्ति का एक गहरा भाव सामने रखती है। शिव जी की उपासना केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि उन्हें अपने भीतर अनुभव करने की भी बात करती है। मन में शांति, व्यवहार में संयम और जीवन में करुणा, ये वे भाव हैं जिनसे शिव जी को अपने हृदय में स्थान देने का संदेश मिलता है। महादेव की कृपा प्राप्त करने तथा उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए उनके भक्तों ने आध्यात्मिक वातावरण में कल गंगा तालाब में उनकी पूजा की। कुछ भक्तों ने कांवड़ यात्रा भी की। भोलेनाथ जी का पावन महीना श्रावण मास के अवसर पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए देश के चार कोनों से आए

0: श्रद्धालुओं ने उनसे सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की।
1: यहाँ पर बहुत ही शिवमय वातावरण छाई हुई है। शिव जी हमेशा सभी को अपने आंचल में बसाए, सभी को कृपा करके सभी का भला करे।
2: Profiter pour Jajut, viennent faire puja ici, viennent vivre sa positiveness ici-là, sa shivna et vatavaran-là, en l'autre même ça.
0: श्रावण मास केवल पूजा पाठ का महीना ही नहीं बल्कि आत्मसंयम, सेवा और सद्भावना का संदेश भी देता है। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन, मॉरिशस तेलुगु महासभा और मॉरिशस तमिल कल्चरल सेंटर ट्रस्ट के सहयोग से एक भव्य श्रावण मास उत्सव का आयोजन किया।
3: हम सभी लोग साथ में मिलकर पहली बार के लिए ये मना रहे हैं और हम दिखा रहे हैं हमारे नौजवानों को कि हो सकता है कि हमारा जो बोलने का हमारा भाषा अलग है, हमारा जड़ अलग है, लेकिन हम सभी लोग सनातनी हैं। तो हमारे नौजवानों को हम ये सिखा रहे हैं कि हमारा कल्चर जो है, हमारा संस्कृति जो है, हमारा संस्कार जो है, ये लेकर आगे बढ़े, क्योंकि यही नौजवान हमारे कल का नया पीढ़ी है।
0: शिवमय वातावरण में विभिन्न संस्कृतियां दर्शाते हुए युवकों ने विशेष नृत्य एवं भजन कीर्तन किए।

0: कल इस कार्यक्रम का समापन गंगा महाआरती से हुआ।
1: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की पहल पर गंगा तालाब में आज एक भूमि पूजा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है गंगा तालाब में गणेश पंचमुख मंदिर का निर्माण करना। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रधान श्री भोजराज गुरबीन के अनुसार ये मंदिर अगले साल के महाशिवरात्रि पर्व से पूर्व बनकर तैयार हो जाएगा। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में। गंगा तालाब के किनारे पर 1100 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर गणेश पंचमुख मंदिर का निर्माण किया जाएगा। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की पहल पर यह मंदिर बनाया जाएगा। इसी कारण श्रावण मास के संदर्भ में गंगा तालाब में एक भूमि पूजन किया गया।
2: हम लोग एक भूमि पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहीं पर डिवाइन म्यूजियम में हम लोग एक मंदिर पंचमुख गणेश का मंदिर बनाने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो हिंदू परिवार है, पूजा शुरू करने से पहले हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने एक गणेश मंदिर बनाने जा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है कि ये शिवरात्रि 2027 से पहले ये जो मंदिर है ये बन जाना चाहिए।
3: पृथ्वी की पूजा, क्योंकि पृथ्वी पर ही हम स्थापित हैं, पृथ्वी पर ही हम रहते हैं। और जब कोई नया निर्माण होता है, चाहे आप घर का निर्माण करते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं, कुछ भी है, तो क्योंकि भूमि में कई प्रकार के दोष होते हैं, उस दोष को समन करने के लिए भूमि में और भी कुछ कई चीज़ें होती हैं, वो सब को दूर करने के लिए पहले भूमि का पूजन किया जाता है और तब उसके बाद निर्माण होता है, चाहे आप अपने घर का कर रहे हो, मंदिर का कर रहे हो।
1: मैक्राना मोबिल से निर्मित गणेश पंचमुख मूर्ति भारत से लाई जा रही है, जिसकी लंबाई 8 फुट की होगी। श्रावण मास के उपलक्ष्य पर गंगा तालाब में भक्तों की भीड़ है और शिवमय वातावरण छाया हुआ है। इस मंदिर को लेकर भक्तों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
4: मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी शिव परिवार के सभी सदस्यों की मूर्ति है, तो गणेश जी तो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए, क्योंकि वे तो हमारे प्रथम देव हैं। और जब शिव जी है, पार्वती जी है, अभी तो शायद कार्तिकेय की भी मूर्ति डाला गया है।

0: पंचमुखी है तो ये सब हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है।
1: जैसे कि हम सब जानते हैं अगर हम गणेश का पूजा करते हैं तो हमको नोस में जाना पड़ता है। अभी गंगा तालाब में एक पंचमुख गणेश हो रहा है तो जितने भी हमारे डिवोटीज, जितने भी हमारे भक्तगण, जितने भी हमारे परिवार आते हैं गंगा तालाब में पूजा करने के लिए, यहाँ पे एक गणेश पहली बार के लिए डाला जा रहा है, ये एक बड़ी बात है।
2: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन द्वारा एकत्र किए जाने वाले दान से ही गणेश पंचमुख मंदिर का निर्माण किया जाएगा। श्रावण मास के संदर्भ में गंगा तालाब में यहाँ पर विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया गया, जहाँ पर साल 2027 में गंगा तालाब की भूमि पर यहाँ पर एक गणेश पंचमुख मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। कैमरामैन ऋषि सिरतन के साथ मैं हूँ अभि उदय, समाचार विभाग की ओर से। तमिल महीने आवनी में जब मूलम नक्षत्र दिखाई देता है तब आवनी मूलम कावड़ी का त्यौहार भगवान शिव की पूजा के लिए मनाया जाता है। श्रावण मास के दौरान इस रविवार को गंगा तालाब के सोमनाथ आध्यात्मिक मंदिर में यह पर्व श्रद्धा से मनाया गया। भक्तों ने अपनी कावड़ी लेकर एक जुलूस निकाला। हिंदू हाउस की ओर से इस जगह पर पहली बार ऐसा आयोजन किया गया था। स्निग्ध बिजनेस मॉरिशस ने इस रविवार को अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर को खास बनाने के उद्देश्य से वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के तहत काम करने वाले इस निजी संस्थान ने शिक्षा के प्रति इस्लाम के दृष्टिकोण और उसके महत्व पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इस स्मारक समारोह की शोभा वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के मुख्य संरक्षक मौलाना शाह मोहम्मद अनस नूरानी सिद्दीकी की विशेष उपस्थिति ने बढ़ाई। फाहाको नाई की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
3: इस साल SNIT बिजनेस स्कूल के कयाम के 25 साल पूरे हुए हैं। बेल विलेज में ये निजी इदारा नई नस्लों में तालीम तदरीस और अच्छी तरबियत के लिए मशहूर है। हम्माद अब्दुल्ला बताते हैं,
4: en IT et ensuite nous finissons avec aussi en business management avec une qualification britannique. Ça finit donne l'occasion à beaucoup de jeunes et de professionnels qui va gagner l'occasion à l'université pour gagner un degré, même qu'ils sont dans une forme 5.
3: इस सालगिरह को मनाने के लिए SNIT बिजनेस स्कूल ने वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के सरपरस्त मौलाना शाह मोहम्मद अनस सिद्दीकी की हाजिरी में एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया।
5: The main concept of the foundation of forming the SNIT was to educate the new generation with the new educations of technologies of most advancements which can be very much
3: Educating humanity, the core affair of Islamic spaces and Alami Nurani philosophy is conference ka unwan raha. Jamiatul Ulama Mauritius ke sadr Maulana Harun Asen, Professor Abdul Khaliq aur Maulana Nurani Gulfi ne Hazrat Muhammad ke hawale se Islam mein ilm ki ahmiyat ko ujagar kiya. Is salgirah ke mauke par SNIT बिजनेस स्कूल ने पोर्टलवी के तलबा को समाजी मयार के मद्देनजर वजीफे यानी स्कॉलरशिप दिए। इसके अलावा कुरान की तिलावत, नात खानी और दीगर प्रोग्राम किए गए।
2: और जैसा कि हम बता रहे थे कि तमिल महीने आवनी में जब मूलम नक्षत्र दिखाई देता है तब आवनी मूलम कावड़ी का त्यौहार भगवान शिव की पूजा के लिए मनाया जाता है। कोयल सीतल की रिपोर्ट पर विवरण आस्था गुबिन के साथ।
6: इस रविवार गंगा तालाब में आवनी मूलम कावड़ी श्रद्धा के साथ मनाई गई। तमिल महीने आवनी में मूलम नक्षत्र के आने पर यह पर्व मनाया जाता है। इस बार इसका आयोजन श्रावण मास के दौरान हुआ। 10 दिनों के उपवास के बाद श्रद्धालु अपनी कावड़ी के साथ पेथ्रे से शोभा यात्रा में शामिल हुए। भगवान मुरुगन के माध्यम से

0: भगवान शिव का आशीर्वाद पाना इस धार्मिक यात्रा का मुख्य भाव रहा।
1: Nous étudions dans ce mois-là, nous guettons qui bonne qualité nous avons et qui mauvaise qualité nous avons et comment nous sommes capables de corriger nous pour amener nous vers plus bien dans la vie plus devant.
2: श्रावण मास के पावन अवसर पर आज गंगा तालाब में न सिर्फ शिवमय वातावरण है, कहा जाता है कि आवानी मूलम जो है मूल नक्षत्र होता है, यानी कि 27 नक्षत्र होते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार, और तो और आवानी जो है दक्षिण भारत में भी वहाँ पर ये कावेरी मने सभी में जो शत्रुता है उसको नाश करने के लिए, हमारे अंदर में जो द्वेष क्लेश है उसको नष्ट करने के लिए हेतु स्कंद महाराज कार्तिकेय स्वामी का पूजा की पूजा किया जाता है।
0: इस वर्ष पहली बार हिंदू हाउस की ओर से सोमनाथ स्पिरिचुअल मंदिर में इस पर्व का आयोजन किया गया।
3: C'est vraiment la richesse de nos cultures que nous pouvons trouver à Ganga Talab. C'est ça qui nous beauté et nous tous nous prier pour l'unité de nos pays, prospérité, la santé de nos pays. C'est ça nous motive, pour nos traditions vivantes, nous célébrer tout bien la prière.
0: पूजा अर्पण और भक्ति के साथ ये दिन आस्था और परंपरा को समर्पित रहा।
4: पिछड़ा अफ्रीके के मोंपास्काल में कल एक गैराज में काम के दौरान हुए हादसे में 53 साल के मोहम्मद फरदीन सुइफू की मौत हो गई। वह बस ड्राइवर और मैकेनिक के रूप में काम करते थे। शुरुआती जांच के अनुसार वह एक बस के नीचे मरम्मत कर रहे थे, तभी बस को सहारा देने वाला हिस्सा अचानक नीचे आ गया। उनका सिर बस के एक हिस्से और पिछले पहिए के बीच फंस गया। मौके पर पहुंची सैम्यू की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जीटू अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम के अनुसार गर्दन पर दबाव पड़ने से दम घुटने के कारण उनकी मौत हुई। गैराज में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और पुलिस हादसे के सही कारणों की जाँच कर रही है। एल्बियो फिशरीज रिसर्च सेंटर में गत शुक्रवार को समुद्री खीरा यानी कि सी क्यूकम्बर पालन परियोजना की प्रगति पर एक टेबल राउंड आयोजित की गई। इसके बाद मंत्री अरविंद बुल्लेल ने वहां की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों की मदद से चलाया जा रहा ये कार्यक्रम समुद्री खीरे के स्टॉक को फिर से बढ़ाने और मॉरिशस में इसके एक व्यापारिक उद्योग के रूप में उभारने की संभावनाओं का आकलन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। सागा ओनो की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
5: ये आवाज उस चीज से निकली है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाईवे के किनारे से इकट्ठा किए गए पुराने विज्ञापन वाले फ्लेक्स बैनर ये गावान के एक हिस्से का काम करता है। इकट्ठा करने के बाद उन्हें अच्छी तरह से साफ किया जाता है। इसके बाद सबसे मुश्किल काम आता है, इस सामग्री को सही तरीके से खींचकर लगाना ताकि मनचाही आवाज पैदा हो सके। इस पर्यावरण के अनुकूल तरीके में बकरी की उस पारंपरिक खाल की जगह फ्लेक्स बैनर का इस्तेमाल किया गया है, जिसे आमतौर पर लकड़ी के घेरे पर खींच कर लगाया जाता है। हयान चमन कहते हैं, हमने देखा कि सड़क पर ये प्रदूषण फैलाता है, गतिविधि के बाद भी ये सड़क पर ही परा रहता है। हम इसे उठाकर लाते हैं, साफ करते हैं और गावान बनाते हैं। रेहान बीबी जोन कहते हैं, इसे एक बिजनेस भी बना सकते हैं क्योंकि ये सामग्री हर जगह मिल जाती है। बकरी की खाल में बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन इससे अगर आज ऑर्डर करेंगे तो एक सप्ताह के अंदर ये मिल जाता है।
4: विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि कैनेडियन के प्रधानमंत्री ने कल नए अतिरिक्त टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका द्वारा उनके देश के खिलाफ शुरू किए गए व्यापार युद्ध के कड़े शब्दों में निंदा की। ये बयान दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार वार्ता टूटने के बाद आया और जवाबी कार्रवाई के रूप में कनाडा भी 8 सितंबर से अमेरिकी स्टील और डेयरी उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने जा रहा है। बीजिंग में दूसरे

वर्ल्ड ह्यूमानॉइड रोबोट गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। 16 देशों से आए रोबोट्स को शामिल करने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ तकनीक की दुनिया की नवीनतम उपलब्धियों पर आधारित एक शानदार शो के साथ हुआ। और अंत

आसमान साफ रहेगा। कल सुबह के दौरान केवल देश के पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू पर रह रहकर कुछ बरसात होगी और बादल भी घिरे रहेंगी। रात को हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 13 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम अन्य इलाकों पर 17 से 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:59 पर, सूर्योदय 6:25 पर।

तो देश विदेश की नई खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

आयुषोक समाचार सुनती हैं। रॉयल रुद्बुबासे में 69 साल की 69 years old की श्री आनंदा नर्सु, जिन्हें सब लोग आनंदा के नाम से भी जानते थे, और जो नंबर 33 सीएच अल्फ्रेड गली बुबासे के पूर्व निवासी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी ताबूत कल दिन के 10 बजे लाशापेल ऑन्डांट एलियनसंस रॉयल रोड बुबासें से निकालकर सबसे पहले प्रार्थना सभा के लिए बुबासें स्थित एडवेंटिस जी सेट्सियम जो का गिरजाघर ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए बिगारा का कब्रिस्तान, फ्यूनरल टुमरो एट 10 AM। केवल नगर बेलरीव में 55 साल की 55 years old की श्रीमती देसी रानी सिबन, जिन्हें सब लोग आरती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी आरती कल दिन के साढ़े दस बजे उनकी माँ श्रीमती चिंता सिबालक के घर केवल नगर बेलरीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी, फ्यूनरल टुमरो एट 10:30 AM। रिया लेन फाउंटेन नंबर 23 लियोशे तेरूज में 74 साल के 76 years old के श्री गोबिन रिगा, जिन्हें सब लोग गाबी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उन्हीं के घर रिगा लेन फाउंटेन नंबर 23 लोशे तेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोमोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी, क्रिमेशन टुमरो एट 10:30 AM। एवेन्यू पेड्रिक्स मोसेलमान सन सुसी मोंटाई ब्लांच में Avenue Pédrix, mot seulement sans souci, Montaille Blanche, mais 74 Salki, 76 years old, qui, Shrimati Mirabai Dundi, Pédachinam, Urpa, Orjine Sablouk Sewan Kinam, c'est Bijantite. उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री शिवराम दुंदी के घर एवेन्यू पेड्रिक्स मोसेलमान सन सुसी मोंटाई ब्लांच से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंटाई ब्लांच की शमशान भूमि ले जाई जाएगी, क्रिमेशन टुमरो एट 12:30 PM। रॉयल रोड कोची मिलिटिया में जो कोची मिलिटिया के टैक्सी स्टैंड के पास है, 93 years old के श्री रोहित पांचू जो मोका फ्लक जिला परिषद के पूर्व कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री सुगा पांचू के घर रॉयल रोड कोची मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विल्मे कोची मिलिटिया की शमशान भूमि ले

सीबी की ओर से दो विज्ञप्तियां सुनिए। रोशब्रुन के इन इलाकों के ग्राहकों को सूचित किया जाता है। रोशब्रुन एवेन्यू, एवेन्यू रोशब्रुन, एवेन्यू नेओन, एवेन्यू वारियन, एवेन्यू प्लूटो के ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि कल सोमवार 24 अगस्त 2026 के प्रातःकाल के 9 से लेकर दिन के 12 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी ग्राहकों को ये भी सूचित करती हैं कि जैसे ही ये मरम्मत कार्य समाप्त हो जाएंगे, बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। सीबी वाक्वा के इन इलाकों के ग्राहकों को सूचित करती हैं। विलबी रोड, डेकन रोड का एक भाग, ब्रिटानिया रोड, सुफलोक रोड और आसपास के इलाकों के ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि कल सोमवार 24 अगस्त 2026 के प्रातःकाल के 9 से लेकर दिन के 12 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सेबी ग्राहकों को ये भी सूचित करती हैं कि जैसे ही ये मरम्मत कार्य समाप्त हो जाएंगे, तैसे ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। सेबी अपने ग्राहकों के प्रति इन असुविधाओं के कारण क्षमा प्रार्थी हैं। ये थी दो व्यक्तियां सेबी की ओर से।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: सोमवार 24 अगस्त को श्रावण मास महोत्सव के संदर्भ में गहलोत राजपूत महासभा के तत्वाधान में कॉटेज राजपूत सभा शाखा नंबर 20 महायज्ञ का आयोजन कर रहा है, जो होगी शाम के 4 बजे राजपूत भवन भारती रोड कॉटेज में।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
2: भजले प्रभु का नाम। नमस्कार श्रोताओं, प्रभु का नाम जब हम भजते हैं तो मन पवित्र होने लगता है, क्योंकि प्रभु के नाम में पवित्रता है, उनके आचरण में

चमता है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक हॉरर मूवी देखकर आते हैं तो क्या होता है श्रोताओं, हमें रात को डर लगता है। हम रोज उसी बिस्तर पर सोते हैं, उसी कमरे में सोते हैं, लेकिन उस दिन हमें लगता है कि पता नहीं कहाँ से चुड़ैल ना आ जाए, भूत ना आ जाए। देखिए 3 घंटे की मूवी का क्या असर पड़ता है। इसलिए जब प्रभु का नाम बजते हैं तो मन में हॉरर नहीं होता, डर नहीं होता, निर्भीकता बढ़ती है। लगता है प्रभु मेरे साथ है तो डर किस बात का। तो श्रोताओं, प्रभु का नाम भजते हुए ही रात को हमें सोना चाहिए।

श्रोताओं, उस प्रभु के साक्षात्कार के लिए ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्ममय आचरण का होना बहुत जरूरी है। केवल ज्ञान प्राप्ति से ही प्रभु नहीं मिलते, भाव से, भक्ति से, सेवा से प्रभु मिलते हैं। जीवन में संयम बड़ा जरूरी है और एकाग्रता के बिना तो प्रभु को समझा ही नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें ब्रह्मचर्य में आती हैं। हमारी कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब को हमें काबू में धीरे धीरे करना होगा। अर्थात ये हमें ना चलाएं, हमें इनको चलाना होगा, तब प्रभु से हम जुड़ पाएंगे।

ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम पवित्र काम करें, अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को स्मेल करें, अच्छी चीज़ों को छुएं। केवल अपने स्वाद के लिए नहीं होना चाहिए कि मेरी आंखों को ये दृश्य अच्छा लगता है, मैं तो इसलिए देखता हूँ। आज हमारे बच्चों के साथ यही दिक्कत है, मोबाइल ने यही सुविधा दे दी है।

श्रोताओं, ईश्वर ने हमें शरीर दिया है साधना के लिए, संयम के लिए, शुद्ध जीवन बिताने के लिए। अगर जीना चाहते हैं तो हमें आहार संयमित करना होगा, विचार संयमित करने होंगे, कर्म संयमित करने होंगे, अर्थात जो कुछ भी करें कल्याणमय होना चाहिए, जिससे सबका भला हो यह सोचना होगा।

और अंत में श्रोताओं, उस प्रभु को याद करते हुए जब हमारा आचरण बदलने लगता है तब हमारा जीवन भी अर्थपूर्ण होता है। हम खुद आनंद की अनुभूति करते हैं, हम खुद खुश होते हैं और दूसरों में भी खुशियाँ बांटते हैं। तो श्रोताओं, जितनी खुशी हम प्रभु नाम से अपने भीतर ले पाएंगे उतनी ही तो बांट पाएंगे ना। मान लीजिए रसगुल्ला खा के मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने सामने वाले को भी खिला दिया, लेकिन कितनी देर के लिए? उसने कहा वाह मज़ा आ गया, मैंने भी कहा भाई खाने का तो मज़ा आ गया इस मिठास का, लेकिन कितनी देर? एक घंटे बाद कुछ और खाना खा लिया, रसगुल्ले का पता ही नहीं और व्यक्ति भी चला गया। लेकिन जीवन में खुशियाँ जिसको हम देते हैं वह जीवन पर्यंत कृतज्ञता मानता है। उसे पता होता है कि मुझे दुख के समय इस व्यक्ति ने उस समय मदद की थी। तो जो प्रभु नाम से जुड़ते हैं वे हमेशा दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई कहे कि तुम मुझे एक बोतल दे दो मेरी दुख दूर हो जाएंगे, तो यह दुख हम दूर नहीं कर सकते, यह दुख उसको होना ही चाहिए। तो श्रोताओं, ईश्वर ने जो विवेक दिया है उसके माध्यम से जीवन में निर्णय लेना, दूसरों की मदद करना, खुशियाँ बांटना बहुत ज़रूरी है। इसी का नाम है भजले प्रभु का नाम। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और यज को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभरात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़ीद सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की उर्दू नशियात महफिल शब में समीर आप तमाम सामीन का खैर मकदम खुलूस कल्ब से करता है। उम्मीद है कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल करम से खैर

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली की तरफ इशारा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से यतीमों, मिस्कीनों और कमज़ोरों को इज़्ज़त और हुकूक़ मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे को ये तालीम दी कि कमज़ोरों की कफालत करना अजीम नेकी है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम को इंसानी मुआशरे की बुनियाद बनाया। बच्चों, बूढ़ों, गरीबों, कमज़ोरों बल्कि तमाम मखलूकात के साथ शफकत की तालीम दी। सामीन मुहतरम, हम अपने प्रोग्राम महफिल शब के आखिर तक पहुँच चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें आज की हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता करे। मौला करीम तमाम अहले ईमान को अच्छी सेहत अता करे और जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता करे। आमीन सुमा आमीन। आइए महफिल शब के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं और इसी के साथ ये महफिल ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात फिर होगी। शब्बा खैर और खुदा।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
2: रात के 9:11 हो गल बा श्रोता लोग भोजपुरी तड़का में तो लोग के हृदय से स्वागत बाते रेडियो के ता दीवाना हवा जा ता हम संगीत के मस्तानी है ता चला दीवाना मस्ताना होके संगे ई प्रोग्राम के अंत रहब जा और पहल का गाना चला दे के पहले याद दिला दे नंबर वा घुमावा 402-80-85 और मैसेज भेज सकब जा ऑन 5251700 5 एंड सेट 005

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी
1: तड़का
0: तड़का
2: रात के 9:22 हो गल बा श्रोता लोग जब तो हर रेडियो पर सुंदर सुंदर भोजपुरी के गीतवन चलेला तो बोले बोला कैसे लगे गला गेला है तो यही है भोजपुरी तड़का तोहर अपन कार्यक्रम जेकर बिना तो रात्रि फीका हो जाला जेकर से रात्रि बेहतरीन हो जाला और कलाकार लोगन के हमनी के प्रणाम ओह लोग के गाना तो लोग के नाम भोजपुरी बोला और सुना जा सुबह शाम बस दुनिया बन जाए तोहर काम। चला अगला गीत कुणाल हिरीलाल के गावल गीत और गाना संगीता जी खातिर जोन रहिला वाक्वा और गाना मांगत वन जा पति देवन खातिर और बीता केशव

के गावल गीत और गाना जाएगा रोहित जी खातिर जन हमने के सुनता बोबासन से और साथ में अमृता जी जन रही राफिक ऑफ लाख एकर खातिर और जितना कोई इबखत काम करता एकर खातिर भी

ए दादा, कहाँ जाल बेटी घरे का भाईल हो बड़ी बेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो तो का भाईल हो।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: रात के 9:57 हो गल बा श्रोता लोग संत सयाने लोगन ने बोल के चल गएलन। समय सब के सबसे बलवान है। समय का सम्मान करबा तो बहुत तरक्की करबा जा, पर समय के मूल्य नहीं जानबा तो तुहर कल्याण बिल्कुल ना होई, है ना। और यहाँ पर ही हमने के सुनता बुबासा से कल्याणी जी और गाना मांगा तवन जा अपन खातिर और अपन का परिवार खातिर। और देव साहब जोन रहीला मोडाल बेया गाना एकर खातिर और बच्चे लोग खातिर जो घर पर बा अभी, और ये कार्यक्रम सुना तवन जा चला भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज के गावल गीत तो होलो खातिर।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:13 हो गल बा। श्रोता लोग हमेशा प्रार्थना करेला कि ईश्वर हमनी के बहुत कुछ दे, पर तो लोग साथ साथ ये भी कामना करिए जाके झूठ से बचाए के और उस सत्य के तरफ बढ़ाए कि आशीर्वाद तोरा प्राप्त हो।
0: भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के सारे 10 बजकल बा, नया जमाना हो या फिर पुराना, एक बात निश्चित है कि जोन करबा वही पाईबा, जैसी करनी वैसी भरनी, सोच समझ के कदम उठाया ताकि बाद में पछताए के ना पड़ी। तो चलो श्रोता लोग, अगला गीत खाले पीले जिले भैया जिंदगी में काबा, नेक काम करी जा। और अगला गीत देवेन जी खातिर जन रही मेबर्ग, और ये बखत हमने के सुनाता गाना एकर खातिर, एकर धर्म पत्नी सुनीता खातिर और सभी परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का।
1: श्रोता लोग, हमने के देश में जो एकता है वो तो बहुत सराहनीय है। एकता में बल है, शक्ति है। परिवार में एकता हो तो जिंदगी स्वर्ग बन जाला। और वो सचमुच सब लोगन बोले लंजा कि हमने के देश तो स्वर्ग से कम नहीं है। तो चला अगला गीत। कृष्ण ओखज के गावल गीत और गाना सावित्री जी खातिर जन रहेला कृष्णा पॉपलमुस। और इबखत हमनी के सुबह सुनता और गाना मांगत वन जा अपन दोस्त मीला खातिर जो कॉन्डोस हॉस्पिटल में काम कराता वन जा। तो बो कुराज और संगे शोभा जी जन रहेला गांवे तुहर खातिर।

श्रोता लोग गते गते हमने प्रोग्राम के अंत तक आ गए लिहा प्यार से साथ देला जा एकर खातिर बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी तोहर सेवा में उपस्थित हो। शुभ रात्रि और नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: रेडियो मॉरिशस पर शुरू हो चुका है यादों का सिलसिला। जी हाँ दोस्तों, हर गीत के साथ एक नई कहानी और एक नया एहसास, ये है सुनहरे पल। पुराने बॉलीवुड गीतों की महक और यादों की खुशबू लेकर हम गिनिशा आ गए हैं आपका साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। तो बस तैयार हो जाइए एक सुहाने संगीतमय सफर के लिए।

दिल को सुकून देने वाले गीत, जी हाँ दोस्तों, और यादों से भरे लम्हे, बस इसी का नाम है सुनहरे पल। साथ रहिए रेडियो मॉरिशस के साथ। आज फिर बजेंगे वो गीत जो कभी हर घर की पहचान हुआ करते थे। बिल्कुल दोस्तों, हर सुर में प्यार, हर बोल में एहसास, पुराने बॉलीवुड गीतों का ये अनमोल सफर आपके लिए लेकर हाजिर है ऑन रेडियो मॉरिशस आपके सुनहरे पल में।

वैसे आज की रात को यादगार बनाइए और उन गीतों के साथ जो आज भी दिलों पर राज करता है। ये है सुनहरे पल, यादों की किताब के कुछ खूबसूरत पन्ने आज फिर खुलने वाले हैं मेरी जान। जी हाँ, हम बस चाहते हैं कि आप खुश रहें, हमेशा आप मुस्कुराते रहें। और ये अगला गाना आपकी होंठों की मुस्कुराहट के लिए हमारी तरफ से आपके नाम।

संगीत का वो दौर जहां दिल से लिखे और दिल से गाए जाते थे, तो चलिए उसी दौर में चलते हैं सुनहरे पल के साथ। दोस्तों, हर गीत एक रिश्ता बनाता है और हर याद को जिंदा भी रखता है। आज उन्हीं यादों को फिर से महसूस करते हैं। रेडियो मॉरिशस पर आपके

अगर आपको पुराने गीतों से मुहब्बत है मेरी जान, तो ये महफिल, बिल्कुल ये महफिल आप ही के लिए है। साथ रहिए और गीतों का मजा ले लीजिए। पुराने बॉलीवुड संगीत का जादू आज फिर बिखरने वाला है, सो दिल खोलकर सुनिए और यादों में खो जाइए, क्योंकि ये आपका सुनहरे पल हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि हम आपके दिल को बहलाए और पुरानी यादों में फिर से खो जाने के लिए मजबूर कर दे।

जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे साथ देने के लिए। तो बस यूं ही गिनिशा का साथ देते रहे। मुझे नहीं पता आप हमें कहां से सुन रहे हो, मॉरिशस में हो, मॉरिशस के बाहर हो, काम पे हो या घर पे हो, गाड़ी चला रहे हो, कहीं से भी मेरी जान आप साथ दे रहे हो। तो ये अगला नगमा स्ट्रेट अवे फ्रॉम माई हार्ट आपके दिल तक। तो चलिए ये आपके नाम।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: दोस्तों वक्त बदलता है लेकिन कुछ गीत हमेशा जवान रहते हैं। बिल्कुल हम भी इस बात को मानते हैं क्योंकि वो गीत तो हमारे दिल के इतने करीब होते हैं। और इन गीतों को सुनते सुनते फिलहाल के लिए इस वक्त होगी निशातु से गुड बाय। हम अभी तो जा रहे हैं लेकिन वापस आएंगे एक और सुनहरे पल के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, शब बखैर।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

ए दादा कहाँ जाल बेटी घरे का भाई हो बड़ी बेज बेटा डटलक नहीं हो तब बहू मरलक नहीं हो।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।
1: गाना बनाते हुए तुम जबान से ज्यादा साउंड का ख्याल रखते थे। लफ्जों की साउंड अच्छी हो तो फौरन उन्हें होंठों पर ले लिया करते थे। मानी, तुम कहा करते थे लोग पूछ लेंगे। जैसे तुमने इस गाने में पूछा था मुझसे, ये नशेमन कौन सा शहर है यार?